मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 33 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: परान नमस्कार। साथ ही आज जन्माष्टमी का पावन पर्व भी है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आज का सूरज आपके लिए नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और नई सफलताओं का संदेश लेकर आएगा। दोस्तों, सुबह का ये समय अपने आप में बहुत खास होता है, क्योंकि रात की खामोशी के बाद अब जीवन फिर से रफ्तार पकड़ने लगता है, तो हर ओर एक नई शुरुआत का एहसास भी होता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी नए दिन की शुरुआत तभी पूरी होती है जब हमें देश दुनिया की महत्वपूर्ण हलचलों की जानकारी भी मिल जाए, है ना? तो आइए अब रुख करते हैं समाचारों की ओर और जानते हैं देश विदेश की ताजा और प्रमुख खबरें। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर डीएनए प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। डीएनए प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा का प्यार

0: है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है आप सभी का, नमस्कार लखनऊ के आज के सफर में। श्रोताओं, प्रातः के 6:05 हुए हैं और समय है कार्यक्रम कृषि चर्चा का। कार्यक्रम में आज अगेती सब्जी मटर की उन्नत खेती इस विषय पर डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता हम आपको सुनवा रहे हैं।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां सब्जियों का व्यवसायिक उत्पादन आप कर रहे हैं, वहां अगेती सब्जी मटर की खेती कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ सब्जी वैज्ञानिक डॉक्टर वीपी सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां अगेती सब्जी मटर की खेती करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है आपकी?
3: किसान भाइयों को सबसे पहले हमारा नमस्कार। किसान भाइयों से मेरा ये आग्रह है कि जहाँ पे अगेती सब्जी मटर की खेती करनी है, उस खेत का चुनाव इस ढंग से करें कि उसमें, चूंकि बरसात अभी गई नहीं है, जाने वाली है, तो उसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, मिट्टी दुमट या बलुई दुमट हो, भुरभुरी जमीन हो, उसी में जो है सब्जी मटर की खेती करें। सब्जी मटर की जो खेती है, ये सितंबर के दूसरे पखवाड़े से लेके अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक समय और मौसम की अनुकूलता को देखते हुए करें। अंकुरण के लिए बीजों को 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम अच्छा माना गया है और जो पौधों की वानस्पतिक बढ़वार होती है उसके लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम ठीक माना गया है।
2: अगर सितंबर के दूसरे पखवाड़े में बुआई कर लें किसान भाई बहन, तो फिर आगे समय से रबी की बुआई भी कर सकते हैं, गेहूं की बुआई कर सकते हैं?
3: हाँ, जो है हम ऐसी फसलों का चुनाव करेंगे जो इन महीने के अंदर समाप्त हो जाएं, तो उसमें जो है वो हम गेहूं की बुआई, जो देर से प्रजातियां आती हैं, उनकी बड़े आराम से खेती कर सकते हैं। इस तरीके से इसको एक अतिरिक्त फसल किसान भाइयों को सब्जी मटर के रूप
2: और
3: में,
2: और वो भी नकदी।
3: हाँ, वो भी नकदी फसल के रूप,
2: एक आमदनी का अच्छा स्रोत बन सकती है। प्रजातियां कौन कौन सी हैं अगेती सब्जी मटर में?
3: अगेती सब्जी मटर में जो है वो हमारे जो यहाँ पे बनारसी में सब्जी अनुसंधान केंद्र है, वहां से निकाली हुई प्रजातियां हैं, काशी नंदिनी है। इसकी जो विशेषता है वो ये है डॉक्टर साहब कि ये 60 से 65 दिन में फलियां इसकी तुड़ाई योग्य तैयार हो जाती हैं और एक ही बार में पूरी फसल जो है वो तोड़ने योग्य जो है वो हो जाती है। इसमें बार बार तुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है और 35 से 40 कुंटल जो है उपज भी प्रति एकड़ किसान भाइयों को मिल सकती है।
2: इसके अलावा?
3: इसके अलावा काशी उदय है, ये पूरे उत्तर भारत क्षेत्र के लिए संस्तुत किस्म है। इसमें जो है 35 से 40 दिन में जो है बुआई के पश्चात पुष्पन की अवस्था शुरू हो जाती है और 60-65 दिन में इसकी भी फलियां तुड़ाई योग्य तैयार हो जाती हैं, लेकिन इसमें 2 से 3 तुड़ाई करने की आवश्यकता पड़ती है 10 से 12 दिन के अंतराल पे। इस तरीके से ये करीब 3 महीने में फसल समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त काशी मुक्ति एक किस्म है जो अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध है।
2: और अगेती भी
3: है, तो इसमें जो है वो भी 65-70 दिन में तुड़ाई जो है, और इसमें अधिक जो है गर्मी सहन करने के लिए सहनशील है
2: जी।
3: तो इस तरीके से एक तरीके से जो है अर्ली बुआई के लिए
2: अगेती भी और पिछेती भी,
3: और पिछेती भी, दोनों तरीके से जो है काशी मुक्ति प्रजाति जो है वो अच्छी है। इसके अतिरिक्त जो काशी अगेता किस्म एक है, वो जो है वो नवीन किस्म है, बौनी भी है, ये 2015 में जो है वो संस्तुत की गई है। तो इसके

0: भी में सुगंध और मिठास अच्छी होती है
1: और दाने भी हरे रंग के,
0: और दाने हरे रंग के होते हैं, और काशी नंदिनी और काशी उदय से थोड़ा सा 10-12 दिन थोड़ा ये लेट तैयार होती है, लेकिन उपज इसकी बहुत अच्छी है। ये 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फलियां जो है वो एक एकड़ में किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं।
1: ये चारों प्रजातियां तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से विकसित है। इसके अलावा डॉक्टर साहब,
0: इसके अलावा जो है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय की नरेंद्र सब्जी मटर 1 है, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर की आजाद मटर 3 है, यूरोपियन किस्म अर्केल है, पंत मटर 155 है, ये एक हाइब्रिड किस्म है, और 30-35 दिन पश्चात इसमें पुष्पन जो है प्रारंभ हो जाता है। पहली तुड़ाई 50-55 दिन में ही ये तैयार हो जाती है,
1: यानी पंत मटर 155 में
0: जी, और इसकी उपज 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 60 क्विंटल प्रति एकड़ किसान भाई प्राप्त
1: सबसे कर सकते अधिक पैदावार,
0: सबसे अधिक पैदावार।
1: डॉक्टर साहब, आपने आजाद मटर 3 का नाम लिया, इसकी क्या खासियत है?
0: इसकी खासियत यह है डॉक्टर साहब कि ये जो है 35 से 40 दिन में जो है इसमें पुष्पन की अवस्था शुरू हो जाती है, 60-35 दिन में फलियां जो है वो तैयार हो जाती हैं, 3 से 4 तुड़ाई इसकी हो सकती है, और 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ तक आराम से उपज प्राप्त हो सकती है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे अगेती सब्जी मटर की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9415006080 9415006080 9415006080।
1: डॉक्टर वीपी सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और अगेती सब्जी मटर की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अगेती सब्जी मटर की उन्नत खेती, आज के कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। इसी के साथ अब कृषि चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुने गांधी चर्चा।
3: गांधी चर्चा में सुनिए बापू के विचार।
4: गांधी जी के अनुसार सा विद्या या विमुक्ते है, यानी जो मुक्ति के योग्य बनाए वो विद्या, बाकी सब अविद्या। अतः जो चित्त की शुद्धि न करे, मन और इंद्रियों को वश में रखना न सिखाए, निर्भयता और स्वावलंबन पैदा न करे, निर्वाह का साधन न बताए, और गुलामी से छूटने और आजाद रहने का हौसला और सामर्थ्य न उपजाए, उस शिक्षा में चाहे जितनी जानकारी का खजाना, तार्किक कुशलता और भाषा पांडित्य मौजूद हो, वो शिक्षा नहीं है या अधूरी शिक्षा ही है। गांधी जी का मानना था कि 80-85% लोगों के जीवन की आवश्यकताओं का विचार करने के बजाय मुट्ठी भर मनुष्यों की आवश्यकताओं अथवा राज्य के थोड़े से विभागों की आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखकर दी जाने वाली शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा हो नहीं सकती, बल्कि गलत शिक्षा होने से ये अविद्या ही है। उनका मानना था कि ऐसी शिक्षा ने शिक्षित और अशिक्षित के बीच एक गहरी खाई खोद दी है और विद्वानों को जनता का अगुआ, पथ प्रदर्शक और प्रतिनिधि बनाने के बजाय जनता से विलग हो जाने वाला, जनता के जीवन और भावनाओं को न समझने वाला और उनका पक्ष उपस्थित करने के अयोग्य बना दिया है। इस शिक्षा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए भवनों, साधनों, पुस्तकों, मृत तृष्णा की भांति दूर से लुभावने लगने वाले लाभों की आशाओं और चटक मटक वगैरह का आडंबर रचाकर जनता को कर्ज में डुबो दिया है। गांधी जी का मानना था कि ऐसी शिक्षा ने लोगों के अंदर वहम पैदा कर दिए हैं, जैसे अक्षर ज्ञान और शिक्षा एक ही है और उसके बिना शिक्षा हो ही नहीं सकती। इस शिक्षा ने जनता को धर्म से विमुख किया है और अनेक पीढ़ियों से पोषित धर्म तथा संयम के संस्कारों को मिटा डालने का ही काम किया है। उनका मानना था कि चित्त शुद्धि के महत्व के अंग ईश्वर, गुरु बड़े बूढ़ों में भक्ति, नीतिमय जीवन का आग्रह और संयम तथा तप में श्रद्धा, इन सभी विषयों में आधुनिक शिक्षा ने पढ़े लिखों को संशक और नास्तिक बना देने की दिशा में यत्न किया है। महात्मा गांधी के अनुसार वर्तमान शिक्षा शैली ने भोग और संपत्ति में ही इतनी श्रद्धा उत्पन्न कर दी है कि उनके कम होने के डर से ही शिक्षित व्यक्ति डर जाता है और

0: स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले धर्म के आचरण में असमर्थता प्रकट करता है। गांधी जी का ये स्पष्ट मानना था कि शिक्षा से निर्वाह का प्रश्न हल होना चाहिए, अतः उद्योग धंधों की शिक्षा शिक्षण का प्रधान अंग होना चाहिए। लिखने पढ़ने का ज्ञान ना होते हुए भी महात्मा गांधी का मानना था कि मनुष्य गिनना सीख सकता है, अपने उद्योग धंधे संबंधी प्राथमिक विज्ञान प्राप्त कर सकता है, साहित्य समझ सकता है, सुन सकता है, उसे कंठस्थ कर सकता है और शक्तिशाली हो तो उसकी रचना भी कर सकता है। इसके सिवा उसमें सत्य की लगन हो तो ईश्वर का ज्ञान भी वो बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। गांधी जी का मानना था कि बालकों की शिक्षा का श्री गणेश अक्षर ज्ञान से नहीं बल्कि सफाई की शिक्षा से होना चाहिए। बालक को अक्षर ज्ञान तो दिया ही जाए लेकिन उसे अपने हाथ पांव, नाक नाखून इत्यादि की साफ सफाई को रखना भी सिखाया जाए। इसके बाद कहानियों और भजनों द्वारा धर्म का ज्ञान उसे दिया जाए। प्रत्यक्ष अवलोकन से पदार्थ विज्ञान, वनस्पतियों और भूमि तथा आकाश का ज्ञान दिया जाए तथा प्रत्यक्ष पदार्थों से गणित में प्रवेश कराया जाए। इस तरह लिखना पढ़ना आने के पहले उसे तीसरी चौथी पोथी तक का ज्ञान करा दिया जाए। अनेक भजन श्लोक कविताएं उसे कंठाग्र करा के उच्चारण शुद्धि करा ली जाए और नाना प्रकार के साहित्य बच्चों को कंठस्थ करा दिया जाए। गांधी जी का यही मानना था कि ज्ञान का मूल स्रोत पुस्तकों में नहीं बल्कि अवलोकन, अनुभव, विचार शक्ति में है और इसके भूल जाने से हम पुस्तक के ज्ञानी को बहुत महत्व देते हैं।
1: इसके साथ ही आज की गांधी चर्चा संपन्न होती है।

अभी आपने सुनी गांधी चर्चा। आज का विषय था गांधी जी और शिक्षा। वाचन स्वर था डॉक्टर शीबा राकेश का। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओं नमस्कार, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर वातावरण भक्ति और उल्लास से सराबोर है। कान्हा के जन्म की खुशी में सजे मंदिर, झूमते भक्त और चारों ओर गूंजता कृष्ण नाम अपने आप ही मन को भक्ति से भर देता है। तो आइए कुछ पल के लिए अपनी सारी चिंताओं को किनारे रखकर उस परम आनंद में हम सब भी डूब जाएं, जहां प्रेम है, श्रद्धा है और अपने कान्हा के प्रति अटूट विश्वास है, और सिर्फ अपने गोविंद के गुण गाएं।

आइए प्रभु और आकर अपने भक्तों का कल्याण कीजिए। श्रोताओं, श्री कृष्ण का नाम लेते ही मन में एक साथ कई तस्वीरें उभर आती हैं। कभी मोर पंख लगाए नन्हे कान्हा दिखते हैं, तो कभी अधरों पर मुस्कान लिए हाथ में माखन और आंखों में ऐसी शरारत भरे कि हर कोई अपना हृदय हार जाए। जन्माष्टमी का ये पर्व हमें कृष्ण के उसी निश्चल और चंचल रूप से जोड़ता है। आइए भक्ति के इन्हीं मधुर भावों को हम भी सुबह सवेरे अपने मन में उतार लें।

श्रोताओं, आज का दिन केवल एक उत्सव का दिन नहीं बल्कि उस विश्वास का दिन है जो अंधकार के बीच भी प्रकाश की उम्मीद जगाता है। कृष्ण का जन्म हमें याद दिलाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आशा का दीप जलता रह सकता है। तो आइए इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ कुछ और पल कृष्ण की भक्ति में बिताते हैं।

हर क्षण गोविंद का नाम स्मरण करते रहिए, क्योंकि श्रोताओं कान्हा के साथ जुड़ा हर नाम, हर कथा और हर भजन मन में एक अलग ही आनंद जगाता है। कान्हा के

रात राधा का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए कुछ पल अपने आराध्य को याद करते हैं, मन को शांत करते हैं और पूरी श्रद्धा से कृष्ण नाम का स्मरण करते हैं राधा रानी के साथ।

श्रोताओं, कान्हा की बांसुरी की कल्पना करते ही जैसे मन की सारी बेचैनी स्वतः ही दूर हो जाती है। वो मधुर स्वर मानो हमें अपने भीतर झांकने और जीवन में प्रेम, करुणा और अपनापन बनाए रखने का संदेश देता है और ये बताता है कि जग में सबसे ऊंची प्रेम सगाई है, वो प्रेम सगाई जो ईश्वर से की जाती है।

श्रोताओं, श्री कृष्ण भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे, उनकी बांसुरी की मधुरतान हम सब के मन को झंकृत करती रहे। और आज उसी दिन को उत्सव के रूप में मनाने का क्षण है। एक बार फिर आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, भक्तिमय इस पावन बेला में आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 283।

अपनी को समर्पित कर देने के लिए रावण ने सीता को एक माह का समय दिया था। इस अवधि की समाप्ति पर सीता जी के लिए अपना अंत हो जाने से अधिक व्याकुलता का कारण पतिवियोग है। वो त्रिजटा से कुछ ऐसा उपाय करने की प्रार्थना करती हैं जिससे वो शीघ्र शरीर त्याग कर सकें। त्रिजटा उन्हें धीरज बंधाती हैं। हताश सीता अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं, तुम्हारे नए कोमल पत्ते अग्नि के समान दिख रहे हैं, तुम ही मुझ पर अग्नि वर्षा कर दो ताकि मेरी विरह व्यथा का अंत हो जाए। अशोक वृक्ष की डाल पर बैठे हनुमान जनक नंदिनी के शोक सने वचन सुनकर विचलित हो जाते हैं। वह श्रीराम की अंगूठी सीता जी के सामने गिरा देते हैं। मुद्रिका पहचान कर सीता जी को आश्चर्य होता है। श्रीराम की महिमा के गान के स्वर सुनकर वह राम कथा रूपी अमृत बरसाने वाले से अपने सामने प्रकट होने की प्रार्थना करती हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थी शोभना राव और कविता कृष्णमूर्ति एवं संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: अपने श्रोताओं को हम बता दें, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शनिवार, मंगलवार, गुरुवार को शाम 6:50 से 7:20 तक। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को

अपने श्रोताओं को हम बता दें, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शनिवार, मंगलवार, गुरुवार को शाम 6:50 से 7:20 तक। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का, नमस्कार लखनऊ के आज के सफर में। श्रोताओं, प्रातः के 7 बजे हैं और समय है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का। कार्यक्रम में आज नीना सोनकर जानकारी दे रही हैं सेहत का रक्षक करी पत्ता के विषय में। क्या बता रही हैं, आइए सुने।
1: नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं उस पत्ते की जिसकी महक भर से ही दक्षिण भारत की यादें ताजा हो जाती हैं और जो साधारण दिखने के बावजूद हमारी रसोई, हमारी थाली और हमारी सेहत तीनों के लिए अनमोल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कड़ी पत्ते की, या जिसे कुछ स्थानों पर, कुछ जगहों पर मीठी नीम भी कहा जाता है। जब किसी गर्म कढ़ी या सांभर में कड़ी पत्ता तड़कता है तो उसकी सुगंध पूरे घर को सौंधी सी खुशबू से भर देती है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि आपके शरीर के लिए भी एक तरह की प्राकृतिक औषधि है। कड़ी पत्ता हमारे देश की परंपराओं से जुड़ा है, रसोई से लेकर आयुर्वेद तक। ये न केवल भोजन में स्वाद और रंगत लाता है बल्कि पाचन, बालों, आँखों और लीवर जैसे कई अंगों के लिए लाभकारी भी होता है। कड़ी पत्ता में विटामिन ए, बी, सी और ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता और संतुलन प्रदान करते हैं। ये पत्तियाँ शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती हैं, यानी ये उन हानिकारक तत्वों से लड़ती हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये छोटी दिखने वाली पत्तियाँ उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में भी सहायक मानी जाती हैं। पाचन संबंधी समस्याओं में कड़ी पत्ता बहुत लाभदायक होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ये पत्ता अग्नि को संतुलित करता है, यानी पाचन क्रिया को सक्रिय करता है और शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। जिन लोगों को बार बार गैस, अपच या कब्ज की समस्या होती है उनके लिए कड़ी पत्ता रामबाण साबित हो सकता है। कुछ लोग तो इसकी पत्तियों को सुखाकर इसका चूर्ण बना लेते हैं और रोजाना एक चुटकी गर्म पानी के साथ लेते हैं। ये पेट को शांत और हल्का रखने में मदद करता है। कड़ी पत्ते का सबसे प्रसिद्ध उपयोग होता है बालों के स्वास्थ्य के लिए। पुराने समय से दादी नानी कड़ी पत्ते को तेल में गर्म करके बालों में लगाने की सलाह देती थी। ये न केवल बालों को झड़ने से रोकता है बल्कि उन्हें घना, चमकदार और मजबूत भी बनाता है। आज भी कई आयुर्वेदिक हेयर ऑयल और शैम्पू में कड़ी पत्ते का अर्क डाला जाता है। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन और प्रोटीन बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और समय से पहले सफेद होने से भी बचाते हैं। अब हम बात करेंगे मधुमेह यानी डायबिटीज की। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में ये पाया गया है कि कड़ी पत्ता शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित करने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से इंसुलिन की संवेदनशीलता में सुधार होता है और शरीर शर्करा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाता है। इसलिए जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनके लिए कड़ी पत्ते का सेवन, चाहे तड़के के रूप में हो, चटनी में या फिर खाली पेट कुछ पत्तियां चबाकर फायदेमंद हो सकता है। कड़ी पत्ते का प्रभाव जिगर यानी लीवर पर भी सकारात्मक होता है। ये लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सहायक होता है। आयुर्वेद में इसे प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर माना गया है। अगर आपका भोजन अनियमित हो, अधिक तेल युक्त हो या कभी कभी वजन बढ़ने लगे तो ऐसे में कड़ी पत्ते का सेवन धीरे धीरे शरीर को फिर से संतुलन में लाने का काम करता है। इन पत्तियों की उपयोगिता केवल भोजन तक सीमित नहीं है, इसकी चाय भी बनाई जाती है। जी हाँ, कड़ी पत्ते की चाय। कुछ पत्तियाँ पानी में उबालिए, उसमें थोड़ी सी सौंठ या अदरक मिलाइए और सुबह खाली पेट पीजिए। ये शरीर की सफाई करता है, थकान को दूर करता है और मूड को भी।

आज वार्ता आप सुन सकेंगे श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रेम और भक्ति का उत्सव। वार्ताकार होंगे श्री शिव कुमार शास्त्री। रात्रि 8:10 से आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे रुबीना बैनर्जी के गाए भजन। रात्रि 9:30 से श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के फिल्मी नगमे। कार्यक्रम आपकी पसंद में प्रातः 7:31 एवं रात्रि 10:30 से प्रसारित शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिएगा दीपांकर राय चौधरी का हवाइन गिटार वादन। इसके साथ ही समय समय पर श्रोता फिल्म संगीत एवं प्रायोजित कार्यक्रम भी सुन सकेंगे। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

सभी श्रोताओं को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज वातावरण में जैसे अलग ही मिठास घुली हुई है। मंदिरों में सजे झूले, नन्हे नन्हे लड्डू गोपाल, फूलों से सजे पालने और कानों में पड़ता एक बेहद प्यारा जय घोष, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, आज जन्माष्टमी है, नंदलाल के जन्म का उत्सव। एक बार फिर आप सभी को इस दिव्य उत्सव की हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। दोस्तों, आज ऐसा लगता है कि चाहे उम्र जितनी भी हो जाए, मन फिर से गोकुल की उन गलियों में पहुंच गया है जहां एक नन्हा सा कान्हा अपनी शरारतों से सबका मन जीत लिया करता था। कहीं कान्हा के पीले वस्त्र तैयार हो रहे हैं, कहीं मुकुट में मोर पंख सजाया जा रहा है, तो कहीं माखन मिश्री की कटोरी उनका इंतजार कर रही है। ऐसा लगता है जैसे यशोदा के लल्ला आज हमारे घर भी पधारने वाले हो। असल में जन्माष्टमी का यही तो जादू है। ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि कान्हा के साथ अपने रिश्ते को फिर से महसूस करने का अवसर है।

दोस्तों कान्हा की बाल लीलाओं की बात करें और माखन मटकी की याद ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। गोकुल की गलियों में कान्हा और उनके सखाओं की टोली, घरों में टंगी मटकियां और उन्हें पाने के लिए नन्हे नन्हे कदमों की पूरी तैयार रणनीति। कभी मटकी फूटी, कभी माखन हाथ लगा और कभी शिकायत लेकर गोपियां यशोदा मैया के पास पहुंच गई। लेकिन कान्हा की वो मासूम मुस्कान शिकायत को भी प्यार में बदल देती थी। श्री कृष्ण की यही बाल सुलभ शरारते उन्हें हमारे इतना करीब ले आती हैं। वे केवल मंदिरों में विराजमान भगवान लगते ही नहीं, वे तो घर के उस बच्चे जैसे लगते हैं जिसकी शरारत पर डांट भी पड़ती है और कुछ ही पल बाद प्यार से उसे गोद में भी उठा लिया जाता है। और शायद कृष्ण के जीवन की सबसे सुंदर बात भी यही है कि उनके व्यक्तित्व में जीवन के हर रंग दिखाई देते हैं। वे बालक हैं तो नटखट है, मित्र हैं तो सच्चे मित्र हैं, बांसुरी बजाते हैं तो मन को मोह लेते हैं, और जब जीवन कठिन प्रश्न सामने रखता है तो वही कृष्ण हमें कर्म और धैर्य का मार्ग भी दिखा जाते हैं। दोस्तों जन्माष्टमी की रात जैसे जैसे आगे बढ़ती है, भक्तों

का उत्साह भी बढ़ता जाता है। मंदिरों में भजन, कीर्तन, झांकियां, सजावट और मध्य रात्रि में कान्हा का जन्म, इसका इंतजार भी अपने आप में खास मायने रखता है। और जैसे ही उनका जन्म होता है, घंटियां बज उठती हैं, जयकारे गूंजते हैं और हर ओर एक ही आनंद, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की गूंज जाता है। लेकिन इस उत्सव के बीच कृष्ण हमें कुछ बहुत सुंदर बातें भी याद दिलाते हैं। वो बातें हैं कि जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने भीतर की मासूमियत को हमेशा बचाए रखना जरूरी है। रिश्तों में प्रेम बना रहे, मित्रता में विश्वास रहे और कठिन समय में भी चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। कृष्ण की बांसुरी हमें जैसे ये संदेश देती है कि जीवन में मधुरता तो तभी आती है जब मन में अहंकार कम और प्रेम अधिक हो। तो इस जन्माष्टमी पर कान्हा से अपनी मनोकामनाएं मांगने के साथ साथ एक छोटा सा संकल्प भी ले कि किसी के जीवन में खुशी की वजह बनेंगे, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, अपनों के लिए थोड़ा समय निकालेंगे और जीवन की मुश्किलों के बीच भी उम्मीदों का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कान्हा का जीवन हमें यही तो सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, जीवन में प्रेम और आनंद के लिए जगह हमेशा बची रहनी चाहिए।

तो दोस्तों कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और महसूस कीजिए जैसे कहीं पास ही कान्हा की बांसुरी बज रही हो और गोकुल की गलियों से खुशियों की आवाज आ रही हो। अब विविधा से आज के लिए मुझे दीजिए अनुमति। कान्हा की मुरली आपके जीवन में प्रेम के स्वर भरती रहे, उनके नन्हे कदम आपके घर आंगन में खुशियां लेकर आए और आपके मन का हर अंधेरा उम्मीद की रोशनी से भर जाए। एक बार फिर आप सभी श्रोताओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। दीजिए रिंकी शर्मा को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। आज का विषय था हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधा बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।

0: समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत असाना। पहले मुख्य समाचार। भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जाना हाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने मथुरा में करीब 1051 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, आस्था के साथ आर्थिकी पर भी है सरकार का ध्यान। प्रदेश भर में श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मथुरा में देश विदेश से बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। 500 ड्रोन के जरिए आसमान में जीवंत होंगी श्री कृष्ण की लीलाएं। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारतीय टीम ने हांगकांग को हराया, सेमीफाइनल में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के कार्य बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात करके बाढ़ की स्थिति का हाल जाना। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी से भी फोन पर बाढ़ की स्थिति का फीडबैक लिया। श्री मोदी ने निर्देश दिया कि बाढ़ राहत कार्यों की निरंतर निगरानी की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा भी की। श्री योगी ने बाढ़ से प्रभावित लगभग 1000 परिवारों को राहत सामग्री बांटी और आश्रयहीन हुए परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की घड़ी में सरकार बाढ़ की आपदा से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से जिन अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे की रिपोर्ट आते ही किसानों के खाते में DBT के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों तक हर संभव मदद और राहत पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है।
1: बाढ़ राहत कार्य के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम, बाढ़ चौकियां, राहत शिविर और जिन गांवों में बाढ़ का पानी घरों के अंदर घुस चुका है वहां पर उन सभी प्रभावित परिवारों के लिए शासन ने जो सुविधा उपलब्ध करवाई है उनके रहने के लिए, भोजन के लिए और जो लोग अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं उनके घर पे उन पर राहत सामग्री की किट उपलब्ध करवाने की व्यवस्था।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बाढ़ का स्थायी समाधान निकालना चाहती है। इसके लिए ड्रेजिंग के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जाएगी। इसमें जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा उन्हें उचित मुआवजा देने की व्यवस्था की जाएगी। उधर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर और बढ़ने के बाद प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। लखीमपुर खीरी में शारदा, अयोध्या और तुर्तीपार में सरयू, बलिया में घाघरा और बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा में करीब 1051 करोड़ रुपए की 229 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि और प्रमाण पत्र भी सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार मथुरा सहित सभी धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आस्था के साथ आर्थिकी पर भी सरकार ध्यान दे रही है।
2: विरासत केवल किसी भौतिक वस्तु में नहीं होती और इसीलिए डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया आयाम जोड़ा है कि विरासत भी और विकास भी, आस्था भी और आर्थिकी भी, यानी अर्थव्यवस्था भी, परंपरा भी और परंपरा के साथ साथ परिवर्तन भी।
0: मुख्यमंत्री ने कल देर शाम वृंदावन में नवनिर्मित कान्हा भक्ति स्तंभ मार्ग का भी लोकार्पण किया। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मार्ग का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात और भीड़ प्रबंधन के दृष्टिकोण से ये मार्ग शहर के लिए बड़ी जीवन रेखा साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कल मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की 9वीं बोर्ड की बैठक में ब्रज क्षेत्र में जारी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने मथुरा और वृंदावन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह होल्डिंग एरिया बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा परियोजना का काम अगले 3 वर्षों में 3 चरणों में पूरा कर लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में आज श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्मोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। मथुरा में आज जन्माष्टमी पर पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत किया जाएगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: समूचे ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। वहीं यहाँ के वृंदावन श्री धाम ठाकुर श्री राधा नील माधव जी महाराज मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित श्री क्रिसमस जन्माष्टमी महोत्सव पर श्रद्धा भक्ति एवं उत्साह है। महाराज श्री परम अवस्थी के सानिध्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और श्रद्धालु कृष्ण भक्ति में लीन है। यहाँ के प्रमुख मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, प्रिय कामजू मंदिर, चंद्रोदय मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: कल मथुरा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षक दिवस पर कल गोरखपुर में प्रदेश के 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राज्य स्तरीय इन पुरस्कारों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के 61 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 20 शिक्षकों का चयन किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनाने में मदद करेंगे।
4: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
5: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
4: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
0: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारतीय टीम ने कल हांगकांग को 137 रन के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुबई में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने 193 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 124 रनों की शानदार पारी खेली। जवाब में हांगकांग की पूरी टीम 56 रन पर सिमट गई। राजस्व वादों के निस्तारण में सरलता और पारदर्शिता को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की ओर से कल 3 पोर्टल लॉन्च किए गए। राजस्व परिषद बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि राजस्व न्यायालयों में

लंबित वादों को तय समय सीमा में निस्तारित करने के लिए यह पहल की गई है। इस व्यवस्था से कागजी प्रक्रिया कम होगी और वाद की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करना आसान होगा। राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण में लापरवाही और शिथिलता पर प्रदेश सरकार ने 4 तहसीलदार और 1 नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जाना हाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने मथुरा में करीब 1051 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा आस्था के साथ आर्थिकी पर भी है सरकार का ध्यान। प्रदेश भर में श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मथुरा में देश विदेश से बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु 500 ड्रोन के जरिए आसमान में जीवंत होंगी श्री कृष्ण की लीलाएं। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारतीय टीम ने हांगकांग को हराया, सेमीफाइनल में बनाई जगह। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

0: अटकी हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को समझना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्कार, लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं दीपांकर राय चौधरी का हवाइन गिटार पर बजाया राग नट भैरव।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे हवाइन गिटार पर दीपांकर राय चौधरी का बजाया राग नट भैरव। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। श्रोताओं, इसी के साथ अब आज के नमस्कार लखनऊ का सफर भी यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है, और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की DNA जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के DNA से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram per AIR News Alerts ko follow karein.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404IN-20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F-404 इंजन HAL और जीई एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
2: अपडेट रहे, आगे रहें। एक्सपर्ट एट AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वहीं प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की AI जनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। AI को नहीं, किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने AI सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा हमारी रेगुलर फ्रीक्वेंसी 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्वर परीक्षा के लिए एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी बरेली करने जा रहा है अपने SINE पैनल का विस्तार। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए है सुनहरा मौका। है आपकी आवाज में वो दम, जो वो क्रिएटिविटी जो रेडियो पर चला सके अपना जादू, तो देर किस बात की, चले आइए आकाशवाणी बरेली। आकाशवाणी बरेली अनाउंसमेंट, ट्रांसमिशन और स्पेशल ऑडियंस कार्यक्रम जैसे नारी संसार और युववाणी, ग्राम जगत, अंकुर कार्यक्रम में असाइनमेंट के आधार पर कार्य करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए, युववाणी के लिए 10+2 और बाकी के लिए कम से कम ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, बरेली नगर निगम में ही रहते हों ये भी जरूरी है। अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए 1 सितंबर से यानी कि समय हो गया है और आप किसी भी वर्किंग डे में और वर्किंग टाइम में आकाशवाणी आकर आवेदन पत्र आपको लेना होगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 20 सितंबर। तो किस बात का इंतजार है, चले आइए और हमसे जुड़ जाइए। इसी के साथ ये सूचना यहीं पर संपन्न होती है।

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी बरेली है, FM 100.4 MHz, न्यूज ऑन AIR ऐप तथा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। वक्त हो चला है साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे का।
1: फिल्मी फ्राइडे कट वन
2: टेक वन 5, 6, 7, 8
1: लाइट्स कैमरा एक्शन एक्शन एक्शन
3: लेडीज एंड जेंटलमैन होल्ड योर हार्ट।

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबकी आज का फिल्मी फ्राइडे में। और आपके साथ ढेरों फिल्मी बातें लेकर हाजिर हो चुका है आपका फिल्मी दोस्त गजेंद्र। तो कहीं जाइएगा मत। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी आकाशवाणी बरेली की टीम की ओर से। तो भैया, बातें फिल्मों की होती है और फिल्मों में अगर बात की जाए कुछ इल्म भी छिपे होते हैं। कौन सी फिल्म से कौन सा इल्म आपने लिया है जिसे आप जिंदगी में बेहतरी के लिए उपयोग में लाते हैं आप बता सकते हो। लेकिन एक बात है, एक दबी तमन्ना जो काफी समय से आपके दिल में रही और अब तो उस तमन्ना को आप भूल भी चुके होंगे। भाई, रोज कमाने खाने के लिए घर से निकलना पड़ता है, ऐसे में बहुत सारे शौक बहुत सारी तमन्नाएं अतीत में रह जाती हैं। क्योंकि एक कहावत है ना, बीती ताहे बिसार दे आगे की सुध ले। तो भैया सीधी सी बात है कि जिंदगी जीते हुए भी अगर वो तमन्नाएं कभी कभी उछाल मारे आपके दिल में, हैं? दिल से हमें याद आया, दिल तमाम झंझावात झेलता है, खान पान का बहुत बड़ा असर पड़ता है, आजकल दिल की बीमारियां बहुत होती हैं, दिल के रोग बहुत बढ़ रहे हैं। ओहो, प्रेम का रोग तो दिल से ही जुड़ा है, लेकिन इसके अलावा भी और भी गम है जमाने में, है ना? तो अपने दिल का ख्याल रखिए, अपने दिल की सेहत का ख्याल रखिए। हम तो कहते हैं पूरी सेहत का ख्याल रखिए, है ना? आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिलावट बहुत ज्यादा हो रही है ना, और तली भुनी चीजें, ऐसी चीजें सुपाच्य नहीं होती हैं, उन्हें हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो अपने स्वाद पर कंट्रोल है ये जरूरी है, ये सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके दिल की सेहत का मामला भी जुड़ा

हिस्से। तो खैर खान पान का ध्यान रखिए, व्यायाम करते रहिए, ये आवश्यक है आजकल के इस दौर में। और हाँ, दिमाग से टेंशन यानी तनाव को दूर कीजिए, बहुत सारी समस्याएं आपके तनाव से ही जन्म लेती हैं, स्वास्थ्य समस्याएं। ये तो हुई कुछ अपने लिए जागरूकता, अब बातें करेंगे वहाँ फिल्मी फ्राइडे में। हम सबसे पहले अपने सितारों के नाम लेते हैं, उसके बाद सुपरस्टार से बतियाते हैं। एक जरूरी बात है, मतलब ये तो अच्छी तरह तय हो चुका है कि आप में से ज्यादातर क्या बल्कि सभी कहीं ना कहीं एक ही साथ जैसी बात जब जवाब भेजें। अगर गलत है तो सबका गलत है, अगर पूरा गलत है तो सबका पूरा गलत है, आधा अगर गलत है तो आधा सबका गलत है। इसका मतलब एक दूसरे से कॉपी चलती है। भाई पिछले हफ्ते हमने रक्षाबंधन के दो ट्रैक प्ले किए, जिसमें जो पहला ट्रैक प्ले किया था उसके बारे में आपसे पूछा था कि उसमें गायक कलाकार कौन है। अब जो दूसरा ट्रैक प्ले किया उसमें और गायक कलाकार हैं, लेकिन एक गायिका सेम है, श्रेया घोषाल, लेकिन जो मेल वॉइसेस हैं वो अलग अलग हैं। तो हमारे सभी दोस्तों ने जो दूसरा ट्रैक था उसी के गायकों को लिखा, इसका मतलब सुपरस्टार तो कोई ना बना। अब वैसे तो कायदे में अगर देखा जाए तो पूरा सही जवाब हो तभी आपको शामिल किया जाए, लेकिन चलिए आधा सही जवाब है तो सितारे तो आप बन ही सकते हैं, थोड़ी मेहनत और करेंगे तो सुपरस्टार बन जाएंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं, उन सभी सितारों को आज शामिल करते हैं, आज सुपरस्टार तो कोई नहीं है कार्यक्रम में। सबसे पहले भी सही जवाब भेजा तो भी गलत भेजा, तो एक ही नाम लिखकर भेजा, बड़ीनाथ बरेली से श्रेया घोषाल, नीरज सक्सेना जी ने हमें राइट आंसर आपने भी भेजा, पन्नी लाल सागर जी, एक ही सही जवाब है आपका, आधा सही जवाब, एक क्यों कहा जाए। पन्नी लाल सागर जी हैं बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से, और ये जवाब हमें भेजा है बीपी गौतम जी ने एटा रोड गंजवारा से। पवन गौड़ जी ने भी हमें जवाब भेजा कासगंज उत्तर प्रदेश से, आधा सही जवाब है। मोहम्मद कलीम जख्मी रेलवे रोड गंज डंडवारा से आधा सही जवाब भेजते हैं, तो आधे ही सही जवाब है, पूरा तो किसी का ना है सही। आप हैं मास्टर विठल सरोज से काटा रोड वासिम महाराष्ट्र से। एम असलम सैफी बलराम गेट कासगंज से हैं, और अजीत भावसार जी बीरम गांव गुजरात से हैं, और ये जवाब हमें मिला है कहां से, आप तो बिल्कुल गलत भेजे हैं, अलका याग्निक मनोहर दास तो उसमें है ही नहीं। डॉक्टर डी एच बच्चन जी हैं गणेशपुर गंजडंडवारा से, और ये जवाब हमें कहां से मिला है, गणेशपुर गंजडंडवारा एटा से हैं एम फारूक शेख, जवाब लेकर तो आप भी आए हैं। बलराम गेट कासगंज से सोनी सैफी, मोहम्मद सईद अब्बासी ऊपरकोट बुलंदशहर से हैं, और जैमिन कुमार जैन बीरम गांव राजकोट से हैं, राजकोट से जी बिल्कुल। मनोबर लल्ला जी पश्चिम थोक गंज डंडवारा से भी आधा सही जवाब भेजे हैं, और आप हैं कौन है, मोहम्मद जाहिद अली सैफी छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से हमें आधा राइट आंसर भेजा है, लुबना खुसरो ने यहीं से, और ये जो साथी हैं वो लीबा मलिक जी हैं, आप भी एक ही जगह से हैं सभी साथी, तो बाकी और कोई, हाँ बिल्कुल तुबा खुसरो भी यहीं से हमें जवाब भेजे हैं आधा सही। मोहम्मद जोहान सैफी साहब भी यहीं से हैं, यानी छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से, और एम खलील कुरैशी पटियाली रोड गंज डंडवारा से हैं। एटा रोड गंज डंडवारा से फैसल शेख साहब हैं, और सुरेश चौरसिया जी साहबगंज चौराहा फरुखाबाद से हैं, और आधा सही जवाब हमें भेजा है सलीम सेठ सैफी ने कस्बा जादवपुर से। और कोई है, बिल्कुल है, काहे नहीं होंगे, आप हैं शमा सैफी कस्बा जादवपुर से, और आपको बता दें शबनम सैफी भी यहीं से हैं, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद। चलिए कोई बात ना है, आधा सही आधा गलत है ना, तो ऐसा करते हैं क्या करेंगे भाई, बधाई तो देना पड़ेगा। चलिए बधाई हो आपको।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से। वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं और विविध यानी विभिन्न सर्वर्स पर भी हमारी ये स्ट्रीमिंग आप सुन रहे हैं। कई सारे ऐप हैं, लेकिन अधिकृत ऐप जो है वो है न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT प्लेटफॉर्म। फिल्मी फ्राइडे से आप सुन रहे हैं, बातें टोटल फिल्मी होती हैं और फिल्मों में इल्म भी छुपा होता है। आपने कौन सा इल्म फिल्मों से सीखा, इसके बारे में हमने अभी कहा था थोड़ी देर पहले। तो तिलक राज अरोड़ा जी खुर्जा उत्तर प्रदेश से बताते हैं कि फिल्म दीवार में इन्होंने AK हंगल के रोल से ईमानदारी की प्रेरणा ली और अपने जीवन में ईमानदारी से ही सभी कार्य करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। हम हमेशा कहते हैं कि जो फिल्में होती हैं वो समाज का आईना होती हैं और फिल्म में इल्म भी छिपा होता है। धन्यवाद अपने जज्बात हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी मोहब्बत और शिद्दत के साथ सुनते रहो फिल्मी फ्राइडे, एवरी फ्राइडे सुबह 8:15 से आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली से। अब इतनी देर के बाद हमारे बहुत सारे दोस्त कह रहे होंगे कि भैया आधा तो सही जवाब था, लेकिन आपने ये बताया नहीं कि सही जवाब पूरा क्या था। अरे भाई, अरिजीत और श्रेया घोषाल की आवाजें नहीं थी उस गाने में। उस गाने में जो आवाजें थी वो श्रेया घोषाल और स्टेबिन बेन की थी। एक बार सुन लीजिएगा फिर से, सोचिएगा, गौर कीजिएगा, अंतर है अरिजीत की आवाज में और इनकी।

तो अंदाजा लगा लिया अरिजीत सिंह और स्टीविन बैन की आवाजों में फर्क है। वैसे आपने तो सर्च किया होगा गूगल से, है ना। खैर, आपको बता दें दोस्तों कि हमारे ब्रिज के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रक्षाबंधन भी किया जाता है। क्या आपके क्षेत्र में ऐसा होता है, हमें बताइएगा। आप चाहें तो मुझे फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे के पेज पर बता सकते हो। चलिए और बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी बरेली से बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो फिल्मी फ्राइडे। और फिल्मी फ्राइडे में शोले फिल्म में जो दोस्ती की बात कही गई है उससे प्रेरणा ली है जिन्होंने, उन्होंने अपना नाम नहीं भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने शोले

फिल्म दोस्ती है, दोस्ती सीखी है। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। फिल्मी फ्राइडे में दोस्तों अब बारी है फिल्म को फ्राई करने की, तो बी रेडी, तैयार हो जाइएगा। आज जो फिल्म लेकर आए हैं आपके लिए वो भी मुझे लगता है कि बिल्कुल सेम उसी आज के दिन से खास जुड़ी हुई है। जी हाँ, फिल्म का नाम है गांधारी। दोस्तों इस फिल्म में अभिनय किया है तापसी पन्नू, इश्वाक सिंह, मीता वशिष्ठ, स्वास्तिका मुखर्जी, छाया कदम, जतिन सरना, प्रशांत नारायणन, चंदन रॉय और साथियों ने। ये एक हिंदी एक्शन और थ्रिलर टाइप की फिल्म है। डायरेक्शन किया है देवाशीष मखीजा ने। दोस्तों महाभारत महाकाव्य में एक बार द्वापर की गांधारी थी, जिसने अपने नेत्रहीन पति की सच्ची अर्धांगिनी बनने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। एक गांधारी आज के दौर में लेखिका कनिका ढिल्लन की है, जो अपनी बेटी की रक्षा के लिए नेत्रहीन बनती हैं। कनिका ने यूं तो महाभारत की गांधारी की छवि तोड़ते हुए उसे एक सशक्त पहचान देने की कोशिश की है, लेकिन अधबकी कहानी और ढीली लिखाई के कारण उनकी ये फिल्म कमजोर ही साबित होती है। वैसे तो कनिका ने फिल्म में बच्चियों की यौन तस्करी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एक नेत्रहीन माँ की बेटी को ढूंढने की भावुक यात्रा, एक देवी के राक्षस का वध करने का पौराणिक जुड़ाव, ऐसे कई भावनात्मक तीर छोड़े हैं, लेकिन अफसोस ये है कि निशाने पर लगने की बजाय चारों ओर बिखर जाते हैं। कहानी होती है पश्चिम बंगाल के एक काल्पनिक शहर जयपुरा में, जहाँ के बारे में मशहूर है कि कभी दानव मगरासुर बच्चियों को पाताल लोग उठा ले गया था, तब देवी चौमुखी ने उसका संहार किया था। बहरूपियों के इसी शहर में ठहरी हुई ट्रेन से बानी यानी तापसी पन्नू और गोकुल यानी इश्वाक सिंह की बेटी मिस्टी दिन दहाड़े अगवा कर ली जाती है। अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश में बानी चोटिल होकर अस्थायी रूप से आंखों की रोशनी भी खो देती है। इधर पुलिस उनकी शिकायत पर कान नहीं धरती, क्योंकि इलाके में बच्चियों का अगवा किया जाना आम हो चुका है। असल में वहाँ ब्लैक होल नामक बाल यौन तस्करी गिरोह सक्रिय है, जिस पर नकेल कसने के लिए सीनियर पुलिस अधिकारी कबीर यानी जतिन सरना भी वहाँ पहुँचा है, लेकिन पुलिस से मदद न मिलता देख बानी और गोकुल दोनों अपने अपने तरीके से मिस्ट्री की तलाश में जुट जाते हैं। बानी की मदद उसकी माँ रूपी मेंटोर झुनू यानी मीता वशिष्ठ करती हैं, जिसकी खुद की पोती भी इसी गिरोह के पास होती है। झुनू न सिर्फ उसे लड़ना सिखाती है, बल्कि आंखों की रोशनी के आने के बाद भी गांधारी बनकर ब्लैक होल की अंधेरी दुनिया में घुसने का सुझाव देती है। अब बानी इस ब्लैक होल के अंधेरे से बच्चियों को कैसे बचाती है, ये सब जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, ये वहाँ बड़े वाले पर्दे पे ना आई है, ये आई है OTT प्लेटफॉर्म पर। वैसे आजकल हर मंथली रिचार्ज के साथ कुछ OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी आपका ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मोबाइल नेटवर्क आपको फ्री में देता है। कभी यूज किया है आपने? जब भी रिचार्ज करवाओ ये ध्यान रखो कि उसके साथ अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ कितना डेटा मिल रहा है, और डेटे के साथ मतलब डेटा के साथ आपको एक स्टार लिखकर नीचे लिखा होगा OTT प्लेटफॉर्म पर भी आपको इसका सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ओहो क्या बात है, तो जब आप अपने पाई पाई का हिसाब रखना चाहते हैं, अपने पैसे की पूरी वसूली करना चाहते हैं, तो भैया ये जो सुविधाएं आपको आपके ISPs की तरफ से मिल रही हैं उनको भी यूज कीजिए। बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म आपके फोन में पहले से इंस्टॉल आते हैं, आपने रिचार्ज कराया उसके साथ भी आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, पूरे एक महीने का, दो महीने का, तीन महीने का, है ना। तो एक बार चेक करो कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो। हां जी चलो, तो अब बात करते हैं मन मर्जियां से लेकर रश्मि रॉकेट, हसीन दिलरुबा, फिर आई हसीन दिलरुबा और डंकी जैसी कई फिल्मों में तापसी पन्नू के साथ साझेदार कर चुकी कनिका ढिल्लों ने हमेशा उन्हें दमदार भूमिका के साथ पर्दे पर पेश किया है। फिल्म गांधारी भी इसका अपवाद नहीं है। इसमें तापसी को एक नेत्रहीन महिला की चुनौतियां, बेटी को खो चुकी माँ की बेबसी और उसे पाने की जिद में जोरदार एक्शन करने का मौका मिला है। लेकिन इस मूवी के अलावा पटकथा से लेकर बाकी किरदार तक सब हल्के ही रह गए हैं। फिल्म देखते हुए उन्हें विकसित करने या गहराई देने पर मेहनत नहीं दिखती। दोस्तों बच्चियों की तस्करी का मुद्दा सिनेमा ही पर्दे पर कई बार दिखाया जा चुका है। हाल ही रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 और OTT प्लेटफॉर्म पर दिल्ली क्राइम सीजन 3 जैसी सीरीज इसमें काफी प्रमुखता से रचा गया है। ऐसे विषय में जो गांधारी में है उसमें कुछ नयापन तो नहीं है, लेकिन उस पर जयपुरा की ये दुनिया भी विश्वसनीय नहीं लगती। कुछ कमियां शुरू से ही दिखाई देने लगती हैं।
उदाहरण के लिए एक और बानी इसलिए परेशान होती है कि बच्चियों को

बचाने के लिए सिर्फ 1.5 महीना ही है, लेकिन फिर अचानक से 1 महीना वो फाइट सीखने में लगा देती है। और यही नहीं, इतने कम समय में बानी और गोकुल जयपुरा में अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं, नौकरी ढूंढ लेते हैं और हर कोई उन्हें जानने लगता है। जिस हड़बड़ी से ये सब होता है, इस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। राइटर कनिका ढिल्लन और डायरेक्टर देवाशीष मखीजा फिल्म में किरदारों के आपसी रिश्ते भी मजबूती से स्थापित नहीं कर पाते। फिर चाहे वो बानी का झुन्नू अम्मा से रिश्ता हो या गोकुल से ही, यहाँ तक कि मिस्ट्री संग भी इमोशनल कनेक्ट नहीं दिखता। झुन्नू और गोकुल की बैक स्टोरी को भी चलताऊ तरीके से कुछ शब्दों में निपटा देना अखरता है। एक शहर में पुलिस, अस्पताल, एनजीओ, हर जगह हर इंसान का बुरा होना भी अटपटा लगता है। हाँ, फिल्म के एक्शन सीन बढ़िया है। तापसी पन्नू एक बार फिर बेबी और नाम शबाना वाला दमखम दिखाती हैं, लेकिन क्लाइमेक्स की फाइट बेतुकी लगती है। कुल मिलाकर ये फिल्म सिर्फ तापसी की है, जबकि मीता वशिष्ठ, स्वास्तिका चटर्जी, छाया कदम, जतिन सरना, प्रशांत नारायण, इश्वाक सिंह, इन सभी बेहतरीन कलाकारों के किरदार अपने कद के मुताबिक ऊंचाई नहीं पाई। बाकी तकनीकी रूप से फिल्म मजबूत है, कहानी की तेज रफ्तार, सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड स्टोर, रोमांच बनाने में ये सब सहयोगी है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आप सोच रहे हो क्यों देखें, तो वैसे तो आपकी अपनी थारी मर्जी है, देखो या न देखो, हमारा गम फ्राई करना तो वो हमने कर दिया है ना। लेकिन अगर आप तापसी पन्नू के फैन हैं, घर बैठे ओटीटी पर कुछ देखना चाहते हैं, तो सर्च मारिए अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर वो कौन सा ऐप है जिसमें आपको गांधारी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा आप यूज कर रहे हैं। वैसे जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज हुई है ना, सच मानो वो सबके में है ना। तो बस हमें क्या करना है, हमें तो कुछ नहीं करना है। आज के लिए फ्रैंक पेन बंद करते हैं, बाकी थारी अपनी मर्जी, फिल्म देखो या ना देखो, अगले हफ्ते एक और फिल्म लेके आएंगे, है ना। तो आज के लिए फ्रैंक पेन बंद, मिलते हैं अगले हफ्ते एक और फिल्म लेकर।

अब आप लिखना है। फिर उसके बाद अपना नाम पता और अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा और इसे भेज दीजिएगा फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे के पेज पर मैसेंजर के थ्रू। जी हाँ, तो मैसेंजर ओपन कर लीजिए, टाइप कीजिए BLYFM, एक खाली जगह छोड़िए, अपना जवाब लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए, पता लिखिए और इसे भेज दीजिए। जी हाँ, वही नंबर है। कौन सा वाला नंबर तो नहीं है, बल्कि एड्रेस वही है पेज का, फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे के पेज पर आ जाइए हमारे साथ। तो हम एक गाना सुनवा रहे हैं आपको और आपको बताना है फिल्म का नाम। ये जो गीत आप सुनेंगे आपको फिल्म का नाम बताना है। आज रात 12 बजे तक आप सबके जवाब हमें मिल जाने चाहिए।

दोस्तों आकाशवाणी बरेली FM 104 मेगाहर्ट्ज़ न्यूज़ ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस समय सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो फिल्मी फ्राइडे। और अब बारी है सवाल की, सवाल वो जो आपको बना दे स्टार या सुपरस्टार। सुपरस्टार तो एक ही होंगे, स्टार्स ज्यादातर होंगे, तो तैयार रहिएगा, जरा गौर से सुनिएगा। और एक जरूरी बात, सबसे पहले आपको टाइप करना है BLY FM स्पेस देना है, उसके बाद अपना

0: जी हाँ, आपको फिल्म का नाम बताना है तो जल्दी से अपना जवाब भेज दीजिए और आज रात 12 बजे तक आप सबके जवाब मिल जाएंगे, हमें ऐसी उम्मीद करते हैं। फिलहाल अब तो चलना पड़ेगा। जी हाँ, अगले हफ्ते हम आपसे करेंगे मुलाकात, ढेरों फिल्मी बात। तब तक आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। आज के फिल्मी फ्राइडे को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय, टेक केयर एंड फिल्मी भाव।
1: Filmy Friday. Cut one. Take one.
2: 5, 6, 7, 8.
3: So baby.
1: Lights, camera, action. Action. Action.
4: Ladies and gentlemen, hold your heart. Hold your breath.
1: We will meet again.

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, वेब्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म और रेगुलर फ्रीक्वेंसी एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओ, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 5 सितंबर 2026 को 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु न रोए, शंकाएं व समाधान। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 4 सितंबर 2026 को 4:30 से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिएगा। विषय है, क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु न रोए, शंकाएं व समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 4 सितंबर 2026 को 4:30 से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251720। श्रोताओ, इसी के साथ रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, एफएम 100.4 MHz, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। आइए सुनते हैं अब लोकगीत।
1: सुन नंद यशोदा मैया नय माने तेरो कृष्ण कन्हैया।
0: आरंभ में लीजिए सुनिए बाल कृष्ण भारती और साथियों के स्वर में ये ब्रज गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 MHz, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को है। आइए सुनते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में ओ रोमियो। इस फिल्म का गाना गुलजार के हैं बोल और विशाल भारद्वाज की है तर्ज।

दोस्तों, आज 4 सितंबर है। आज है ऋषि कपूर जी का जन्म दिवस। हालांकि भौतिक रूप से वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी कला के माध्यम से हमारे दिलों में बसते हैं और हमेशा बसते रहेंगे। ऋषि कपूर जी एक सदाबहार अभिनेता थे और सिने जगत में सदा प्रासंगिक रहे थे और रहेंगे भी। तो चलिए, उन्हीं की फिल्म का एक गाना आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है 102 नॉट आउट। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, और अमिताभ बच्चन ने संगीतबद्ध किया है इस गाने को।

0: के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

पर क्यों पड़ी लगे आए हाय।

0: श्रोताओं, अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र, जहां से आप सुनेंगे जन्माष्टमी पर विशेष कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम।
2: विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा समेत समूचे ब्रज क्षेत्र में बने धार्मिक आध्यात्मिक माहौल और प्रशासन की तैयारियों पर मोहम्मद उमर कुरैशी के साथ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
3: की नगरी मथुरा समेत समूचा ब्रज क्षेत्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर योगेश्वर श्री कृष्ण की भक्ति और आस्था के रंग में डूब गया है। मंदिरों की सजावट, भजन कीर्तन, शंख और घंटियों की गूंज और राधा कृष्ण के जयकारों से पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की झांकियां सजाई जा रही हैं और देश दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन्मोत्सव की दिव्य छटा के साक्षी बनने के लिए पहुंच गए हैं। जन्माष्टमी केवल धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सव का पर्व नहीं है, ये भारतीय समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी महत्वपूर्ण प्रतीक है और भक्ति भाव में सब भूल कर झूमते लोग इसी बात का प्रमाण है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचे। उन्होंने न केवल यहां विकास की कई परियोजनाओं की सौगात दी बल्कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरासत केवल भौतिक चीजों में नहीं बल्कि हमारे मंदिरों, दर्शन और ज्ञान परंपरा में शामिल है।
4: विरासत केवल किसी भौतिक वस्तु में नहीं होती, विरासत हमारे मंदिरों में है, हमारी भाषा में है, हमारे साहित्य में है, हमारे संगीत में है, हमारी कला में है, हमारी दर्शन में है, गणित में है, विज्ञान में है, चिकित्सा में है, खगोल ज्ञान में है, हमारी लोक परंपरा में है और हमारी ज्ञान परंपरा में है। और इसीलिए डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया आयाम जोड़ा है कि विरासत भी और विकास भी, आस्था भी और आर्थिकी भी, यानी अर्थव्यवस्था भी, परंपरा भी और परंपरा के साथ साथ परिवर्तन भी।
3: मथुरा की जन्माष्टमी का आकर्षण पूरी दुनिया में है। हर बार यहाँ भक्ति के ऐसे रंग देखने को मिलते हैं जो न केवल अनूठे होते हैं बल्कि भक्तों को आनंद, आध्यात्म के नए स्तर पर ले जाते हैं। इस महोत्सव को भव्य बनाने के लिए इस बार अनेक प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से भक्तिमय माहौल को और दिव्य बनाएंगे। इसके साथ ही पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत किया जाएगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के भव्य आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि इस साल श्री कृष्ण पहली बार पंचरत्नी विशेष पोशाक धारण करेंगे। साथ ही उत्सव के दौरान कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गौ द्वारा ठाकुर का अभिषेक किया जाएगा।
5: इस वर्ष भगवान पंचरत्नी पोशाक धारण करके भक्तों को दर्शन देंगे और श्री ठाकुर जी कलहंस पुष्प अंगरे में विराजमान होकर बहुत ही दिव्य और भव्य रूप में भक्तों को दर्शने होंगे। इस वर्ष जो संकल्प है वह गौ रक्षा राष्ट्र रक्षा, तो बहुत ही प्रमुख हमारा जो भाव है गौ रक्षा और गौ सेवा, यह इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मुख्य संकल्प होगा।
3: समूचे ब्रज क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों में जन्माष्टमी को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। विशेष सजावट, लाइटिंग के साथ ही भगवान के श्रृंगार और भोग की व्यवस्था की जा रही है। यहां के साधु संतों में अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के जन्म को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। वृंदावन के ही रहने वाले भगवताचार्य रामविलास चतुर्वेदी कहते हैं कि यहां संत समाज इस महोत्सव की साल भर प्रतीक्षा करता है, इसका आनंद और अनुभूति अद्वितीय है।
6: हमारे ब्रजमंडल के सभी मंदिरों में भव्य और दिव्य सजावट की जा रही है तथा जितने भी हमारे मंदिर के मार्ग हैं उनको भी सजाया जा रहा है। भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से इस धरा धाम पर अवतार लेकर के समस्त जनमानस के कल्याण के लिए, समरसता के लिए, एकता के लिए तथा समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है, उसमें सभी संकल्पित होकर के अपने जीवन को भी उससे जोड़े। जय श्री कृष्ण।
3: जन्मोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने पर प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम

अभी आप सुन रहे थे सूरज पे मंगल भारी इस फिल्म का गाना। श्रोताओं, चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मथुरा में 129 स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं और 24 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 16 वॉच टावर बनाए जाएंगे। पुलिसकर्मी इन टावरों से भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों के जरिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों की निगरानी की जा रही है। एडीजी आगरा जोन एसके भगत ने बताया कि जन्माष्टमी को लेकर मथुरा वृंदावन को 7 जोन और 35 सेक्टरों में विभाजित किया गया है।
1: कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई। 7 जोन में और 35 सेक्टर लगभग इनको इस पूरे क्षेत्र को विभाजित किया गया है, जहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस पीएसी आरएएफ सभी कंपनी डिप्लॉय की गई और प्लस जो है फायर टेंडर एसडीआरएफ सभी लोग जो है फोर्स प्रॉपर डिप्लॉयमेंट हो गई, कहीं कोई इशू ना रहे। बस ये हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो है श्रद्धालुगण जो आएंगे और भीड़ लगभग 10:30 बजे के आसपास रात्रि से बढ़ना शुरू होता है रात के 1 बजे तक। बार थोड़ा चेंज किया गया है कि होल्डिंग एरियाज बढ़ाए गए ताकि जो है श्रद्धालुगण को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और सुगमता से दर्शन।
0: सुरक्षा के साथ ही शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 25 प्रमुख चौराहों, 3 घाटों और उनसे जुड़े मार्गों पर आकर्षक विद्युत सजावट की गई है। 17 प्रमुख स्थानों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी व्यवस्था से काफी खुश नजर आ रहे हैं। जन्मोत्सव का उत्साह और शहर का आध्यात्मिक माहौल उन्हें आनंदित कर रहा है। यहाँ दर्शन करने आई किरण बताती हैं कि सबका मन होता है कि एक बार यहाँ आए और जन्मोत्सव में शामिल हो। इस बार व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई हैं।
2: पहले की अपेक्षा यहाँ पर बहुत धूमधाम है। श्रद्धालु अभी से आ रहे हैं यहाँ पर। सबका मन होता है एक बार जन्मभूमि के दर्शन जरूर करें। हम भी इसीलिए आए हैं कि यहाँ भगवान के एक बार दर्शन जरूर करें। बहुत अच्छी तैयारी हो रही है और बहुत ही भीड़ है यहाँ पर।
0: श्रद्धालु इस दिव्य महोत्सव को लेकर जहां भक्ति भाव में डूबे हैं, वहीं प्रशासन भी उनकी सुविधा और उनकी यात्रा को यादगार बनाने के पूरे प्रयास कर रहा है। मथुरा वृंदावन के नगर आयुक्त ओजस्वी राज ने बताया कि आयोजन के दौरान मथुरा वृंदावन प्लास्टिक मुक्त रहेगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि सजावटी सामग्री और अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग न करें।
3: पूरे मथुरा, पूरे ब्रजमंडल में, पूरे वृंदावन मथुरा में पूरी भव्यता पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन सर्वाधिक रहेगा वहाँ पे पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रहे, पर्याप्त डेकोरेशन रहे, सेल्फी पॉइंट्स रहे, चौराहे के साथ सज्जा रहे, उसी हेतु निरीक्षण किया गया है और हमारी पूरी टीम विगत 25 दिन से अच्छे से कार्य कर रही है।
0: श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए जलकल विभाग ने भी व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। मथुरा नगर निगम के महाप्रबंधक जल अनवर मोहम्मद ख्वाजा ने बताया कि मंदिर परिसर के आसपास और परिक्रमा स्थलों पर 53 मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न प्रमुख स्थानों पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 186 पानी के टैंकर लगाए जाएंगे। साथ ही भीड़ वाले क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त पेयजल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
4: जन्माष्टमी के पर्व पर जैसा कि विदित है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से मथुरा वृंदावन में आते हैं और श्रद्धालुओं की के लिए पेयजल व्यवस्था और उनके सीवरेज एवं अन्य सुविधाओं के लिए जल विभाग द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित प्रतिवर्ष की जाती है और इस वर्ष भी जलापूर्ति के लिए 186 पानी के टैंकर्स जिनकी जगह चिन्हित कर ली गई हैं और इसके साथ साथ हमारे मोबाइल टॉयलेट्स हैं जिनमें लोगों को सुविधा प्रदान की जाती है। इस बार 55 नग मोबाइल टॉयलेट्स विभिन्न स्थानों को लगे रहेंगे जिनमें इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है उनको भी चिन्हित कर लिया गया है और उन पर भी मोबाइल टॉयलेट्स और टैंकर्स की व्यवस्था रहेगी।
0: जन्माष्टमी के महापर्व को लेकर प्रशासन ने जहां खास तैयारियां की है वहीं इस महोत्सव से स्थानीय दुकानदार, होटल कारोबारियों और व्यवसायियों को भी लाभ मिल रहा है। कान्हा के लिए पोशाक बनाने वाली सीमा बताती हैं कि बड़े स्तर पर उन्हें ऑर्डर मिले हैं। अलग अलग और आकर्षक पोशाक बनाने के लिए भक्ति, समर्पण भाव और पूरी मेहनत के साथ उनकी टीम काम कर रही है।
5: जन्माष्टमी की ही समय बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सारे मंदिरों की पोशाक एंड ठाकुर जी की पोशाक, सब तरह की पोशाकें चल रही है। इस समय व्यापार तो बहुत अच्छा इस समय देखने को मिल रहा है। कड़ी मेहनत के साथ सभी में लगे हुए हैं पूरा टाइम दे करके। इससे ही पता चलता है कि हमारा मार्केट बहुत अच्छा इस समय चल रहा है।
0: मथुरा में जन्माष्टमी के दौरान दिखाई देने वाली श्रद्धालुओं की विविधता भारत की सांस्कृतिक एकता की झलक प्रस्तुत करती है। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता और जीवन मूल्यों का उत्सव भी है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी यही है कि अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए और प्रेम और सद्भाव के साथ समाज को आगे बढ़ाना चाहिए।
6: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में बने धार्मिक आध्यात्मिक माहौल।

0: और प्रशासन की तैयारियों पर मोहम्मद उमर कुरैशी के साथ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
1: अभी आपने सुना विशेष कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हम अपने श्रोताओं को बता दें, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शनिवार, मंगलवार, गुरुवार शाम 6:50 से 7:20 तक।
1: जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताज़ा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ।

श्रोताओं, गदर टू फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक सजीले बांके नौजवान की।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

4 सितंबर 1952 को राज कपूर के घर जन्मे। पिता राज कपूर और दादा पृथ्वीराज कपूर रजत पट को पहले ही सुनहरा बना चुके थे। दोनों नामी कलाकार थे। महज 3 बरस की उम्र में ऋषि कपूर ने पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 के इस गाने में काम किया था। हमें पता है कि जब आप ये गाना सुनेंगे आपके मन में रजत पट पर 3 बच्चों की छवि जगमगा जाएगी।

0: ऋषि कपूर ने बताया था कि जब श्री 420 की शूटिंग चल रही थी तो उनके पिता ने सोचा कि उनके तीनों भाई बहनों को एक साथ इस गाने में दिखाया जाए, पर पानी में चलते हुए आंखों पर जब पानी की धार पड़ती थी तो ऋषि कपूर रोने लगते थे, इसलिए वो शूटिंग को आनाकानी कर रहे थे। तभी नरगिस जी को आइडिया आया और उन्होंने चॉकलेट का लालच दिया। 3 बरस के ऋषि कपूर चॉकलेट के लालच में इस गाने में चलते रहे। इसके बाद सन 1970 में ऋषि कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर में एक छोटी सी भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: एक कस्सा दादाजी ने सुनाया था, जोकर के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। तो मैं तो बच्चा था, 70 में 18 साल का था, तो अवार्ड मिला तो मैं पापा के पास गया, पापा को मैंने दे दिया अवार्ड। तो तुम जाओ, दादा के पाँव में रख दो।

0: तो मैं गया दादाजी को मिलने। दादाजी ने बहुत प्यार किया, मैंने वो बोला मैंने ये जीता है और मैंने उनके पाँव में रख दिया। दादाजी वहाँ फूट फूट के रोने लगे, रोने लगे वहाँ। मुझे उस वक्त उस सेंटेंस की गहराई का मतलब मुझे समझ नहीं आया था, जो मुझे बाद में समझ में आया। तो उन्होंने सिर्फ मुझे चूमा माथे पर, कहा कि राज कपूर ने मेरा कर्जा उतार दिया।
1: बतौर हीरो ऋषि कपूर सन 1973 में फिल्म बॉबी के जरिए रजत पट पर आए थे, पर यह कोई सोचा समझा प्लान नहीं था। यकीन मानिए ये सब अचानक हुआ था।
0: जोकर पिक्चर नहीं चली, फर्स्ट पार्ट लोगों ने बहुत पसंद किया, तो वो मैं उसमें एक एडोलेसेंट बॉय था। तो पापा बना रहे थे एक यंग स्टोरी, लव स्टोरी, सही मानो में टीनेज लव स्टोरी बॉबी के रूप में। तो उन्हें एक बॉबी अपनी हीरोइन की तलाश थी। तो जब डिम्पल को शॉर्टलिस्ट किया तो मुझे भी कहा गया कि भाई तुम भी रिड्यूस करो, तुम भी वेट कम करो, मैं तुम्हें लूंगा हीरो। पिक्चर बन रही थी बॉबी, बॉबी कौन था? डिम्पल। मेरे लिए जैसे आज की तारीख में जैसे जो भी हीरो के बच्चे होते हैं तैयार किया जाता है फिल्म में हीरो बनने का, तो वो घोड़े में एंट्री करते हैं या मोटरसाइकिल पे एंट्री करते हैं, वो वैसे कुछ नहीं था। मैं बाय डिफॉल्ट हीरो था। पिक्चर तो टाइटल रोल तो डिम्पल की थी, डिम्पल वाज़ द हीरो ऑफ द फिल्म। मैं बाय चांस, मुझे लिया गया, मेरी किस्मत अच्छी थी कि राज कपूर साहब ने घर में बैठा बैठा के वो ले लिया पिक्चर में। उन बीच में पिक्चर खत्म हुई, डिम्पल की शादी हुई, वो इंडस्ट्री छोड़ गई, पिक्चर रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हो गई, पूरा क्रेडिट मैंने खा गया, मैं हो गया बन गया एक्टर।

किसे पता था कि बॉबी के जरिए सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखने वाला ये क्यूट सा लड़का आगे चलकर एक लंबी और रूमानी पारी खेलेगा। दरअसल ऋषि कपूर भारतीय सिनेमा के पहले सबसे लंबी पारी वाले रूमानी हीरो बने। कमाल की बात यह भी है कि ऋषि कपूर की फिल्मोग्राफी की धारा एकदम अलग है, पर उन पर जो गाने फिल्माए गए आज भी रेडियो पर उन गानों की रुपहली यात्रा जारी है। जैसे ऋषि कपूर की दूसरी ही फिल्म जहरीला इंसान का ये गाना।

जी हाँ, सबसे हिट और सबसे रूमानी गानों की दौलत ऋषि कपूर को मिली। हिंदी सिनेमा को हर दौर में एक चॉकलेटी हीरो की जरूरत होती है, एक ऐसे नायक की जरूरत जो दुनिया की तमाम जुल्मतों और परेशानियों के पार हमें सपनों की दुनिया में ले जाए, प्यार के फूल खिलाए। भारतीय सिनेमा उद्योग की इन जरूरतों के लिए ऋषि कपूर 70 के दशक में वरदान बन गए थे। सन 1975 रफ

दिलचस्प बात यह है कि डिंपल के साथ फिल्म यात्रा शुरू करने वाले ऋषि कपूर की सबसे शानदार जोड़ी नीतू सिंह के साथ जमी। दोनों ने एक साथ तकरीबन 12 फिल्में की, जहरीला इंसान, जिंदा दिल, खेल खेल में।

0: ऐसे क्या?
1: ऋषि कपूर और नीतू सिंह लव आजकल, दो दूनी चार और बेशरम जैसी फिल्मों में साथ में नजर आए। दोनों में शुरुआती फिल्मों के समय दोस्ती हो गई थी। दोनों के बीच बहुत बातें होती थीं। एक बार ऋषि कपूर मुंबई से बाहर कहीं शूटिंग कर रहे थे। नीतू की इतनी याद आई कि उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, तुम्हारी बहुत याद आती है। आखिरकार लंबी दोस्ती के बाद 26 बरस के ऋषि कपूर और 21 बरस की नीतू सिंह 22 जनवरी 1980 को परिणय सूत्र में बंधे।

बॉबी के 9 बरस बाद 1982 में एक बार फिर से ऋषि कपूर ने अपने पिता के निर्देशन में काम किया। फिल्म थी प्रेम रोग।

इसके बाद राज साहब की अधूरी छूटी फिल्म हिना में उन्होंने काम किया, जिसे उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने निर्देशित किया था।

बीच में एक लंबा दौर आया जब ऋषि कपूर फिल्मों में काम तो करते रहे पर वो असरदार फिल्में नहीं थीं। पर इसके बाद आई यश चोपड़ा की चांदनी।

ये कहा जा सकता है कि हीरोइनों की कई पीढ़ियों के साथ ऋषि कपूर ने काम किया, फिर चाहे डिंपल हूं, नीतू सिंह हूं या टीना मुनीम।

अपने लंबे करियर में हीरोइनों की कई पीढ़ियों के साथ चॉकलेटी हीरो के रूप में अपने सजीले स्वेटर्स में नजर आते रहे ऋषि कपूर। सोचें

0: तकरीबन साल 2000 से ऋषि कपूर चरित्र अभिनेता के रूप में रुपहले पर्दे पर आने लगे। साल 2004 फिल्म हम तुम, साल 2006 फिल्म फना, इसके बाद नमस्ते लंदन, लव आजकल और पटियाला हाउस जैसी फिल्में आईं, जिनमें उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाई।
1: ये मातम क्यों मनाया हुआ है? मैं महारानी में जिंदा हूं, जाओ जाओ उसे देखो खेलते हुए, जाओ जाओ जाओ तुम सब जाओ, ये ऐसे मुंह मत लटकाओ, तुम जाओ जाओ देखो उसे खेलते हुए, आखिर मेरे नाम मेरी इज्जत से तो खेल रहा है वो, जाओ तुम लोग सब जाओ यहां से, जाओ जाओ। कहते हैं मेरा खुद का बेटा मेरा नहीं, ये लोग भी मेरे नहीं, लेकिन ये घर मेरा है, जमीन पे नहीं पीठ पे खड़ा किया इसे, और इन्हें कोई हक नहीं के मेरे सीने पे पैर रखे। दफा कर सबको।
0: साल 2012 में उन्होंने करण मल्होत्रा और करण जौहर के अग्निपथ के रीमेक में रऊफ लाला की शानदार भूमिका निभाई थी।
2: हाँ, यही कमरा है जहाँ सुनाई गई थी कहानी, और यही मैंने उनसे कहा था कि तुम पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम पिक्चर फ्लॉप करा दोगे मुझे लोग ऐसे रोल में, मेरी इमेज क्या है, मेरी छाप क्या है, और तुम मुझे क्या देना चाहते हो? नहीं नहीं सर, आप तो बेहतर करें ऐसे वो करूंगा तो सही, मुझे भी मालूम है अच्छा एक्टर मैं करूंगा सही, लेकिन उसे एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए। तो मैंने ना ना करके उसे नकार दिया, मैंने बोला चले जाओ ऐसे, देखो मैंने, उन्होंने हार नहीं मानी। एक महीने लगातार करण जौहर साहब और करण मल्होत्रा जो डायरेक्टर थे पिक्चर के, लगातार मेरे पीछे बने रहे कि आपको तो करना ही पड़ेगा। सही बात यह कमल जी, मेरे में एक्चुअली साहस यानी कि हिम्मत नहीं थी, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था ऐसे रोल करने का। मैंने सोचा कहीं मैं कर लूँ और मेरे कारण पिक्चर ना चले तो लोग बोलेंगे देखो पिक्चर फ्लॉप हो गई ऋषि कपूर की वजह से, और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई किसी को नुकसान हो। मैं जानता हूँ कि एक्टर मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ, मैं निभा लूँगा, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आप। तो मैं एक्चुअली सही मानों में उससे डर रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। तो जब बहुत दबाव आया तो मैंने उनसे सजेस्ट किया कि अच्छे काम करते हैं, एक लुक टेस्ट लेते हैं, यानी कि देखते हैं वो कैसा दिखेगा मेरे में। तो एक कच्चा पक्का हमने लुक टेस्ट लिया, जिससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने थोड़ी हिम्मत बनी, थोड़ा मैंने कहा अच्छा तो मुझे कुछ सीन्स वीन सुनाएंगे, फिर मैंने थोड़ा बहुत हिम्मत की और फिर मैंने बोला चलो भाई करते हैं देखते क्या होता है। अब जब फिल्म मुकम्मल हो गई, पिक्चर चल गई, हिट भी हो गई, कुछ बहुत लोगों ने हमारी भी तारीफ की, एक आध अवार्ड भी मिल गया, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसका जो क्रेडिट है ये दोनों करण जौहर और करण मल्होत्रा का है। अगर उनका दबाव नहीं होता, अगर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ऋषि कपूर ही कर सकता है रोल, तो ये मुझे कभी रोल नहीं मिला होता। ये मैं उल्टा उनकी सोच को मैं दाद देता हूँ कि उनने कैसा सोचा कि ऋषि कपूर कर सकता है।
3: लाला मेरा नाम है, रौफ लाला।
1: ये तो तू भूलेगा नहीं कि एक पल के लिए मैंने तुझे जहन्नम की याद दिला दी थी।
2: तो ये अवार्ड सही मानों में उनका है, मेरा नहीं। हाँ, मेरी मेहनत थी, उनका कॉन्फिडेंस था, उनकी एक फोरसाइट थी, आगे की एक सोच थी कि ऋषि कपूर सही है। मेरी तरफ से किसी का नुकसान हो जाए ये तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा।
0: साल 2018 में उन्होंने उमेश शुक्ला की फिल्म 102 नॉट आउट में काम किया। इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। लगभग इन्हीं दिनों में आई थी फिल्म डी डे।

0: एक ऐसी फिल्म जिसमें इरफान खान और ऋषि कपूर एक साथ नजर आते हैं।
1: एक बात बताओ, कैप्टन कौन है तुम दोनों में, ये या तुम? ये तो फौजी है, अकल से ज्यादा हाथ पैर चलाता है, तुम समझदार लगते हो। बात करते हैं चलो, वो एक फोन करना था।
2: अब में से कोई सौदा करने वाला दिखता है?

मुल्क में उनके किरदार की खूब तारीफ हुई। साल 2017 में ऋषि कपूर की आत्मकथा आई खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। जैसा कि हमने आपको बताया, सन 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर में भूमिका के लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सन 1974 में अपनी पहली ही फिल्म बॉबी में उन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। साल 2008 में फिल्म फेयर ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा ऋषि कपूर को फिल्म फेयर का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला था साल 2011 में फिल्म दो दूनी चार के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 में उन्हें मिला फिल्म कपूर एंड सन्स के लिए। 30 अप्रैल 2020 का दिन था जब मुंबई में 67 बरस की उम्र में ऋषि कपूर ने अपनी आखिरी सांस ली। वो अपने पीछे अपने परिवार, अपनी फिल्मों, अपने गानों और अपने दीवानों को छोड़कर चले गए। जमाना उन्हें एक खुशनुमा और चंचल अभिनेता के तौर पर हमेशा याद करेगा।

0: शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हमने अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 MHz, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आपकी पसंद।

आकाशवाणी बरेली के पेज पर आना है और आज के आपकी पसंद कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में अपना कमेंट कर देना है। भाई कुछ ही कमेंट के पसंद के गाने प्ले कर पाएंगे, लेकिन गारंटी है नाम सबके शामिल होंगे। साथ ही आप सबसे निवेदन है कि एक श्रोता जो भी कमेंट करें वो एक ही बार करें, बार बार नहीं। और एक कमेंट में जो नाम हो एक जगह से वो कहीं अन्य जगह से न भेजें। और टेक्स्ट कमेंट ही हम पढ़ेंगे, कोई भी पिक्चर कमेंट अगर आप भेजते हैं, पिक्चर अटैच करते हैं कमेंट के साथ, वो नहीं पढ़ेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। बाकी हम तैयार हो चुके हैं, अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ओहो इतना ज्यादा नहीं कि पड़ोसियों को परेशानी होने लगे। लेकिन आज का दिन तो बड़ा खास दिन है, आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज के आपकी पसंद कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आपको बता दें कि 182 कमेंट्स इस समय हैं, 108 लाइक के साथ। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको पहला गीत सुनवाते हैं फिल्म संजोग से, और संजोग फिल्म का ये गाना जिन दोस्तों ने सुनना चाहा है उनके नाम क्या है, बस आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही आपके मैसेज, आपके कमेंट, जैसे ही आपके कमेंट शॉर्ट आउट होते हैं, शॉर्ट किए जाते हैं, वैसे ही हम शुरू कर देंगे आपके नामों की झड़ी। तो बस आप कहां खोए हैं, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि धुआंधार आपकी पसंद शुरू हो चुका है। संजोग फिल्म का ये जो गीत है जिन दोस्तों ने सुनना चाहा है वो आप सब हैं।

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के आपकी पसंद के इस कार्यक्रम में। हम हाजिर हो चुके हैं आज आपकी सुरीली ख्वाहिशों के साथ। कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं, बस आपको

आप हैं कंवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण शिमाली मीना शिमाली और इनका पूरा परिवार आपको शामिल करते हैं एटा रोड गंज डंडवारा से फैसल शेख कैसर शेख आरिफ शेख नुसरत शेख हरमान शेख और इनके तमाम साथी बड़ेगढ़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का कमेंट मिला है और आप हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल सानी डॉक्टर हाजी अफजल मलिक और इनके साथ में संदीप रामगढ़ कैंट झारखंड से आप हैं कौन है निपी सानी जी हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी बोधराज खोरवाल भानु प्रकाश गीतिका खोरवाल और शिवाजीनगर बडाली देशमुख महाराष्ट्र से राजेश खोबरखेड़े शिवसागर इंदिराबाई खोबरखेड़े खंडवी बुलढाणा से दीपाली राम ढांडे स्वराज राम धाड़े थिलोरी अमरावती से सुनैना पवन भोंडे और इनके पूरा परिवार कमेंट करते हैं हमें नंदन कुमार सिंह अंकित कुमार सिंह बेगूसराय बिहार से और आपका कमेंट मिला है संदीप कुमार और संजय कुमार सिंह मोतिहारी बिहार से और बीडी कॉलोनी करगना बरेली से आप हैं बेनी सिंह सागर पनीलाल सागर आशीष कुमार अमर सिंह हितेश सागर बंटी राजेश कुमार वर्मा रूबी भारती एकता दिव्या रचना ओमवती भारती खनक शगुन सारांश अदिति वर्मा अयांश शिवांश और प्रथम सिंह और ये जो कमेंट मिला है नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिम्पल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी कमेंट करते हैं गंज डोंडवारा से आफ्ताब अंसारी रियाज अंसारी मोहम्मद कैफन बर्माशर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी और ये जो कमेंट मिला है वो सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर कुशल शाह नीति सुरभि अश्विन शाह मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह पदमा टाकिज नेपानगर मध्य प्रदेश से हमारे ये साथी हैं सहारनपुर से राधा नामदेव अपर्णा नामदेव अभिषेक नामदेव और इनका पूरा परिवार मझुआ गंगापुर भोजीपुरा बरेली से हंसमुख जी हसान समस इनाया और शानूर फलकनूर ताज मोहम्मद अबानूर और इनका पूरा परिवार रियासत हुसैन सिद्दीकी नियाजमा बेगम रियाज रिफाकत मोहम्मद रियान समरीन परवीन माहिरा नूर जसपुर उत्तराखंड से गढ़ी कोठा पंचकूला से आप हैं सराजुद्दीन अंसारी नसीबन बेगम अकरम शानिया इलियास मुशाहिद अक्सा आयशा उमर और समीना अंसारी आप करते हैं कमेंट ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साहब राही मेरा जहां आजाद नगर अक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे संजय मारकंडे और किट्टू का कमेंट है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता किशु तासु अर्णब आनंद और सत्यमानंद बोड़ाकाशी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत कमेंट किए हैं सोमनाथ जाधव गीता ओम जाधव सुभाष चंदन एकनाथ और संगीता जाधव जालना शहर से हैं और आप हैं नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव अनिता आरती पूजा प्रसाद सोनल और बेबी सिया जाधव और नानाजी लाम से मीना तेजस जय और हर्षिता लामशे का कमेंट

मिला है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी से आप हैं, उन्नहल उज्जैन मध्य प्रदेश से बेरूलाल बाख्तरिया, धाकड़ भोला बाख्तरिया, प्रवीण रियांश और प्रतीक बाख्तरिया, और दुबिया ने आवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय और कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और इनका पूरा राय परिवार। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज और लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू, निशांत, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा हैं। चतुपुर कुंदर की मुरादाबाद से एम मुनाजिर खान, फिरासत फारूकी, मुअज्जम मुस्तफा, गौसिया भी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का कमेंट मिला है। आप हैं जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से रोहनी जायसवाल और रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का कमेंट है। गांव खावरी अब्बल से चौधरी राजवीर सिंह, अवयाना चौधरी और अध्ययन डागुर और इनका पूरा परिवार। राजूर मोताला महाराष्ट्र से राजगवई, राजवीर गवई और इनका पूरा परिवार। चांदुर बिस्वा बुल्ढाणा से आप हैं किशोर वानखेड़े, उषा विशाल वानखेड़े और सौगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार चंदन और हेयांश कुमार चंदन। आप हैं मजनू कटीला से, आपका मैसेज पढ़ चुके हैं। उस्तु भागलपुर से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन, करीना कुमारी, पूजा, आरती कुमारी, सुनीता देवी और इनका पूरा परिवार। हमारे ये साथी दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा का कमेंट है। कलानौर से आप हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम अलीम, अजीम बाकी, अब्दीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर जन्नत और इनका पूरा परिवार। आप हैं पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, नलेश्वर नगर, नरबेल महाराष्ट्र से, मलकापुर महाराष्ट्र से, नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मेहरकर और मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक, आर्यन वर्मा और इनका पूरा परिवार। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, पर ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से कमेंट किए हैं। फरासी हिसार से राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनका पूरा परिवार। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर, विविधा वंडलकर हैं और आप हैं विष्णु मिस्किन, रितिका आरववाणी और इनका पूरा मिस्किन परिवार। कहां से हैं आप, जगह का नाम लिखा है क्या आपने? नहीं, बिल्कुल लिखा है आपने, लिखा है दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से। शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम, अर्णव, राखी, तृप्ति और दुर्गेश्वरी जायसवाल नांदेड़ी हेताला महाराष्ट्र से। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश कुमार, राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान और आप हैं श्याम यादव, सोना यादव, गांधीनगर महेश्वर से। हमें जनकपुरी सहारनपुर से आपने भी कमेंट किया है। जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो और विलिस डिकेस्टो और आप हैं यवतमाल, शाहूनगर से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी मनवर और प्रियांशी और राजकोट से जैमिन जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन है। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबूल, पीबी कुलते हैं और दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं। बनबारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि, आर्यन और इनके सभी साथी। चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से कमेंट किए हैं। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू हैं और आप हैं गोपी खिरिया भांडेर दतिया से, राहुल पाल, ज्योति अंजना, हरिमोहन और बेबी लक्ष्य और अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से कमेंट करते हैं और रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, बीरेंद्र भ्याड़, सुरेंद्र शमशेर और मनोज भ्याड़ हमें जेवरा हिसार से कमेंट किए हैं। बाजार रोड मंगीसापुर से आप हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लोबना यश मंसूरी और नुबैर मंसूरी। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार और इनके तमाम साथी हैं। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशर जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान है। पीपरलूड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का कमेंट है और आप कमेंट करते हैं। कुंदर की रोड मझोली से निजाबुल हसन मलिक, मोहम्मद तानियाल मलिक, बिलाल मलिक, अलीशा और राबिया बसरी, ये कमेंट हमें मिला है। गांव जखूद से आप हैं शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक का। पजौनिया जालौन से आप सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया हैं और लोहिड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद रागिनी, रिया रेणु और रोनिका यादव कमेंट करते हैं। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और इनका पूरा परिवार। अकोला महाराष्ट्र से रामराव नितोने, शारदा सानिका और रिया का ये कमेंट हमें मिला है। मौला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद बक्कर फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदारानी, हिना कौसर भी कमेंट करते हैं
उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह महेश्वरी।

देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य, दिनेश और इनका पूरा परिवार। विनायक से आप हैं, आकूट से आप हैं, विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, किशन जीप डांबेराव, जन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन अंसारी और इनका पूरा परिवार, परिमहल कासकन से आबाद खान, नबील खान, आरफा इल्मा खान, एम असलम, सैफी शमशुल कमर हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू का कमेंट है। उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी, विनीत मिथिला, गोपाल तंबोली, तिलक तंबोली और इनके सभी साथी। और आप हैं सारसताल, सोनगरा, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से प्रेम साय, राजवाड़े, सोम राय, सोमार साय, मेर साय, भगवंत हेमंत कुमार, भगत हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा और इनके तमाम साथी। और खरसावा झारखंड से सुखरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर और गौरव नायक है। पोटिया कला दुर्ग से सुजाता साहू, संजय कुमार साहू, शशांक और सीमा साहू का कमेंट है। और अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा सदर बाजार कुरावली से, प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, प्रथमा सलूजा, प्रथम सलूजा जनकपुरी नई दिल्ली से हमें कमेंट करते हैं। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ खड़ से ललिता, आशा रानी, संजना परी, गणेश, कार्तिक लड्डू, देविका चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी और इनका पूरा परिवार। कस्बा उगती बदायूं से धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, देवेंद्र कुमार गुप्ता, डीके और इनके सभी साथी हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बनी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, वैदेही, हंसिका जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव और इनका पूरा परिवार। जगदलपुर छत्तीसगढ़ से पूनम नायडू जी हैं और इनके सभी साथी हैं। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल हर्ष यादव, मनीष, अंशिका, यूनुस खान और सोफिया खान का ये मैसेज मिला है। मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष शिवन्या और अन्नू गोस्वामी उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। और आप हैं चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, सबिया खानम और कौन है साथ में, सबिया खानम, फरीदा जब्बार, मोहम्मद अशरफ खान, रईसा खान और इनका पूरा परिवार। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, जोहानुल होदा और इनके सभी साथी। तो आप सबके नाम करते हैं फिल्म, क्या नाम है, संजोग। संजोग का ये गीत आप सबकी नजर करते हैं, सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली से आपकी पसंद। इस गीत के बोल लिखे अनजान ने, संगीत निर्देशन रविंद्र जैन का, आवाज लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, आपके साथ आकाशवाणी बरेली FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ और इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद। सच मानिए, जितने भी कमेंट मिलेंगे सब शामिल होंगे, लेकिन आपसे निवेदन है एक आईडी से एक बार में एक श्रोता एक ही कमेंट करें। बार बार कमेंट करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, है ना। लेकिन हम चैलेंज के साथ कहते हैं, जितने भी कमेंट आएंगे एक एक श्रोता का, प्रत्येक श्रोता का एक कमेंट जरूर शामिल किया जाएगा। बार बार करोगे तो आप हमें डिस्टर्ब करोगे, है ना। तो नाम बदल के भी अगर भेजोगे तो भी पता चल जाता है ना। तो आगे क्या करना है, ये जो धुन अभी आपने सुनी ना, गोविंदा आला रे आला, मोहम्मद रफी साहब और साथियों की आवाजों में ब्लफ मास्टर फिल्म का ये गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक डायरेक्शन, और इस गीत के लिए पसंद किया है आप सबने। बीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश कुमार, सनी कुमार भावसार और इनके तमाम साथी, जाकिर खान, नाजिम खान, शोएब खान, जिक्रानूर, सादी फातिमा, अरीफ खान है मोहल्ला ख्वाजा नगर कुंदरकी से, लसूड़िया नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से, गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी जी हैं, राजूखर बाजार अररिया बिहार से, शरीफ आरजू गुड्डू रंगीला और इनके तमाम साथी हैं, और आप हैं पूर्णा देगांव से सदाशिव थोरात, कविता श्रेया और बंटी थोरात, और ये लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी हैं, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी और इनके पूरा परिवार, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला खुशबू, ज्योति ठाकुर, चरौदा बाजार नवापारा, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल्ला नान, जीनत जावेद, नाहितरानी, आयत, सिकंदर अली, मोहम्मद आदिश और इनके सभी साथी, कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण दृष्टि और मानवी मौर्य हैं, और आप हैं सिद्धू बाला सूरतगढ़ राजस्थान से, इंदिरा ज्ञानी, अंकुश ज्ञानी और इनका पूरा परिवार, और 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से ये वंदना मराठा, रेखा, पूजा, रघुवंशी, नंदिनी, बबीता, ललिता, जगदीश और इनका पूरा परिवार, युवराज वानखेड़े और इनका पूरा परिवार है, और नवाबगंज कानपुर से सुजाता चौरसिया, पंकज पीहू और दिया चौरसिया हैं, बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से सरिता चौरसिया, सुमित वीर और अबीर का कमेंट है, साहबगंज चौराहा यूपी फरुखाबाद से सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला, बाबू शिवा और शिवानी चौरसिया हैं, दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते, धोतर जोड़ा आष्टी सिंह, सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, रामभाऊ तादली, आप आष्टी जालना मराठवाड़ा से कमेंट करते हैं, और आप हैं छबीराम सिंह राजपूत जिला फरुखाबाद से, और इनके सभी साथी हैं महेश संघई, रूपेश, प्रतिश और प्रगेश संघई, पूरा संघई परिवार, जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ परवणी से, गणेशपुरगंज डंडवराइटा से एम फारूक शेख, शिक्षा परवीन और इनका पूरा परिवार है, और सोहन जोशी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, अब्दुल गफ्फार डाबर, खुश नसीब अब्दुल हक डाबर और जियाउल हक डाबर का कमेंट है, आप हैं कटरा चांद का पुराना शहर बरेली मौर्य मंदिर से, रतन माला मौर्य, मुकेश प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा मौर्य, गौरव चंद्र प्रकाश मौर्य और मनु भाई, अलच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निमी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और इनके सभी साथी, बेडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर, आदर्श नगर मलूट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश निवान, मेंडी शर्मा और सौरभ और शाइना शर्मा का कमेंट है, रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, मोहम्मद इमरान खान, इरफान खान है राजस्थान हनुमानगढ़ टाउन से, और गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट, चैतन्य मेघ मस्किन और मेघा मस्किन, आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा, आपने पंचकुला सेक्टर 9 से और पंचकुला सेक्टर 11 से, अतुल शर्मा और इनके सभी साथी, अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम मौर्य, कैलाश, सुनील मौर्य, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य, पुराना शहर बरेली कटरा चांद का मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 से, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामोनिशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश संजयनगर एशबाग लखनऊ से कमेंट करते हैं, आप हैं बुलंदशहर से उमेश गौड़ और रानी गौड़, ये मैसेज हमें मिला है कमेंट का, खेल बाजार पानीपत से, आप हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का और इनका पूरा परिवार, बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग है, गंगानगर राजस्थान से नेकी राम बंसीवाल और इनका सभी परिवारीजन, मुजफ्फरपुर से राजू कुमार, भिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, मुन्नी चांदनी और नंदनी कुमारी का कमेंट है, गनगोला बदायूं से इशरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन बेगम, शहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान और इनके सभी साथी, और ये कमेंट हमें मिला है
बुत कछार लोरमी छत्तीसगढ़ से दुर्गेश मरकाम, निर्मला दीपक प्रीतम और धनराज मरकाम, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से कमेंट करते हैं। और हमारे ये साथी हैं अजन कुमार सिंह, गौरी वंदना सिंह, विनीति विनायक, मोहिनी मोहित, कोको रानी, ये कमेंट आपने कहाँ से भेजा है, श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से। और कमेंट करते हैं बड़ी गेवी चौराहा वाराणसी से, आप हैं अरुण कुमार मालवीय, सरिता मालवीय और इनके पूरा परिवार, मदरसा गेट भाऊपुर मड़िया हूँ, जौनपुर से आप हैं, इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरा तबस्सुम, रायपुर अनही बनारस से, मशरब अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन, खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, माशा अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, मूसा भाई जान और राजकुमार बुद्राना और इनके सभी साथी, सुदामा नगर खंडवा से आप हैं, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगदाब और आप कमेंट करते हैं कोल सिटी बरकाकाना से, अफजाल तार, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी सानी, मोहम्मद अफजल मलिक और इनके तमाम हमनवा, उदयपुर बन्नोजन बरेली उत्तर प्रदेश से, नाजिम अली, अहमद अली, मुनाजिर हुसैन, गुड्डू अली, मोहम्मद हुसैन, शबनम जहां, अदीब, फातिमा, आकिब हासिम और खालिद अली हैं, विनोद वारासा, विशाल वारासा, विकास रोशनी और शगुन वारासा खोखरा वाली श्री गंगानगर से हैं, बुलंदशहर से आपका कमेंट शामिल हो चुका है, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से आप हैं, गंगाधर यमेकर, प्रमोद और प्रदीप यमेकर, गंज टंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी और मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान अंसारी और इनके तमाम साथी, नर्मदा पार्क मंगल बेड़ा से माशा आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल हैं और अरविंद कुमार जी हैं, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी, बेनीपट्टी, मधुबनी बिहार से, सोलापुर महाराष्ट्र से गणेश लोंढे, आम्रपाली, आरव और इनका पूरा परिवार, सैयद मसरूर, शाइना हसन अक्सा, आदिया अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम गांव कुमार।

टेडा सहारनपुर से, संगम विहार गली नंबर 5 से रणधीर, धीरज गुप्ता, सत्यम, शिवम सुंदरम और लड्डू गोपाल हैं, और ऐशबाग लखनऊ से रानी मुकेश और रश्मि नीलम का ये कमेंट है, और राजनगर कांति निकेतन से रुद्रा भाई रुद्रा, और साथ में रिद्धि सिद्धि, कुशेश्वर, कांति गुप्ता और इनका पूरा परिवार। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल और मनीष शर्मा हैं, और चर डोगरी पिपरिया कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू और इनका पूरा परिवार। चकला बाजार सामना समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा, खुश दिल और इनका पूरा परिवार। बरबट बकाल बुल्ढाणा से नारायण हागे, कमल, दिव्या और जय हागे हैं। रिंगड़ी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा हैं, और हमारे ये साथी हैं रिहाना खान, हफीजुर रहमान खान, ईदगाह जुनूबी जिला बक्कर पंजाब से, और कुलस्वामिनी रेडियो श्रोता संघ श्री रामपुर भोकर से हरिभाऊ बिडवे, पूजा शुभांगी, श्रवण, अनिकेत, अनिता बिडवे और इनका पूरा परिवार। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से प्रकाश कुमार, सौरभ निषाद, बल्लू निषाद, तरुण, श्रीनिका, श्रीनिजा और इनका पूरा परिवार है। अडार नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा हैं, और आप गाड़ी खाना चाईवासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार है। हमारे ये साथी शाजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या, सविता भाकरे हैं, कमेंट करते हैं। चलिए तो अब अगला कमेंट पे अगला गाना प्ले होगा। फिलहाल ब्लफ मास्टर से ये ट्रैक आप सबकी नजर।

0: कौन आएंगे हो सकता है। इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हर बैंक के अलग अलग KYC पेपर्स, काश एक चाबी होती।
2: एक चाबी है CKYC ID।
1: CKYC मतलब?
2: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14-डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, RBI कहता है
2: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आकाशवाणी बरेली आपके संग है और आपकी पसंद के गाने आप सुन रहे हैं। 182 कमेंट के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इस समय हमारे पास कमेंट्स की संख्या है 248। 162 लाइक किए हैं आप सबने और 2 शेयर भी किए हैं। जी हाँ, ये जो ट्रैक अब आप सुनेंगे, फिल्म का नाम गोपाल कृष्णा, गीत संगीत और आवाज रविंद्र जैन की है। इस गीत को जिन दोस्तों ने पसंद किया है वो आप सब हैं। आप हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और इसी गीत में शामिल करते हैं। ग्राम महेशपुर खेम मुरादाबाद से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और इनके पूरा परिवार। करावा नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी और आप हैं लहुडडा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, भुवनेश्वरी देवी, रामानंद कश्यप और इनके सभी साथी, मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक, अली रहमान और इनका पूरा परिवार। ईदगाह जनूबी भक्कर पंजाब से हैं और प्रेमलागंज आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, शिवांश, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। हमारे ये जो साथी हैं वो सलाही सोकनाहा नेपाल से हैं और आप हैं अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी, राहुल कुमार, वंदना कुमारी, प्रियंका कुमारी और इनके सभी साथी, मार्शकेलू परवेज बेगम, इमरान अनाज, नवाजू शेख, दानिश, शेख अमन आफरीदी, राधानम देव, गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से कमेंट करते हैं। बहेड़ी से आप हैं इश्तियाक अहमद इदरीसी और इनके तमाम हमनवा और हरदेव, मीखा, बलविंदर, विरक, जैतेक, विरक, मीखा, विरक, गांधी चौक, रोपड़, पंजाब से कमेंट करते हैं। मालियान सरदना मेरठ से, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवयम जैन का भी ये कमेंट मिला है। हमें कमेंट करते हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष और नंदिनी जंगेल, आर्यनगर कोका भिलाई से, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित शकुन, आरुषि ओशिका और अंजलि जंगेल का कमेंट है। दरभंगा से आप हैं क्रांति भगत, कामेश्वर प्रसाद भगत, भूलिया देवी और राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह ज्योति और सुशांत सिंह राजपूत चुलबुल रानी का भी कमेंट मिल चुका है। सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम और सक्षम चौबे हमें कमेंट करते हैं। मुकेश राजपूत ग्राम कुमारपुर जिला बरेली से आपने कमेंट किया है और इनके सभी साथी हैं साथ में कौन कौन है, दीपक राजपूत, आकाश, अजय, सोनू, बीरपाल राजपूत और इनके सभी साथी। ऊंचे गांव नांदेड़ से देवानंद शिंदे पाटिल और इनके तमाम हम नवा कमेंट करते हैं। ग्राम उड़ला जागीर ईदगाह बरेली से सरताज खान, दानिश खान, वारिस खान, सोनिया अलीना है, सुशीला देवी मंद्रकर, सदानंद कुमार, गौरव मंद्रकर, डाबकी रोड अकोला से हमें कमेंट किए हैं और दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सी आर कुलकर्णी और आप हैं राजोखर बाजार अररिया बिहार से मोहम्मद नसीम, मोहसिन आरजू और इनका पूरा परिवार, मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं, बीमेत्रा छत्तीसगढ़ से, भाई भरत, लाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा और इनका पूरा परिवार, आप हैं जयराम खोरवाल, सचिन, अमन और दीपांशु खोरवाल, होली चौक उत्तम नगर नई दिल्ली से, मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वान्या, इंदिरा कॉटेज, तलीताल, नैनीताल से आपने कमेंट किया है, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और इनका पूरा परिवार, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत और मयंक भाटिया का कमेंट है, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल और चंपा साहू का कमेंट है, धूलिया महाराष्ट्र गोंदर रोड से मनोहर मगर, यामिनी, उदयन और अर्पिता कमेंट करते हैं। कमेंट आपका भी मिला है। आप हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से कौन कौन साथी हैं, माधव नामदेव, सीमा नामदेव और इनका पूरा

परिवार आप हैं पीरजादा मीराजुद्दीन, नजमुद्दीन, कैसरुद्दीन और इनके सभी साथी सालार पहलगांव कश्मीर से, नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार, नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद, इकबाल अहमद अंसारी, वसीम और पप्पू भाई अंसारी, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गनुला रजक, मुरली क्षत्रिय और ये कमेंट मिला है शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अनु खान, अदनान और फैजान खान का गंज डुंडवरा से, लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से हैं। आप हैं शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के और उत्तम जमदाड़े हिंगोली महाराष्ट्र से। ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और गरिमा बगड़िया बांडीवाली फाजिल का पंजाब से कमेंट करते हैं। जगदीश धाकड़, नाइमा रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ हिंगली आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से हैं। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम कुमार, डॉक्टर वंदना, बिटू कुमार और उनके तमाम साथी। सेवड़ी छतरपुर से बारीलाल प्रजापति, धनी राम, नरेश कल्लू, रविंद्र और बिंद्रावन प्रजापति। किदवई नगर सिरपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सभी अंजुमन खान और महर दरवाजा ईटा से आप नबी हसन अब्बासी, शहनाज नवेद, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी और इनके तमाम साथी। अहमदगढ़ मंडी पंजाब से आप हैं मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, अल्फिया, जावेद अख्तर, जस्मीन, शकीला, सना, समा, हिना, रजिया, सुल्ताना, सुराज अंसारी और इनके परिवारीजन। हमारे ये जो साथी हैं मानसी, गौरव और अनिल, कविता अरोरा नई दिल्ली से, साउथ डिस्ट्रिक्ट उत्तम नगर एरिया से हैं। किशोर कुमार सांवले, रेखा, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, चारू और प्रणव सांवले दरबार कॉलोनी सनावत से हैं। मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर, नसरीन और समा अंसारी करेली बरेली से हैं। अमरजीत शिवम खंडिया गेट कॉलोनी से हैं। सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख रेहान से, करूला मुरादाबाद से यऊब खान, इरम गुड़िया शोएब खान ने और फुलाई नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद करवा, आकाश करवा, आकांक्षा करवा और इनका सभी परिवारीजन। प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू बोड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से। और अनारकली बाजार जगराऊ से आप हैं सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव और इनके सभी साथी, गौतम ऋषि मौर्य, मनोहर लाल मिही, प्रीति रानी और सुनीता मौर्य कर्मचारी नगर रोड बरेली से हमें कमेंट करते हैं। और आप हैं पुरानी भिलाई 3/14 छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, जिशान अहमद, शहनवाज अहमद सिद्दीकी और इनका पूरा सिद्दीकी परिवार। दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाह, सादिया हैं। और आप हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी साथी, कृष्णपाल सिंह चौहान, थारा देवी, नवदीत सिंह चौहान, वैभव पाल, ध्रुवी और प्रद्युम्न चौहान, चौकड़ा धाम कॉलोनी सनावत खरगोन से हमें कमेंट किए हैं। और कमेंट करते हैं सनावत से, ये तो कमेंट शामिल हो चुका है ना। चलिए, रमेश कुमार खत्री और माशो कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा, चनेश्वर गोट कराची पाकिस्तान से हैं। और आप हैं सुधा वर्मा, परी, भूप सिंह, राशि वर्मा, सचिन, मनोज कुमार, अरुण कुमार, हितेश कुमार और तेजवती लाला राम जी कहां से हैं, सिरोधी अंगदपुर मीरगंज से। लचनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू और इनका पूरा परिवार है। मोहल्ला बारादरी महमूद खान, रामपुर से रफत भाई, सईद मंसूरी और असद भाई, फिरोजा मुस्कान, नगमा नाज मंसूरी और इनके साथ राशिद भाई हैं। और भी कोई साथी हैं ये जो मैसेज है, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल मेहरा और इनका कुणाल मेहरा भी साथ में है। मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी और हिमांश सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हमें कमेंट करते हैं। और रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान, विनेश कुमार श्रीवास्तव जी निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली कैंट से है। ये तो हम यहां से आवाज दे देंगे तब भी आपका नाम आप तक पहुंच जाएगा आवाज में, है ना। पर और कोई और दोस्त है, बिल्कुल, मुंडा ठूला बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार और खलीफों की बाबड़ी से खुदाबख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल और इनके तमाम साथी हैं। अल्ताफ हुसैन अंसारी, लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, आशिक हुसैन, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से हैं। राम बाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप मिश्रा, माधुरी, प्रदीप, सविता, सत्यम, शीतल मिश्रा, राधा मिश्रा, सलोनी मिश्रा और शिवम मिश्रा, आप सबने कमेंट किया है ग्राम पोस्ट गोठा खंडुआ से। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हैं। और आप है वीरपुर बिरसल अलीगंज ईटा से, विपिन कुमार साखे, सपना कुलदीप, रत्न खुशी और पूरा शाक्य परिवार। कोई और साथी हैं क्या? बिल्कुल हैं, नक्षत्रपाल यादव, आयुष, मयंक, सुभी, अनुसुभी यादव और इनका पूरा परिवार कुर्रिया सवाईजपुर हरदोई उत्तर प्रदेश से। और क्या करना है, चलिए आपको भी साथ लेते हैं। गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपल परमार,
हमारे

ये जो साथी हैं वो हैं शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू रंजन, रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना हनी, यस सौम्या और उनके मम्मी पापा, रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम और सुंदरम गुप्ता. आप ओखला बिहार, ओखला संगम बिहार दिल्ली से हैं. छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी, नोमेश नेहा और वानिया सिंह रौल हैं. और कोई साथी हैं क्या? चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से. आप हैं कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, नई दिल्ली से, कृष्णा पार्क दिल्ली से. आप सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना गुरवंश सिंह जोड़ा जी भी हैं. तो आप सबके नाम करते हैं फिल्म गोपाल कृष्णा से ये ट्रैक. लीजिए, सुनिए और सुनते रहिए. गारंटी है 500 कमेंट भी भेजोगे सब शामिल होंगे, मगर एक श्रोता एक ही कमेंट करें.

दोस्तों इस समय आप आकाशवाणी बरेली को ट्यून किए हुए हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म और इसके अलावा हमारी रेगुलर फ्रिक्वेंसी पर जो दोस्त सुन रहे हैं अपने कार स्टूडियो अपने फोन अपने रेडियो सेट पर वो 100.4 FM है बोले तो 100.4 MHz। अगला ट्रैक आपको सुनवाते हैं फिल्म छोटी बहू से। इंदिबर की शब्द रचना को संगीत की धुनों में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने और किशोर कुमार साहब ने इस गीत को आवाज दी है। इस गीत को जिन्होंने पसंद किया है वो भी तो हैं। हम गारंटी के साथ कहते हैं चैलेंज के साथ आप एक घंटे में 500 कमेंट करें। प्रत्येक श्रोता का एक ही कमेंट होना चाहिए और 500 कमेंट अगर आपके शामिल ना हो तो कहिएगा। खैर छोटी बहू फिल्म का ये गाना खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा और चंदन अरोड़ा साथ में अंकुश अरोड़ा ने सुनना चाहा है। अब इस गाने में आप सबको साथ लेते हैं। आप हैं सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़ सुयश गौड़ आशीष गौड़ तन्मय और अपूर्वा। हमें विराटनगर नेपाल से आपने कमेंट किया है अरुण चंद्र शर्मा रेणुका शर्मा और इनके सभी साथी हैं। ममना हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश राम शरण विश्वकर्मा साहिल मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। कस्बा गुन्नौर से आप हैं फारूक अली खान फैजी फरहाज फरहीन फरहान फारिया और ताहिरा। मुंगी पैठण महाराष्ट्र से बाबा साहिब कंगड़कर साखरबाई परमेश्वर रोहिणी श्रावणी ईश्वरी और इनका पूरा कंगड़कर परिवार है। सफीदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना चंचल लवली रजत खन्ना लवकुश खन्ना और इनका पूरा खन्ना परिवार है। आप हैं क्योलड़िया नवागवंश बरेली से राजेंद्र गंगवार प्रेमपाल धर्मवीर सचिन अनुज गंगवार अनमोल कमलेश तुलाराम गंगवार अंकुश मौर्य राजू चंद्रपाल उल्फर शर्मा बबलू और वेदपाल गंगवार संजीव गंगवार। हमें आपने भी कमेंट किया है। आप हैं अलकनाथ मंदिर के सामने से बेचीलाल गंगवार गुडी देवी प्रशांत देव ज्ञानेंद्र देव ईला देवी गंगवार बर्फा देवी सुनील यादव महावीर कश्यप संजय अग्रवाल अश्विनी कुमार मौर्य बाबू भाई रमेश चंद्र सैनी गौतम राम श्री राम राठौर राज कश्यप और इनके तमाम साथी कमेंट करते हैं। सियारा लियोन बेस्ट अफ्रीका से शेख जियाउर रहमान और इनके तमाम साथी शिवा गोप प्रेम गोप कपिल शिवान संगीता लेपी और दीपाली गोप पश्चिम सिंहभूमि चाईबासा झारखंड से और ये कौन साथी हैं तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान हाशिम खान अरहम बाबू किश्वानूर दुआनूर और इनका पूरा परिवार। आप हैं मौलागढ़ नई बस्ती से तरन्नुम अंसारी तराना अंसारी अजरुद्दीन मोहम्मद हसन अंसारी और इनके सभी साथी। तो चलिए आप सबके नाम करते हैं एक बेहतरीन ट्रैक फिल्म छोटी बहू से। बस 266 कमेंट ही।

दोस्तों, इस समय आकाशवाणी बरेली से आप सुन रहे हैं आपकी पसंद। हमारे एक श्रोता कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर आज मेरा मैसेज भूल गए। बिल्कुल नहीं भूलते, हम किसी को नहीं भूलते, शायद आप सुनना भूल गए मेरे दोस्त। जब आपने कमेंट किया था तभी हमने पढ़ दिया था, हम तो किसी को ना भूलते, है ना। तो चलो अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं। ये बाबू दीन जी हैं, मेरठ कैंट से। आप फिल्म आजाद का ये गीत सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और सी रामचंद्र का म्यूजिक डायरेक्शन। इसी गीत में शामिल करते हैं पहांदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत, लखनलाल देवांगन, सावित्रीबाई देवांगन और इनका पूरा देवांगन परिवार। 268 यानी 268 ही कमेंट आए हैं, 168 लाइक्स मिले हैं हमें। चलिए, आप सबका बहुत शुक्रिया। फिलहाल आजाद फिल्म से ये ट्रैक आपकी नजर करते हैं।

विक्रम को आपने नवाजा 270 कमेंट के साथ, 270 कमेंट, 2 शेयर, 168 लाइक के साथ। हमें भी चलना पड़ेगा। आज का जो आखिरी ट्रैक आपके लिए प्ले करेंगे वो डिस्को डांसर फिल्म से है, नंदू भेंडे और साथियों की आवाजें, अनजान के बोल, बपी लहरी का म्यूजिक डायरेक्शन और आप सबके नाम करते हैं। वैसे आपको बता दें, आपसे कुछ देर बाद सब रंग जब आप सुनेंगे ना तो आज भी कृष्ण के रंगों में रंग जाएंगे, मुझे उम्मीद है आप सुनेंगे। चलिए तो शामिल करते हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी और इनके सभी साथी नई बस्ती गंज डंडवारा से। ये गांव विधिपुर डागर कचौरा जनपद हाथरस से हमें कमेंट किया है। राजुद्दीन खान, राकेश कुमार, भीकम सिंह, रिजवान खान, राबिया खान, मुमताज, फिरोज खान, अली हसन और इनके तमाम साथियों ने तो यहां तक आपके साथ सफर तय किया 270 कमेंट का। वैसे हम तो ये कहते हैं आप 500 कमेंट भेजो, सिंगल श्रोता का सिंगल कमेंट होना चाहिए, गारंटी के साथ शामिल किया जाएगा। अपनी ओर से हम किसी को भी ना छोड़ते। 272 कमेंट हो गए, ओहो 2 कमेंट और बढ़ गए। चलिए देख लेते हैं कहीं ऐसा ना हो कि आप हमसे नाराज हो जाएं कि भाई हमने भी भेजा लेकिन लेट ही सही, हम सबको शामिल करेंगे, गारंटी है। तो कौन आए हैं अभी अभी? ओहो यू, ये बिल्कुल हम किसी का मैसेज जो है इग्नोर नहीं करते हैं। आपने सुना नहीं होगा हमने बोला था, फिलहाल डिस्को डांसर का ये ट्रैक प्ले कर रहे हैं, लीजिए सुनिए। और आज के वक्त में जरूरत है, जी हाँ, कृष्णा धरती पे आ जा तू, कृष्णा प्यार सिखा जा तू, जिंदगी कुछ नहीं दर्द है प्यास है, हर खुशी है वहां तू जहां पास है।

दोस्तों इसी के साथ हम भी चलेंगे जी हाँ आपकी पसंद के कार्यक्रम का आज का ये सफर यहीं तक। कैसा रहा ये सफर? आप अपनी बेबाक राय, अपनी शिकायतें, अपने शिकवे हमें जरूर भेजिएगा। आपका पत्र मिला कार्यक्रम के लिए। आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9457395859 पर। इसके अलावा आपका पत्र मिला .bareilly@gmail.com पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। अब आप सबके सुख की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। आपकी पसंद से अपने रेडियो हम सफर को दीजिए अनुमति।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 MHz, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं। एक रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओ, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 5 सितंबर 2026 को साय 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु न रोए, शंकाएं व समाधान। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 4 सितंबर सन 2026 को साय 4 बजे से, यानी आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप

गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिएगा। विषय है, क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु न रोए। शंकाएं और समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखो, आज शुक्रवार 4 सितंबर 2026 को 4:30 बजे से, और हमारा टेलीफोन नंबर 0581251700। इसी के साथ रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 100.4 MHz तथा वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर आप हमें सुन पा रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सब रंग।

आज के सब रंग में आप सबका बहुत स्वागत है। आज का ये सब रंग कार्यक्रम डूबा हुआ है कृष्ण के रंग, श्याम के रंग में। आरंभ में लीजिए सुनिए बाबुल सुप्रियो, देवाशीष पारो, प्रिया और साथियों की आवाजों में

सब रंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से FM 100.4 MHz नो जोन AIRF और वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर। वंदना भारद्वाज और सखियों के स्वर में ये रचना आप सबकी नजर।

श्रोताओ, वंदना भारद्वाज और सखियों के स्वर में अभी आपने ये रचना सुनी। आइए अब नवीन त्रिपाठी और कविता राम के मिली जुली स्वरों में सुनते हैं ये रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे सब रंग, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। न्यूज ऑन एआईआर ऐप, वेब्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म और एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 11:30 हुआ चाहते हैं। आइए सुनते हैं फिर रेम्बो लखनऊ के कार्यक्रम।
1: मच हमें कॉल करने के लिए, आपका प्यार ऐसे ही बना के रखिए। नमस्ते, बाय, टेक केयर।

सो ट्विस्ट किया कि नहीं किया? हाँ, अगर नहीं किया है तो ट्विस्ट कर लीजिए, उठिए और थोड़ा सा थिरक लीजिए। 11:35 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं क्या संदेश आपके गीत हमारे, और इस समय इस प्रोग्राम में आपके साथ आपकी आरजे होस्ट संदोस रोली शुक्ला लगातार बनी हुई है। और अनिल कुमार का मैसेज आया है हमारे पास, ये संदेश क्या भेजते हैं देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि मैम आज मेरा संदेश ये है कि जिन लोगों ने, जिन नेपाल में जिन लोगों को भी परेशानी हुई है उनको, उनके साथ मदद की जाए। हमारे पास रोशनी रावत का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग रोली मैम, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? लिखती है सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, और लिखती है त्यौहार खुशियों और उत्साह का अवसर है लेकिन हमें सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए, भीड़ भाड़ में सावधानी रखें, दीपक और बिजली की सजावट का सुरक्षित उपयोग करें, वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारी जिम्मेदारी। क्या बात है, आपने दो लाइन में सारी चीजें कह दी भाई। हमारे आसपास, हमारे घर परिवार और हमारे जो जो फेस्टिवल में हम जो कुछ भी करते हैं उन सब में जितनी एहतियात बरतनी चाहिए, फिलहाल आपने उन सबको मेंशन कर दिया है। थैंक यू सो मच, और आपको भी कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच हमें मैसेज करने के लिए। हमारे पास मैसेज आया है रूपेश संघाई जी का, और ये लिखते हैं कि आप सब कैसे हैं, और इन्होंने एक बड़ा ही प्यारा सा सॉन्ग कृष्ण भगवान पे लिख करके भेजा है। थैंक यू सो मच। कल्पना जी का मैसेज आया हमारे पास, और ये कोपर गांव से मैसेज कर रही हैं और इन्होंने भी गाना लिख कर भेजा है, भाई क्या बात है। हमारे पास अजय सिंह जी का मैसेज आया, लिखती हैं, लिखते हैं गुड मॉर्निंग प्रिया आरजे रोली मैम, प्रोग्राम अच्छा लग रहा था।

थैंक यू सो मच. तो ऐसे ही आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं आपके क्या प्लान्स हैं. और वैसे थोड़ा समय भी शेष बचा हुआ है, मतलब थोड़ा नहीं पूरा ही समय शेष बचा हुआ है, आधे घंटे से थोड़ा ऊपर, थोड़ा कम. और हमारे पास अगला जो मैसेज आया है वो मैं पढ़ूंगी, लेकिन इससे पहले ट्रैक सुनते, इसे इंजॉय करते हैं और फिर वापस आते हैं आपके अपने चैनल 100.7 FM रेनबो पर. सुरों का लखनवी एहसास.

शो का पानी और बारिश का मौसम चल भी रहा है, और बारिश के मौसम से ही रिलेटेड कुछ हमारे पास कुछ बात भी है। चलिए बात करते हैं। हेलो। ओहो, इनका तो कॉल ही कट गया। वैसे ये कहना चाह रहे थे कि बारिश में सभी लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं रहती है, और ऐसे में बहुत सारे फ्लूज फैल रहे होते हैं। तो जहाँ भी भीड़ में जाए मास्क यूज़ करें, और एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना कर रखें, क्योंकि वैसे भी ऐसे मौसम में ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे इम्यूनिटी हमारी बूस्ट हो, राइट? तो चलिए, फिलहाल हमारे साथ मिस्टर तिवारी थे जो कि हमारे साथ कॉल पे थे, और अब उनका कॉल कट ही गया है। उन्होंने बोला था अगर मेरा कॉल कट जाए, क्योंकि मैं नेटवर्क में नहीं हूँ, तो प्लीज़ एक अच्छा सा ट्रैक हमारे लिए प्ले कर दीजिएगा। तो आपके लिए एक प्यारा सा ट्रैक, आप सबके लिए, एंजॉय करिए और बने रहिए हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, सुरों का लखनवी एहसास।

हमारे पास मेल आया है बाबू अंसारी का, और ये क्या लिखते हैं, लिखते हैं गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप, प्रोग्राम अच्छा कर रही हैं, थैंक यू। और ये लिखती हैं कि गाने तो आप हमेशा चुन चुन के लाती हैं, क्या बात कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और ये कहते हैं कि मैम आज ये संदेश है कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो अपना और अपने परिवार का ध्यान

रखें। बिल्कुल ठीक बात है। और हमारे पास अल्ताफ खान का मैसेज आया है और ये लिखते हैं कि मैंने पहली बार आज ईमेल किया है, और मैम कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत कठिन लगने लगती हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं हम, मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, और शुक्र है कि मैसेज कर दिया और आप तक पहुंच गया। बिल्कुल ऐसे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप मैसेज करना बहुत ईजी है, आप सीख सकते हैं, और अगर नेटवर्क की कोई इश्यूज़ है तो वो भी सॉल्व हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, आप जो चाहें दुनिया में वो सब कुछ हो सकता है, बस आपकी चाहत में दम होना चाहिए, है ना। और फिलहाल एक नेक्स्ट ट्रैक है, उसे एंजॉय करते हैं और उसके बाद शायद हम अपने एक और कॉलर से बात कर पाए।

हमारे पास मनन अंसारी का मैसेज आया है और ये लिखते हैं, हेलो मैम, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? और ये लिखते हैं, हमेशा मैं 1 घंटे प्रोग्राम में कोई सॉन्ग्स मतलब 1 घंटे के प्रोग्राम में और कहीं चैनल चेंज करने का मन नहीं करता है, मज़ा आ गया सुपर हिट सॉन्ग्स सुनकर, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप सबको प्रोग्राम अच्छा लगता रहे तो इससे अच्छी क्या बात है, हमारे लिए तो यही सबसे खूबसूरत बात है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और सुनने में मज़ा आ रहा है। फिलहाल आज का ये जो प्रोग्राम है वो आप सबने इंजॉय किया, लेकिन साथ साथ उसकी तैयारियां भी तो की। आज के इस बहुत खूबसूरत से, बहुत प्यारे से पर्व, आज हमारे कृष्ण भगवान, कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हम आज सुबह से कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं और कृष्ण भगवान की लगातार सारी सीखों को अपनी ज़िंदगी में हम प्रैक्टिकली अगर उतारते हैं तो हमारी ज़िंदगी वैसे भी औसम हो जाती है। और कितने ही सारे लोगों ने आपको ये बताया कि कृष्ण भगवान की कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनसे हम बहुत अच्छी तरह से अपने लाइफ के ट्रैक को सेट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि हे कान्हा, हमारे जीवन से मुश्किलें पूरी तरह खत्म ना भी करो, लेकिन उन्हें सामना करने की हिम्मत जरूर देना। हमारे रास्ते हमेशा आसान ना भी हो, लेकिन हर मोड़ पर सही दिशा दिखाना ये जरूर करना। और सबसे बढ़कर हमारे दिलों में प्रेम बनाए रखना, एक दूसरे से हम बिल्कुल अच्छे से प्रेम करें, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करें और एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहें, तो ये एक अलग ही खूबसूरत बात होगी ज़िंदगी में अगर ऐसा हो जाए। क्या कहते हैं आप सब? तो भाई इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और कान्हा की तरह जीवन को थोड़ी शरारत, बहुत सारा प्रेम और ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ जीते रहिए, क्योंकि आज है कृष्ण जन्माष्टमी और आज तो ये सारी सीखों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि आज का जो दिन है वो सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि हमें याद दिलाता है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमें हमेशा अपने आप को संभाल कर अपने आप को आगे और पूरी तरह से अपने आप को साध लेना चाहिए। राइट, फिलहाल एक ट्रैक सुनते हैं और उस ट्रैक के बाद वापस आते हैं।

0: कभी तो खैरियत पूछो राधा।
1: जी बिल्कुल, पूछने के लिए हम आ गए, हाजिर है, हमें देखी नहीं रही है। प्यारी लग रही तो देखेंगी नहीं क्या?
0: नहीं नहीं क्यों नहीं, क्यों नहीं यार, देखिए देख रहे। और राधा और रोली जब मिल जाए
1: जी
0: तो जन्माष्टमी में कमाल हो जाएगा।
1: बिल्कुल, और देखिए जन्माष्टमी है और राधा रोली का तो होना जरूरी है ही।
0: हाँ, और भाई राधा रहने वाली हैं आपके साथ और जन्माष्टमी पर विशेष तैयार राधा आपके साथ रहने वाली हैं, तो राधा की ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें सुनिएगा। अगले कुछ घंटे राधा के साथ बिताएंगे आप।
1: जी हाँ, हाथी घोड़ा पाल की
0: जय कन्हैया लाल की। सो रोली से स्टार्ट अप।

0: घोड़ा पाल की
1: जय कन्हैया लाल की। सो रोली सेज टाटा बाय, अपना ध्यान रखिएगा, यूं ही मुस्कुराते रहिएगा और आज का फेस्टिवल एंजॉय करेगा। मैं मिलती हूँ फिर किसी दिन किसी और शो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। हापुड़ पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राम मंदिर एक धार्मिक और आस्था का स्थान है। वहां धर्म और परंपराओं से जुड़े लोगों की भूमिका होनी चाहिए। धर्माचार्यों और पूज्य शंकराचार्य जी द्वारा नामित लोगों को वहां जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, जो धर्म के विस्तार, संरक्षण और उसकी परंपराओं के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा से राम मंदिर CEO बनाए जाने पर सवाल उठाए। अजय राय ने पत्रकारों से कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नव निर्वाचित CEO अयोध्या पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है। मीडिया से बात करते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव महंत गोविंद देवगिरी ने कहा कि शुक्रवार को नव निर्वाचित CEO के साथ बैठक है, उसके बाद तय करेंगे कि उन्हें अपना पदभार कब ग्रहण करना है। महंत गोविंद देवगिरी ने कहा कि राम मंदिर में आरती पूजन सहित अन्य व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जा रहा है। हम एक नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व समाप्त होने के बाद शनिवार की सुबह से आरती की व्यवस्था में परिवर्तन होगा। भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर सेना भर्ती को लेकर बरेली जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जाट रेजिमेंट केंद्र बरेली परिसर में 14 सितंबर से 30 सितंबर तक भर्ती आयोजित होगी। सेना भर्ती रैली के दौरान 12 जनपदों बरेली समेत बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, संभल, पीलीभीत, हरदोई, फरुखाबाद और बदायूं के हजारों अभ्यर्थियों के शामिल होने

की संभावना है। सेना भर्ती के निदेशक ने अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि सभी अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर अपने साथ रखें एवं सभी जरूरी कागजात भी साथ में लेकर आएं। राजस्व वादों के निस्तारण में सरलता और पारदर्शिता को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की ओर से कल 3 पोर्टल लॉन्च किए गए। राजस्व परिषद बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों को तय समय सीमा से निस्तारित करने के लिए ये पहल की गई है। इस व्यवस्था से कागजी प्रक्रिया कम होगी और वाद की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करना आसान होगा। कानपुर देहात के मूसा नगर थाना क्षेत्र के जरसीन गांव में मूसलाधार बारिश के चलते एक कच्चा घर ढह गया। हादसे में पिता और 2 मासूम बच्चे मलबे में दब गए, जबकि मां बाल बाल बच गईं। थानाध्यक्ष अमिता वर्मा ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

जी, अब 12:06 हो चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो चुका है स्वयं सिद्धा, जहां आज आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राधा।

माखन की मटकी और बांसुरी की मीठी तान, यशोदा की ललना में बसती है हम सब की जान। आया है पावन जन्माष्टमी का ये उल्लास भरा त्योहार, चलिए मिलकर हम सब कहें अपने कान्हा को हैप्पी बर्थडे 100-100 बार।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन।

0: लीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टॉल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, सुरों का लखनवी एहसास।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM Rainbow, सुरों का लखनवी एहसास।

0: जी हाँ, आज फिजाओं में एक अलग सी महक है क्योंकि आज हमारे नटखट नंदलाल का जन्मोत्सव है। तो भाई, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये कार्यक्रम है स्वयं सिद्धा, जहाँ हमारी जो कामकाजी महिलाएं हैं, भाई घर भी देख रही हैं, बाहर ऑफिस भी देख रही हैं। बहुत सारी महिलाएं जो है हमारी घर पे, आज उनकी छुट्टी होगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हैं जो दफ्तर में आज भी काम कर रही हैं। तो दफ्तर की जिम्मेदारियां और घर में कान्हा के जन्म की तैयारियां, एक वर्किंग वुमन के लिए आज का दिन थोड़ा भाग दौड़ भरा भरा जरूर होगा, क्योंकि भाई काम दोनों तरफ देखना है, घर भी देखना है, त्योहार भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, और थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना है। लेकिन उल्लास से भरा ये जो आज का दिन है, ये अपने आप में इतना उत्साहित वाला दिन है कि हम आज पूरी, मेरी आवाज से आपको लग रहा हो, इतने ज्यादा उत्साहित है। मुझे लगता है कि आप सब भी, ये दिन इतना खास, इतना पावन, और सोचिए कान्हा का हैप्पी बर्थडे है और राधा आज शो कर रही हैं, तो भाई आज का दिन एकदम स्पेशल धमाल होने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो आ रहा है आपके रेडियो ट्रैक पे।
1: रानी, देख राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

जी हाँ, 12:21 हो चुके हैं और कार्यक्रम है स्वयं सिद्धा, जिसमें आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त राधा। जी हाँ, गाने के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, जन्माष्टमी का रंग पूरे भारत में अलग अलग तरह से निखरता है। एक तरफ मथुरा है, एक तरफ वृंदावन है, और जहाँ पे रास लीलाओं और मंदिरों की भव्यता मन मोह लेती है। अब मथुरा और वृंदावन का जन्माष्टमी की कहना ही क्या, वहाँ मतलब इतनी भव्यता होती है कि मन होता है जाने का। लेकिन अगर आपको जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाना चाहिए। वहीं गुजरात के द्वारिका में इसे एक शाही पर्व की तरह मनाया जाता है। दक्षिण भारत में जाएं तो गोकुलाष्टमी पर घरों के आंगन में चावल के आटे से कान्हा के छोटे छोटे पैरों के निशान बनाए जाते हैं। अब भारत के किसी भी कोने में हो, दफ्तर में बैठे बैठे ही सही, आज इस उत्सव की ऊर्जा अपने आप अपने भीतर आप महसूस कर रही होंगी, है ना? क्योंकि ये त्यौहार इतना खूबसूरत है। और जो हमारी कामकाजी महिलाएं हैं, ये इसकी तैयारी तो आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी होंगी। बाजारों में ढेर सारे आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा मैं सजाने की

लेकर आऊं ताकि मैं मंदिर को सजा सकूं, घर को सजा सकूं। और सबके घरों में, ज्यादातर घरों में छोटे से हमारे लड्डू गोपाल जी होते, उनके लिए सजाने के लिए, उनके लिए पोशाक लाना, उनके लिए जेवर लाना, मतलब लगता है कि ये त्योहार इतना क्या ही कर दूं, इतनी खुशी होती है ना? होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। और अगला जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये गाना भी बड़ा खास है, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं ना तो हमारे अंदर एक अलग सी उत्साह होती है ना? और कुछ ऐसा ही ये उत्साह, एनर्जी इस गाने के भीतर भी आपको मिलेगी। तो चलिए भी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी, 12:28 हो चुके हैं और कार्यक्रम है स्वयं सिद्धा, जहां आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त राधा। जहां हम आज बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से कामकाजी महिलाएं अपना भी ख्याल रखें और त्योहार भी खुशी खुशी मनाएं। स्वयं सिद्धा सुन रही वो सभी महिलाएं जो आज दफ्तर में हैं, जिन्होंने व्रत भी रखा है। आपको अपनी सेहत का खास खास ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर जी हाँ, काम की धुन में हम पानी पीना भूल जाते हैं और शाम तक सिर दर्द शुरू हो जाता है। अपनी अपने आसपास पानी की बॉटल जरूर रखें, और निर्जला व्रत अगर आप रखती हैं, रख सकती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर ये नहीं कहते कि आप कर्म ही पूजा है, आप जो कर्म कर रही हैं उसको करते रहिए और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। फलाहार लीजिए, चाय या कॉफी की जगह आप नारियल पानी लीजिए, ताजे फलों का जूस लीजिए और अपने बैग में थोड़े से जो भुने मखाने हैं, बादाम भी रखे रहिए, ताकि समय समय पर आप खाती रहिए। कान्हा भी यही चाहते हैं ना कि आप स्वस्थ रहिए और उनका हैप्पी बर्थडे मनाइए।

जी हाँ, आप सुन रहे 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास। 12:35 हो चुके हैं और कार्यक्रम है स्वयं सिद्धा, जहां आपके साथ हूँ मैं राधा और हम मना रहे हैं श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, उनका जन्मोत्सव। और मैं बात कर रही हूँ कि हमारी जो कामकाजी महिलाएं हैं, जब वो दफ्तर से थक हार कर जब घर आइएगा ना, तो अकेली ही काम में मत जुट जाइएगा। टीम वर्क, जी हाँ, सिर्फ ऑफिस में नहीं घर में भी जरूरी है। अपने घर के नंद बाबा यानी अपने भाई, आप आज के दिन यशोदा माता हैं, तो आपके पति जी से कहिएगा कि वो बाजार से फल फूल बाकी चीजें ले आए, बच्चों को लड्डू गोपाल जी का झूला सजाने का काम दे दीजिएगा। जब पूरा परिवार मिलकर काम करता है ना, तो त्योहार मनाने का मजा दोगुना हो जाता है ना। और आपका आपकी जो थकान है वो भी दूर हो जाएगी, और जो थकान है वो उत्साह में एनर्जी में बदल जाएगी। लगेगा कि अरे क्या मैं थकी थी क्या। और धीरे धीरे जो भोग लगाने हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, वो सारी चीजें भी आप तैयार करेंगी, और देखिए ना, आपकी थकान भी कम हो जाएगी और काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। तो हमें आपका कितना ख्याल है, और कार्यक्रम है स्वयं सिद्धा। अभी फिलहाल ये प्यारा सा खूबसूरत सा सॉन्ग आ रहा है आपका रेडियो सेट पे, एंजॉय करिए।

0: संगीत संग नीक नीक बात कही
1: और श्रोता पंचन के भरपूर प्यार
2: पहिल दफा जब गयन ससुरारी
0: मिली जाए जो ई सब एक संग
3: तो बन जावे हर दिन त्योहार
4: सिया बनी दुल्हन दुल्हार रघुराई सिया बनी दुल्हन दुल्हार रघुराई
0: सुना कार्यक्रम सुगंध माटी की
1: हर बुध और शनिचर
0: सवेरे 10 बजे
3: FM

जी हाँ, सुरों का लखनवी एहसास। हम कहाँ पे अभी? हम हैं एफएम के स्टूडियो में और अभी देख रहे हैं कि टाइम जो है ना वो 12:44 हो चुका है। और जब बात हो रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, तो एक छोटी सी बात मैं अपनी जो है यहाँ पे आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरा नाम नाना जी ने रखा, और जब हम स्कूल जाने लगे तो लोग होता है ना, क्लासमेट्स जो होते हैं चिढ़ाते हैं बहुत सी चीज़ें, तो हम चिढ़ जाते थे। हम सोचते थे कि ये नाम हमें क्यों मिला। तो जब हमने नाना जी से कहा तो नाना जी ने भी बताया इस नाम की बारे में, इस नाम की विशालता, इस ये नाम क्या है। और आज इस वक्त लगता है कि सच में ये नाम राधा, मतलब आई एम सो लकी कि मुझे ये नाम मिला। और आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, और ये आज मुझे यहाँ पे बैठने का और आप लोगों से बात करने का और श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का मौका मिल रहा है। ये वाकई लग रहा है राधा तू बड़भागिनी, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब हम बात कर रहे हैं कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं और स्वयं सिद्धा कार्यक्रम है, तो जब बालक जब जन्म लेता है तो बालक के जन्म लेने पे सोहर होता है ना, तो सोहर तो होना जरूरी है। तो चलिए अभी हम प्यारा सा सुनते हैं सोहर। कहाँ? अरे हुजूर, यहीं 100.7 FM रेनबो पर।

0: उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, डॉलकर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

दोस्तों, आपसे बात करते करते कार्यक्रम जो है ना अपनी वाइंड अप पे आ गया है। 12:55 हो चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके साथ रहेंगे। न्यूज के बाद आपसे मिलेंगे कार्यक्रम होठों पे तेरी बात में। और इस कार्यक्रम से चलते चलते स्वयं सीता का ये सफर जो है आखिरी मोड़ पर आ चुका है। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म ही जो है ना सब कुछ है, क्योंकि आप जो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, घर और दफ्तर संभाल रही हैं, यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। चलते चलते आप सभी सशक्त महिलाओं के लिए ये चंद लाइनें कि दफ्तर की फाइलों से लेकर घर के आंगन तक जो महकती हैं, जो आज की स्वयं सिद्धा नारी है, जो हर रूप में यशोदा से निखरती है, थकान को भुलाकर जो होठों पर मुस्कान सजाती हैं, कान्हा की असली मूरत तो उसी नारी के हौसले में नजर आती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम स्वयं सिद्धा पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक इस कार्यक्रम से मैं लेती हूँ आपसे अनुमति। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में जिसका नाम है होठों पे तेरी बात। और अभी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे एफएम रेनबो प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र और आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम अनुरोध गीत के आज के सुरीले और कर्णप्रिय सफर को लेकर हाजिर है आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है फिल्म किसना से और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। इसी गीत को सुनना चाहा है सरगुजा मैनापेट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदिबा थापा ने। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। आप हैं जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराज से आप हैं अभिजीत गोहणकर राही, श्रीमती सरिता गोहणकर, प्रिंस एकांश गोहणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गोहणकर, श्वेता सुमित गोहणकर और कुमारी ध्वनि गोहणकर। इसी गीत की फरमाइश है बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गोहणकर, प्रणीता गोहणकर, लाडली टुक टुक गोहणकर। आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी रामपुर से अमरजीत जी, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश। तो आइए सुनते हैं फिल्म किसना का ये प्यारा सा गीत।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म लगान से, आवाजें हैं वैशाली और उदित नारायण की, गीतकार है जावेद अख्तर और संगीतकार हैं एआर रहमान, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। ग्राम पारस रामपुर नई बस्ती से कमरजान अंसारी, सिजुद्दीन साहिल मोहम्मद, सजब अंसारी, सराय कालेखा नई दिल्ली से अनिल ठाकुर, रीना, ज्योति और प्रशांत, मौलागढ़ नई बस्ती से तनु अंसारी, तराना अंसारी, अजरुद्दीन, मोहम्मद हसन, रिदा, एजा और मम्मी पापा। इस गीत की फरमाइश आई है बटिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की। गड़ैया बरेली मस्जिद के पास से आप हैं कैसर शमसी, अजीम सलीम, ताबिश और तरन्नुम शमसी। आदर्श नगर मुलुर पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ और साइना शर्मा। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। तो सुनते हैं फिल्म लगान का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और कार्यक्रम है अनुरोध गीत और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म शागिर्द का, स्वर है लता मंगेशकर का, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। रामपुर रोड हल्द्वानी से गंगा सिंह रावत, खुर्जा उत्तर प्रदेश से आप हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से माही पलक दुबे, मधुर सुशीला, राजेंद्र, सतीश और भागवत महाराज। इसी गीत की फरमाइश भेजी है हमारे पुराने श्रोता पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुजन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्वनी, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और सुषमा कपूर ने। आप है सरदू शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, उगहती बदायूं से डॉक्टर देवेंद्र कुमार गुप्ता और डी के हिटलर। तो सुनते हैं शागिर्द फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म सौदागर से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। ग्राम लटूरी पोस्ट बिलवा बरेली से हशमत अली, हासिर हमशेर, आमिर और तैमूर अली। नाज रेडियो क्लब करेली बरेली से निसार अहमद अंसारी, मैजब निसार अंसारी, बेटी नुजर फातमा, अबरार अहमद, इसरार अहमद, इकबाल अहमद। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। और बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। ग्राम पजौनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार और साथी। गणेश कॉलोनी चंदौसी से आप हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, प्रिंस प्रशांत, कार्तिक और पवी।

बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास सैनिटी बरेली से विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागनी और मुस्कान। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री, मोहम्मद तबरेज, अबरार हुसैन, कैप्टन निसार और मस्तान बाबा। इसी गीत को सुना चाहे ग्राम वपोर शरहरपुर मटकली बरेली से शारून नूर अंसारी, मोइन तस्लीम, सर्वे सैनी और डीजे प्रधान ने। तो आइए सुनते हैं सौदागर फिल्म का ये गीत।

अनुरोध गीत। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पे। आइए सुनते हैं अगला गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। स्वर है लता मंगेशकर का, गीतकार हैं नरेंद्र शर्मा और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत की सुनने की फरमाइश भेजी है आप सबने। बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, वीरेंद्र सिंह चौहान, विक्की भारद्वाज, अमाल खान, प्रदीप पाल, नमन, श्री राम राठौर। आप हैं हमारे श्रोता मोहल्ला तलैया उर्दा जागीर से फजलुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई, नकटिया बरेली से ताराचंद बाबली। जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार कठेरिया, गुड्डू विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, नव्या, सरिता और अंतिमा। मनकारा मंदिर बीडे कॉलोनी करगैना बरेली से पनीराल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मीर मनवाजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश शुभंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, कुमारी दिव्या भारती, ममता चौधरी, श्रीमती ओमती भारती, बेटी कनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। तो आइए सुनते हैं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से ये गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म डिस्को डांसर से। आवाजें हैं नंदू भेड़े और साथियों की, गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं बप्पी लहरी, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। कटर चांद का मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराने शहर बरेली से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदांत मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, एरोही मौर्य और स्वाति मौर्य। कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम दुल्लापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष, सोनी और मोहिनी ने। बहेड़ी से आप हैं अंजुम भाई, खालदा बेगम, कहकशा, दानिश आदिल और शफक। सिद्धार्थनगर रोड नंबर 6 जतनगर बरेली से राय श्रीवास्तव, गोलू मोनिका और आशा श्रीवास्तव। तो सुनते हैं फिल्म डिस्को डांसर का ये गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म अमर प्रेम से, स्वर है लता मंगेशकर का, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और धुन बनाई है राहुल देव परमन ने। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौर, सुयश गौर, आशीष गौर, तन्मय और अपूर्वा। आज इनकी नातिन अपूर्वा का जन्मदिन भी है और उसको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहल्ला किशोर बाजार बिहारीपुर सिविल लाइन से कुंदनलाल सागर, ब्रजेश कुमार सागर, विपिन कुमार सागर, कल्पना सागर, पूजा सागर, बेटी नयाना सागर और समस्त सागर परिवार। भिलाई छत्तीसगढ़ से आप हैं मुकेश शर्मा, सरता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। ये फरमाइश हमें आई है बजीरगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से प्रेम कमल वाष्णे, सुशीला कमल वाष्णे, प्रभात कमल वाष्णे, अमरीश कमल वाष्णे, सलोनी कमल वाष्णे, सचिन कमल वाष्णे, नीरू कमल वाष्णे, देविका कमल वाष्णे, कार्तिक कमल वाष्णे, वेदरिचा कमल वाष्णे और ऐश्वर्या कमल वाष्णे की। आंवला मोहल्ला फूटा दरवाजा मस्जिद के पास से साकिब खान, उमेर, अरशान, फरहान, अदीफ उर्फ अद्दू भैया। आप हैं श्रीनगर बहेड़ी से लईक अहमद इदरीसी, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अतीक, यास्मीन और शिफा भी। तो सुनते हैं फिल्म अमर प्रेम का ये गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म किसन कन्हैया से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की, गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार हैं राजेश रोशन। सुनने की फरमाइश है आप सबकी अशरफ खां पानी की टंकी के पास बरेली से, रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वन्ना शर्मा, महिमा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, वंश, कनिष्का और घर के सभी लोग। गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद राय रे, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। इसी गीत के लिए हमें पत्र भेजा है बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिक

यादव। और विनोद गोस्वामी ने, और यहीं से हैं यूनुस खान, सरताज बेगम, सोफिया खान। मौला लवायन शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। महाराष्ट्र चिंगोली से हैं शाहजी बोटके, नंदा बोटके, हनुमान बोटके। तो आइए सुनते हैं फिल्म किशन कन्हैया का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पे होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 5 सितंबर 2026 को सायं 7:31 पे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु न रोए, शंकाएं व समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 4 सितंबर 2026 को सायं 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पे फोन करें। नंबर एक बार और नोट कर लें, 0581251720। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार और सुन लें। विषय रहेगा क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद

उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार और सुन लें। विषय रहेगा क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु न रोए, शंकाएं व समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 4 सितंबर 2026 को सायं 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251700। श्रोताओं, स्वर परीक्षा हेतु सूचना सुनिए। आकाशवाणी बरेली करने जा रहा है अपने एसआईनी पैनल का विस्तार। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए है सुनहरा मौका। है आपकी आवाज में उदम, वो क्रिएटिविटी जो रेडियो पर चला सके अपना जादू। तो देर किस बात का है, चले आइए आकाशवाणी बरेली। आकाशवाणी बरेली अनाउंसमेंट, ट्रांसमिशन और स्पेशल ऑडियंस कार्यक्रम जैसे नारी संसार और युवाणी, ग्राम जगत, अंकुर कार्यक्रम में असाइनमेंट के आधार पर कार्य करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। युवाणी के लिए 10+2 और बाकी के लिए कम से कम ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, बरेली नगर निगम में ही आप रहते हो, ये भी जरूरी है। अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए 1 सितंबर से किसी भी वर्किंग डे और वर्किंग टाइम में आकाशवाणी आकर आवेदन पत्र लेना होगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 20 सितंबर। तो देर किस बात की है, चले आइए और हमसे जुड़ जाइए। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। दोपहर के 2 बजे हैं, अब आप सुनेगा कार्यक्रम रसरंग। रसरंग में पहला लोकगीत है अनीता के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे रस रंग। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पे। आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है मदर इंडिया। गीत रचना शकील बदायूं ने की और संगीत नौशाद साहिब का।

शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों का गाया फिल्म मदर इंडिया का गीत अभी आपने सुना। ये स्वर है आशा भोसले और शमशाद बेगम की। फिल्म का नाम है नया दौर, शब्द साहिर लुधियानवी के और तर्ज ओपी नैयर की।

0: बहुत मशहूर हस्ती।
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की ये है अगली पेशकश। SD बर्मन का संगीत है, साहिर लुधियानवी की बोल, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजी। फिल्म का नाम है प्यासा।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक

कार्यक्रम में अब सुनिए हजरत जयपुरी का लिखा गीत और वसंत देसाई का संगीत, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है जनक जनक पायल बाजे।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल बालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से। मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है 2 आंखें 12 हाथ। शब्दकार पंडित भरत व्यास है और संगीतकार

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे, मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है अगला गीत। फिल्म का नाम है बसंत बहार। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और आशा भोंसले, बोल शैलेंद्र के हैं और धुन शंकर जयकिशन की।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सीआईडी से स्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के, गीत रचना जानिसार अख्तर की और धुन ओपी नैयर की है।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। हेलो सहेली, बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों सहेलियों नमस्कार, हम आ गए आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर। हेलो सहेली, मैं हूँ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है
1: हम नीता मिश्रा बोल रहे हैं
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने
1: जी। हम रहते थे लखीमपुर खीरी में, लेकिन इस समय अपने भाई के यहाँ आए हैं, शाहजहानपुर पास में ही है।
0: भाई के यहाँ आए हैं, रक्षाबंधन मनाने आए हैं आप
1: जी जी
0: जी। बताइए नीता जी, अपने बारे में बताइए।
1: हमारे 6 भाई हैं, तो भाई बात सभी भाई तो पहुंच नहीं सकते हमारे घर, इसलिए हम यहाँ पर आया था कि सारे भाइयों के राखी बन जाती है, रिचना हो जाता है,
0: अरे वाह,
1: इसलिए ज्यादातर हम ही आते हैं यहाँ पर।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे हैं। आपके जीवन में अभी
1: हाँ
0: खुशियों के दिन आ रहे हैं, जब हम भाई के घर जाके रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और आज आपका पहला फोन कॉल भी लग गया है, तो इसमें यानी सोने पे सुहागा हो गया है ना।
1: जी,
0: अपने बारे में बताइए
1: मैं हाउस वाइफ हूँ,
0: जी।
1: मेरे हस्बैंड हैं, मेरे ससुर हैं हम,
0: जी
1: और मेरी ननद है, उनकी शादी हो चुकी है। फिलहाल हम 3 लोग रहते हैं घर पे।
0: जी और बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: हम सुनना चाहते हैं काजल फिल्म का गाना है, मेरे भैया मेरी चंदा मेरे अनमोल रतन।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: मेरे भाई।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बड़ोदा
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: से शारदा बेन नागरेचा ने।
0: बड़ौदा से शारदा बेन बात कर रही है। बताइए
1: हाँ,
0: शारदा बेन, आप क्या करती हैं?
1: बहुत सारी एक्टिविटी करती हूँ, गाना गाती हूँ, म्यूजिक का बहुत शौक है, रसोई का, और एक्टिविटी में फ्लावर बनाती हूँ, तेज
0: अरे वाह वाह।
1: पत्ते में से, पिस्ता में से, और जो
0: यानी
1: आचार के गुंदे आते हैं ना, गुंदा आता ना, वो भी ईसा वाला, त्रोफान, लीला नारियल आता है ना, लीला नारियल ऊपर वाला ईसा,
0: जी
1: उसका फ्लावर बनाता है, उसमें कलर पुरते हैं।
0: वाह वाह वाह। यानी जो हम लोग जो इस्तेमाल करके जो बची हुई चीजें होती है जिसे हम फेंकते हैं, उन्हें आप
1: हाँ,
0: फेंकती नहीं है, उन चीजों से सुंदर सुंदर आप फ्लावर पॉट बनाती हैं, फूल बनाती हैं, है ना?
1: होलसेल मैडम राखी आते हैं, राखी के सब सामान में रख देती हूँ, इसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ।
0: क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी आदत है आपकी कि
1: हाँ,
0: जिन चीजों से हम कुछ और भी क्रिएटिव कर सकते हैं वो आप कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और
1: गाना गाना, भजन कीर्तन सब आता है मैडम।
0: जी, तो कुछ गाकर सुनाइए।

0: बहुत सुंदर आपकी आवाज है और इतनी सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए। और आप जो क्रिएटिव काम करती है ना, वो भी करती रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। चलिए बताइए,
1: बोल।
0: कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है।
0: बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से बोल रही हूँ, शहनाज अख्तर।
0: शहनाज जी, नमस्ते, क्या हाल चाल है?
1: बस बहुत बढ़िया है। होम
0: और बताइए आप क्या करती हैं?
1: गृहिणी हूँ, घर पर ही रहती हूँ। तीन
0: जी,
1: बच्चे हैं मेरे, दो बेटी है, एक बेटा है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो हर साल हम 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं, तो पोषण को लेकर आपके जीवन में क्या महत्व है, यानी कि आप बच्चों को पोषक भोजन किस तरह से देती है, जरा बताइए ना।
1: बच्चों को सुबह में जैसे हलवा नाश्ते में और जूस वगैरह। पोषण
0: ये आप बहुत अच्छी बात बताई आपने।
1: को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम कि पोषण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि जिंदगी में जान है तो जहान है, तो हम अपने स्वास्थ्य का हम खुद ही ध्यान रख सकते हैं।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं आज?
1: जी मैं मैडम, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, खासकर तो मैं अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: क्या बात है, अपने
1: जी
0: पति के लिए ये गाना समर्पित है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते
0: नमस्ते। बताइए, हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी। मैं रंजना कुमारी, बिहार शरीफ मगरा, मेरा गांव का नाम हुआ जी। मैं नालंदा जिला से बात कर रही हूँ
0: क्या बात है, बताइए रंजना जी, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी, ऐसा होता है ना कि सावन भादो का महीना जैसे ही आता है तो हमारे जीवन में उमंग और उत्साह के दिन आने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे त्योहार होते हैं। त्योहारों में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, तो आप कौन सी मिठाइयाँ बनाती हैं?
1: जी। हम लोग के यहाँ ये घर में ही ठकुरबाड़ी बना हुआ, कृष्ण भगवान का ये मंदिर बना हुआ है घर में,
0: जी।
1: तो उसमें हम लोग का 56 भोग लगता है। उसमें से कुछ बाहर से मिठाइयाँ आती है दुकान से, कुछ घर में भी जैसे हलवा वगैरह होता है, मूंग का हलवा, उड़द का हलवा, वही लगता है भगवान में भोग में जन्माष्टमी के दिन में। तो उस दिन भी हम लोग के यहाँ बहुत उत्साह होगा, पूरे घर सब मिल के जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग।
0: तो आजकल ऐसे हो रहा है कि लोग अपनी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं, चीनी का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ करती हैं कि चीनी के बजाय उसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है?
1: जी, हम लोग के हलवा में तो गुड़ ही पड़ता है, चीनी कम गुड़, और ये हम लोग मीठा बोलते हैं, गुड़ से पहले मीठा बनता है
0: जी।
1: जी। जो गन्ने का रस जब निकलता है ना, तो पहले मीठा बनता है, उसके
0: ओहो
1: बाद गुड़ बनता है। तो वो जो मीठा है वो ज्यादा यूज करते हैं हम लोग मीठा।
0: जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक है और पूरे परिवार का ध्यान रख रही है। आपसे बात
1: जी
0: करके बहुत अच्छा लगा। बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: ये छोटी बहू फिल्म का गाना है, कन्हैया तू किसको कहेगा मैया।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, बताइए
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं रुचि भट्ट बोल रही हूँ, इंदौर से, मध्य प्रदेश से। नमस्ते।
0: जी रुचि जी नमस्ते, बताइए अपने बारे में बताइए।
1: मैं इंदौर से रहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। और मैं पहले बिजनेस में हुआ करती थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइम बिजनेस में, और अभी कुछ सालों से लाइफ एंजॉय कर रही हूँ।
0: जी, यानी
1: लाइफ
0: जिंदगी का लुत्फ उठा
1: जी
0: रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी देखिए, इंदौर की जब भी बात चलती है तो खान पान आंखों के सामने आ जाता है, तो किस तरह के खाने आप एंजॉय करती हैं या बनाती हैं घर में?
1: इंदौर के पानी में ही स्वाद है ऐसा कहा जाता है, और मुझे भी, जैसे मैं रह रही हूँ और यहाँ के खाने का लुत्फ उठा रही हूँ, तो वाकई स्वाद है। और चाहे वो आप चाट पकौड़ी ले लें, या किसी भी किस्म का स्वाद आप लें, चाहे आप सदर में भुट्टे का किस खाने चले जाएं, या हर तरीके के खान पान में स्वाद है।
0: जी, और अभी यानी हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहे हैं 1 से 7 सितंबर तक, तो पोषण को आप
1: जी,
0: कितना महत्व देती हैं?
1: मेरी समझ से पोषण, मेरे जैसे शरीर के लिए पोषण का काम जो खान पान से मिलता है, उसको मैं चाहूंगी कि मैं इंदौर के खान पान से जोड़ूं। यहाँ पे जैसा कि आपने पूछा कि चलन क्या है खाने का, तो अभी चलन भी बदल रहा है, मिलेट्स को ज्यादा शामिल किया जा रहा है, चाहे वो चाट पकौड़ी हो या किसी भी टाइप की रेसिपीज हो उसमें, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है यहाँ के लोग, इसलिए उस चीज के ऊपर भी फोकस बढ़ रहा है और लोगों का खानपान भी बदल रहा है उसी के हिसाब से।
0: जी, मिलेट्स को बहुत महत्व देना चाहिए, ये जैसे ज्वार का आटा है, फिर बाजरा है, फिर यानी मैदे को हमें अवॉइड करना है और मिलेट्स को महत्व देना है। साथ ही इंदौर की एक और खासियत है स्वच्छता, साफ सफाई, तो ये क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगी साफ सफाई को लेकर?
1: मेरी तरफ से एक ही, अगर घर से शुरुआत करेंगे, गीला कचरा, सूखा कचरा और की शुरुआत से आदत डालेंगे, तो

0: हर घर और हर शहर इंदौर जैसा ही स्वच्छ बन सकता है और हम कर सकते हैं। शुरुआत हमें घर से ही करनी है।
1: ये बात आपने बहुत सही कही, और घर से तो हम लोग शुरुआत करते हैं, पर सार्वजनिक स्थल पर जाकर हम थोड़े से ना लापरवाह हो जाते हैं, इधर उधर चीजें फेंकने लगते हैं।
0: जब हम सार्वजनिक स्तर पर बात करते हैं तो वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होना ज्यादा जरूरी लगता है मुझे, और सेल्फ डिसिप्लिन एक माँ, एक लेडी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी तो उसकी फैमिली भी सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी, और एक एक अच्छा सोसाइटी और एक अच्छा साफ सुथरा शहर हम हर जगह, हर पूरे देश में बना सकते हैं।
1: जी, यानी कि बच्चों के संग जब हम बाहर जाते हैं तो बच्चों को इस तरह की आदत लगाएं कि बस चॉकलेट खाया के रैपर नहीं फेंकना है, उसे हमें डस्टबिन में ही डालना है। तो बच्चे अगर बचपन से इन आदतों को अपनाते हैं तो बड़े होके एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने।
1: जी बताइए रुचि जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मैं कारवा फिल्म का पिया तू अब तो आ जा।
1: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

अभी आपने सुने विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का यह बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
1: और मैं अजीत महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
2: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
1: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
1: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे
2: जी।
1: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
1: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है, उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने एआई से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें एआई के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए
2: जी।
1: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की
2: जी।
1: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की
2: जी,
1: आज का क्या कार्यक्रम है?
2: हाँ जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
1: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
2: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की

0: विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए, जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल, जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाई, और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही
0: जी,
1: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाई
0: जी,
1: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती हैं।
0: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की।
1: जी श्रोताओं, जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की
0: जी,
1: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
0: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
1: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स
0: जी।
1: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
0: तो वे भारत क्यों आए?
1: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए
0: जी,
1: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
0: श्रोताओं, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
1: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
0: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में
1: जी। देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी, समस्या थी गुणवत्ता की
0: जी।
1: तो उन्होंने, यानी सत्यानंद जी ने, अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए
0: जी।
1: शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा,
0: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब के फलों ने बाजारों में धूम मचा दी। उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
1: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
0: जी,
1: न जाने कितने किसानों का जीवन बदल गया। एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें, यानी सत्यानंद स्टोक्स को, हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
0: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओं, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी? जी
1: जी हाँ विमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई
0: जी,
1: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
0: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
1: जी जरूर।
0: श्रोताओ, कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
1: जी, शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं। तो इसीलिए
0: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहाँ भी रहें यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
1: जी, बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं, तो वहाँ के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें, जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
0: जी, और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: जी, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
1: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी

0: थे।
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-440-5559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो गिरधर गोपाल।
0: इस कार्यक्रम में भक्तिन मीराबाई के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है और चर्चा की गई है कि आज भी आधुनिक साहित्य उनकी कृतियों के प्रति आभारी है।
2: मेरे तो गिरधर गोपाल।

0: मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त, उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।
1: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे।
0: इस भक्त कवित्री ने लगभग 1300 भजन लिखे।

0: मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
0: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
2: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
3: अरे देखूं तो, अरे ये तो बारात जा रही है।
2: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा, ये कहाँ जा रहा है?
3: अरे ये दूल्हा है बिटिया, शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
2: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा?
3: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का शिकार नहीं करने दूंगी।
3: भाई बता दूंगा ना बेटी।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।
3: बेटी ये श्रृंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
2: सच पापा, ये है मेरा दूल्हा।
3: सच्ची भाई?
2: मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल।
0: बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई कृष्ण भक्ति में रमती गई।

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ, लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद न आता था।
2: उदाबाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती। माँ साहब, मैंने

0: तो सुबह ही उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
1: हाँ, तो फिर?
0: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली।
1: हाँ,
0: बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
1: हाय हाय,
0: जिसे अपने मायके से लाई है।
1: तो क्या अब तक तैयार नहीं हुई?
0: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।
2: नैनन में नंदलाल।
3: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
4: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
3: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र करता।
5: विष अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सर तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी सर। आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा। दासी,
6: जी राणा जी महाराज।
5: जाओ, ये कटोरा मीरा भाभी सा को दे आओ। उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है। क्या कहा? कान्हा का प्रसाद, चरणामृत।
6: जी महाराज।
5: जाओ, जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
6: जो आज्ञा महाराज।
5: गिरधर गोपाल का चरणामृत।
6: राणी सा की जय हो।
7: आओ सखी, भीतर आओ।
6: जी वो
7: क्या हुआ सखी, तनिक चिंतित सी लग रही हो।
6: वो कुछ नहीं।
7: कहो ना सखी, क्या बात है?
6: वो रानी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत।
7: क्या? मेरे कान्हा का प्रसाद?
6: पर हमें तनिक शंका होती है।
7: दो हमें, हम अभी पियेंगे।
6: रुकिए रानी सा जरा ठहरिए। रानी सा, क्या मालूम विष हुआ तो?
7: राणा भेजिया विष का प्याला, पीवत मस्त होई। दास मीरा लाल गिरधर, होनी हो सो हो।

माना जाता है कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा, कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख

0: लोग हैरान हो जाते।
1: कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
2: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
3: अरे छोड़ना ही था
4: और कहीं, विधवा होकर नाचनो गानो
3: और क्या।
2: अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या?
0: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
5: आह हाँ, कितनी भली है रानी सा।
6: गाती भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा। मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
7: वो देखो, वो आ रही है, तुम्हारी रानी सा।
8: प्रणाम रानी सा।
9: प्रणाम रानी सा।
10: प्रणाम। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण।
11: ऐसे पैदल कहाँ जा रही है रानी सा?
10: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
8: यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर?
10: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।
2: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा?
7: राजकुमार भोजराज की विधवा और
10: जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
1: इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।

0: इस समय की भी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है।
1: कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहाँ रहते थे।
2: गोविंद जय जय गोपाल जय जय
3: गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
1: मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थी, परंतु गोस्वामी जी ने कहला भेजा,
4: हम स्त्रियों से नहीं मिलते।
5: क्या सच गोस्वामी जी ने ऐसा कहा?
6: जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
5: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरि इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रुई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई।

कहते हैं गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की गलियों में मंदिरों में नाचती गाती

0: एक दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती है।

0: मीरा अब तक बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थी।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मेड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती है।

0: मीरा बाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
1: इतनी मधुर आवाज।
2: हाँ।
3: सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
2: क्या?
4: हाँ, पर वो गई नहीं।
0: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
5: ब्राह्मण भी भेजे गए हैं।
3: तो क्या हमारी मीरा बाई चली जाएंगी?
4: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सुना सुना लगेगा।
0: हाँ, बहुत सुना हो जाएगा।
6: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गई और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गई।
7: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली अनोखी भक्त कवित्री थी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरे तो गिरधर गोपाल, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन।
1: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।
2: ये लो रेनबो मिठाई खाओ,
3: तुम भी लो खाओ मिठाई,
2: ये लो तुम भी लो।
4: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
5: मैं भी
6: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
3: मैं तो मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
7: हाँ, यहाँ पर रखी तो है कितनी सारी।
8: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
3: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूँ उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
9: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
3: सबको बांटते और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
8: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
4: हाँ, ये बात तो ठीक है,
8: हो गई दुगनी।
6: अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
3: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
8: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?
3: हाँ, 60 किलोग्राम है।
4: अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 ग्राम की होती तो
3: अरे बस, किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं। वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
6: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
4: हाँ हाँ, 61 किलोग्राम।
3: अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो।
10: पता है, हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
11: 300 किलोग्राम?
8: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती है?
3: और चींटी की मम्मी, उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा।
4: 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा?
10: और अगर डायनासोर को

0: तो तुम छोटे डायनासोर के बाद हम तो मिठाई खाते हैं।
1: हाँ, कहीं 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, जगबंधु और कुसुमलता के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: उमंग, अभी आपने सुना एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र, जहां पे आपको मिलता है गीत संगीत और ज्ञान का बम्पर एंटरटेनमेंट। लीजिए प्रस्तुत है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आज का विषय है श्री कृष्ण की कौन सी लीला सबसे अधिक प्रिय लगती है आपको। और आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद आसिफ अंसारी, हैदराबाद तेलंगाना से बात कर रहे हैं सर।
0: मोहम्मद आसिफ अंसारी तेलंगाना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आसिफ भाई, क्या करते हैं आप?
1: जी सर, सिलाई का काम करते हैं सर।
0: अच्छा, तो आज जो विषय है आपको पता है?
1: जी सर, आपको और आपकी पूरी आकाशवाणी टीम को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी शुभकामनाएं और सारे देशवासियों को शुभकामनाएं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि श्री कृष्ण की कौन सी लीला सबसे अधिक प्रिय लगती है आपको।
1: जी सर, जी हमको सबसे अधिक प्रिय अगर कुछ लगती है तो उनको एक सच्चे मार्ग पर चलना, और दूसरी बात वो जो श्री कृष्ण भगवान थे तो वो जो गोपियों के साथ हंसी मजाक करते थे, उसके बाद फिर वो लोगों से अच्छे से प्रेम भाव में रहते थे, वो हमको अच्छा लगता है
0: जी। और कृष्ण भगवान ने साक्षात प्रकट होकर गीता के उपदेश भी दिए हैं, और वो उपदेश अगर हम अपने जीवन में उतारें तो सफल हो सके, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: सर आप आज कोई गीत सुना दीजिए श्री कृष्ण भगवान के ऊपर।
0: तो ठीक है, सुनते हैं ये गीत हम, आप और सारे श्रोता।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: अवधेश मिश्रा अमर शहीदों की नगरी जनपद शाहजहांपुर से बोल रहे हैं।
0: अमर शहीदों की नगरी शाहजहांपुर से अवधेश चंद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अवधेश जी रेडियो के विषय में काफी जानकारी रखते हैं और काफी पुराने श्रोता हैं। तो अवधेश भाई, कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम हमारे?
1: बहुत अच्छे लग रहे हैं कार्यक्रम पर। एक जो कार्यक्रम 16 जून 2023 के लिए आपने प्रस्तुत किया था चित्रपट संगीत में शाम 5 बजकर 5 मिनट पे, वो
0: हाँ जी, कौन सा?
1: बहुत पसंद आया। अविस्मरणीय कार्यक्रम था वो, मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता पर आपने प्रस्तुत किया था। वो आप राज्यसभा सदस्य भी हैं और आपके 2 बेटियां हैं और आपके बचपन का नाम गौरांगी चक्रवर्ती है।
0: हाँ, उनके 2 बेटे हैं और एक लड़की है,
1: हाँ,
0: और गौरांग चक्रवर्ती उनका नाम है।
1: तो
0: ये
1: आपने गीत बजाया था कहना ना ये दा तुम किसी से, ये बहुत अच्छा लगा था, भावसान गीत था, बहुत पसंद आया। इतना अच्छा कार्यक्रम कि उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, वो अविस्मरणीय कार्यक्रम है। वो जैसे अच्छे गीत होते हैं तो 10 बार सुनो, 11वीं बार फिर उसका सुनने की इच्छा होती है, उसी
0: तो
1: तरह से ये कार्यक्रम आपको इसको दोबारा सुनवा दिया जाए।
0: ठीक है, फिर कभी विशेष दिवस होगा तो विशेष चित्रपट संगीत में उसको लेके आएंगे। और तो अवधेश जी, आज जो विषय है वो ये है कि श्री कृष्ण की कौन सी लीला सबसे अधिक प्रिय है आपको?
1: श्री कृष्ण की सबसे अधिक लीला क्या, सभी लीलाएं जो है बहुत अधिक प्रिय हैं, क्योंकि उनका कारावास से छूटना उनके माता पिता का,
0: जी
1: और उनके पास फिर वो उनको लेकर के वहां जाते हैं नंदगांव,
0: जी जी जी जी
1: वो जो यमुना जी में पैर लगते ही यमुना जी घट जाती हैं। बहुत ही मार्मिक और अच्छी घटना है, अच्छी जो है वो है।
0: तो कृष्ण भगवान ने अपना जन्म के साथ ही चमत्कार दिखाने चालू कर दिए थे, तो
1: जी,
0: आपको उनके जन्म की प्रसंग आपको बहुत पसंद आता है। तो अवधेश जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गाना है, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ एक बात, क्योंकि वो जो कार्यक्रम था, डॉक्टर श्रीमान अजय वीर सिंह जी और श्रीमान प्रवीण कुमार जी ने आपके द्वारा प्रस्तुत करवाया था 16 जून 2023 का, वो बहुत पसंद आया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
0: चलिए, आपके स्मृति पटल पे वो अंकित है, हमें बड़ी खुशी हुई। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए कार्यक्रम लेके आते हैं, हमारे सभी
1: और
0: साथी
1: वो
0: लोग।
1: चर्च वाला

0: हेलो।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जय हीरामन बाबा रेडियो सोता संघ, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर, एमपी से विनोद नारायण कुशवाहा बोल रहा हूँ सर।
0: विनोद नारायण कुशवाहा जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कैसे हैं विनोद जी?
1: ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से अच्छे हैं सर।
0: ईश्वर की ही कृपा रहनी चाहिए। हम लोगों का तो सब प्रेम बना रहना चाहिए आपस में, है ना?
1: जी सर, अपनों का भी प्रेम बना रहना
0: तो
1: चाहिए।
0: आपको और आपके परिवार को और आपके समस्त मिलने वालों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी सर, जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ की ओर से सभी भाई बहनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। परमात्मा की कृपा हमारे सभी भाई बहनों पर हमेशा बनी रहे।
0: तो विनोद जी, आज जो हमारा विषय है वो ये है कि श्री कृष्ण की कौन सी लीला सबसे अधिक प्रिय लगती है आपको? तो क्या विचार हैं
1: देखिए,
0: आपके?
1: जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तो सभी बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन सर जी सबसे अच्छा लगता है सर वो है रास लीला।
0: जी
1: ऐसे बाल लीला है और भी है, तो कृष्ण

0: में जो रास लीला में क्या है, जैसे कि यमुना के तट के किनारे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, गोपियों के संग रास रचाते थे, ये बहुत अच्छी लीला लगती है हमको, और ये लीला हमको प्रेम का प्रतीक है, ये दर्शाती है।
1: कृष्ण जी भगवान ने देखिए सुदामा से मित्रता करी है ना, एक राजा होते हुए भी उस सुदामा से मिलने के लिए दौड़े दौड़े चले आए है ना। तो ये सब उदाहरण हैं मनुष्य को कि कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा एक सा व्यवहार रखना चाहिए सभी के प्रति है ना।
0: और श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्म करते चलिए फल की इच्छा मत कीजिए, वो तो अपन करेंगे तो फल मिलना ही मिलना है।
1: जी। तो विनोद जी आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
0: सर जन्माष्टमी का कोई भी गीत सुनवा दीजिए।
1: तो ठीक है, सुनते हैं ये गीत हम, आप और हमारे सारे रेडियो सुनने वाले श्रोता।
2: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: हेलो
1: आपकी बात आकाशवाणी से साहब।
0: जी साहब, बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं सनाब?
1: जावत जी नमस्कार, मैं लाल मोहम्मद अंसारी ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से बोल रहा हूँ सर।
0: आपको भी नमस्कार और समस्त करेली वासियों को नमस्कार। आप लोग बहुत चाव से, लगन से हमारा केंद्र के कार्यक्रम सुनते हैं, तो
1: जी, क्योंकि सबसे पहले मैं आकाशवाणी को और पूरे स्टाफ को और सभी सुनने वालों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज जन्माष्टमी भी है
0: जी
1: और इस मौके पर मेरी आपसे बात हो रही है, तो सर मुझे और भी अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी अच्छा लग रहा है। तो आज हमारा विषय भी इसी विषय पे है, श्री कृष्ण की कौन सी लीला सबसे अधिक प्रिय लगती है आपको?
1: जी, उनकी तो वैसे तो सारी लीलाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो उनके बचपन की जो लीला है, खास तौर से जो उनका जो माखन चुराने का जो नटखट तरीका था, गोपियों के संग रहने का जो तरीका था, वो बहुत प्रसिद्ध भी है और वो वाकया मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी रेडियो पर इस प्रकार की उनकी लीलाएं बताई जाती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो लाल मोहम्मद जी, आज इस उपलक्ष्य में कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो मैं ये चाहूंगा कि आज कृष्ण जी का ही कोई गीत अगर हो जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप कहें तो मैं चंद लाइनें बोल सकता हूँ। मैं
0: इजाजत है
1: कहना चाहूंगा कि दूर रहने वालों ने ऐसा सिला दिया,
0: जी।
1: दूर रहने वालों ने ऐसा सिला दिया, अपनी यादों से हमको रुला दिया, इतना भी इतना मतलब ही यार ना हो किसी का, जब चाहा याद किया जब चाहा भुला दिया।
0: बिल्कुल सही बात, मतलब ही यार नहीं होना चाहिए, यार हमेशा वफादार होना चाहिए, है ना?
1: जी सर, जी
0: तो सुनते हैं ये गीत, हम और आप और साथ में सभी रेडियो सुनने वाले।

0: हेलो। हाँ, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर जी। और आप सुनाइए।
0: सब बढ़िया। आप अपना शुभ नाम बोलिए।
1: मैं सर छविराम सिंह बोल रहा हूँ, जिला फरुखाबाद से,
0: तो फरुखाबाद से छविराम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
1: बरेली रेडियो का नियमित श्रोता।
0: जी। हाँ, मैं आपको आज का विषय बता देता हूँ। हमारा आज का
1: जी
0: विषय है श्री कृष्ण भगवान की कौन सी लीला सबसे अधिक प्रिय लगती है आपको?
1: सर जी, हमें तो श्री कृष्ण जी की फिलहाल तो सभी लीलाएं अच्छी लगती हैं, पढ़ने में भी और देखने में भी और सुनने में भी, क्योंकि हमने उनकी लीलाएं भगवान जी की बचपन में, मतलब जो पढ़ाई करते थे हम, सब पढ़ी भी हैं बहुत और देखी भी बहुत हैं। तो उनमें से सबसे अच्छी उनकी लीला लगती है यमला अर्जुन उद्धार्त वाली, जो वृक्ष बने थे और
0: जी
1: उन्होंने उद्धार किया था।
0: जी जी तो आज जन्माष्टमी है। आपको और आपके साथियों को, पूरे परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: और हमारे सभी रेडियो परिवार को, सभी आरजेस को भी बहुत सारी शुभकामनाएं सर जी। सर
0: तो छविराम जी, आपको भी मुबारक हो। और कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: जी गाना सुना देना, यशोदा का नंदलाला ब्रज का उजाला है।
0: तो सुनते हैं ये गीत संजू फिल्म का, आप और
1: और
0: हम।
1: सर,

0: हेलो,
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम पचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: उज्जैन महाकाल की नगरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेम सिंह सिसोदिया जी। तो प्रेम
1: जी
0: सिंह
1: सर
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ। और अभी मतलब कल रात से यहाँ पे रुक रुक कर बारिश हो रही है,
0: जी
1: और अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भी हमारे यहाँ पे शाम से शुरू हो जाएगा, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं।
0: पूरा भारतवर्ष और विदेश तक में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है।
1: जी हाँ,
0: तो प्रेम सिंह जी, आज का
1: और
0: हमारा विषय भी यही है कि
1: जी
0: श्री
1: जी
0: कृष्ण की कौन सी लीला सबसे अधिक प्रिय लगती है आपको?
1: श्री कृष्ण की तो अनेक लीलाएं करी है उन्होंने, और हर लीला में अलग अलग मतलब उन्होंने संदेश भी दिया है लोगों को। उसमें से ये मटकी फोड़ की जो उनकी लीला थी ना,
0: जी।
1: वो काफी अच्छी लगती है हमें। जब हमने टीवी पर देखा, मोबाइल पर देखा कि जब कैसे मतलब गोपियों को वहां से खाना जी माखन चुराते थे, और उनकी मटकियां मतलब छीन के मटकी भी फोड़ते थे, और फिर मतलब गोपियां ऐसे बताते थे कि उनसे डांटती भी थी, और जब खाना जी उनकी मटकी नहीं फोड़ते थे ना, तो गोपियों को बुरा भी लगता था।
0: तो
1: जी
0: आज कौन सा गीत सुनेंगे इस उपलक्ष्य में?
1: कान्हा जी का आप कोई सा भी भजन सुनवा दीजिएगा, हमें पसंद रहेगा।
0: ठीक है, सुनते हैं गीत, आप और हम और सारे श्रोता।

कार्यक्रम में अभी तो आपने सुनी फोन कॉल और अब शामिल करते हैं कुछ कमेंट। दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से विश्व मिस्किन रितिका आरव वाणी और मिस्किन परिवार लिखता है, मेरे लिए श्रीकृष्ण की सबसे प्रिय लीला माखन चोरी की लीला है, क्योंकि इसमें केवल बालपन की शरारत नहीं बल्कि जीवन का बहुत गहरा संदेश छिपा है। श्री कृष्ण माखन इसलिए नहीं चुराते थे कि उन्हें भूख लगी थी, बल्कि वे प्रेम से भरे उस घर और हृदय को अपना बना लेते थे। माखन को मन की निर्मलता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जैसे दूध को मथने के बाद माखन निकलता है, वैसे ही जीवन के संघर्षों और अनुभवों के बाद इंसान के भीतर से प्रेम, अच्छाई और सच्चाई निकलती है, और श्री कृष्ण उसी निर्मल प्रेम के भूखे हैं। भगवान को पाने के लिए बड़े महलों की नहीं बल्कि एक सच्चे और प्रेम भरे हृदय की जरूरत होती है। जिसके मन में प्रेम, करुणा और सच्चाई है, वहां श्री कृष्ण स्वयं किसी न किसी रूप में मुस्कुराते हुए आ ही जाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। उमेश कुमार गौड़ लिखते हैं, आप सभी को जन्माष्टमी की अनेक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की अद्भुत प्रेरणा निहित है, जिसने मानवता का निरंतर मार्गदर्शन किया है। उनकी भक्ति और उपासना को समर्पित ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार करे, यही कामना है। जय श्री कृष्ण। इसी प्रकार शार्दुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ लिखते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं बहुत प्रेरणादायक हैं, लेकिन बाल लीला भगवान कृष्ण की अद्भुत लगती है। भगवान श्री कृष्ण का गोकुल में बचपन का नटखट शरण माखन चुराना, यशोदा मैया के साथ प्रेम और मित्रता वाला व्यवहार भक्तों के मन को बहुत मोहता है। ये रूप बहुत ही सरल और मासूम लगता है। भगवान कृष्ण का गोपियों के संग रासलीला, प्रेम लीला और गोपियों को अपनी शरारतों के साथ हंसाना, मुस्कुराना, प्रेम करना सिखाना है। वैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिया गया भागवत कथा का ज्ञान संसार के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। उनकी सबसे बुद्धिमानी और प्रेरणादायक लीला आज भी लोगों के जुबान पे हर पल रहती है। भक्त अपने भाव के अनुसार उनके बाल लीला, रासलीला सबसे प्यारी लगती है। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला मन को मोह लेती है। भगवान श्री कृष्ण के भागवत कथा में कहे गए श्लोक हमारे जीवन का आधार हैं। हमें कैसा जीना चाहिए, भागवत कथा में पूरे संसार के हर धर्म के लोग सुनकर अपना जीवन सुधारते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के हर रूप को हमारे जीवन में उतारना चाहिए, लेकिन हमारा नटखट कृष्ण कन्हैया हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। जय श्री कृष्णा। ग्राम व पोस्ट कोठा खंडुआ से रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, सलोनी मिश्रा, शिवा मिश्रा कहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की आपको सब परिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जी की लीला की बात ही मत करो, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हाँ, कुछ जैसे माखन चोरी, नागनाथन पर्वत को उंगली पे उठाना, गोपियों के संग नृत्य करना, सुदामा चरित्र गीता का ज्ञान देना, हर एक लीला बहुत ही सुंदर व सबसे अच्छी झांकी लगती है।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेगा मुंबई केंद्र से रात 9 बजे। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम आप सुनेगा रात 8 बजे और 10 बजे। अब से थोड़ी ही देर में भजन संध्या में आप सुनेंगे कुछ कृष्ण भजन शाम 5:05 पे। साप्ताहिक कार्यक्रम लकी 3 का समय रहेगा 5:30। काव्य पाठ आप सुनेंगे 5:45 पे उन्नति शर्मा से। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी आप

संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर नीरज कुमार। हमारी कल की सभा आरंभ होगी प्रातः 5:05 पे। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम सुनेंगे 5:50 पे, 11:30 पे, रात 8 और 10 बजे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुनेगा मुंबई केंद्र से सुबह 9:45 पे, दोपहर 2:30 पे और रात 9 बजे। नमस्ते बरेली सुनेंगे 8:15 पे रोशना मिश्रा के साथ। लोकगीत का समय रहेगा 8:45। आपकी पसंद 10 बजे। सबरंग सुनिएगा 11 बजे और अनुरोध गीत 1 बजे। शाम 5:30 पे आप सुनेंगे हेलो बरेली। प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है का समय रहेगा 9:30। जनमन सुनेंगे आप 2 बजे। आपकी बात आकाशवाणी के साथ सुनेंगे श्रृंगार शेखर पाठक के साथ 4 बजे। भजन संध्या 5:05 पे। युवाणी सुनेंगे आबिदा के साथ 6 बजे। प्रस्तुति रहेगी गौरव सक्सेना की। ग्राम जगत सुनेंगे धारा भैया और सुरेंद्र पाल भैया के साथ। प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव की। रेडियो हेल्पलाइन में विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर कुलदीप गंगवार। समय रहेगा 7:31। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पे। आइए सुनते हैं भजन संध्या में कुछ कृष्ण भजन। श्रोताओं, आपको श्री कृष्ण प्रकट्य उत्सव जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। कार्यक्रम में पहला भजन है जुबिन नौटियाल के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या में कुछ भजन। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।

श्रोताओं, आज रेडियो हेल्पलाइन में आज का विषय रहेगा गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। विशेषज्ञ रहेंगे यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार।

आप रेट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम लकी थ्री। आज के लकी थ्री के सुरीले और कर्णप्रिय सफर को लेकर हाजिर है आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लकी थ्री में पहला कमेंट हमें भेजा है रामपुर रोड हल्द्वानी से गंगा सिंह रावत ने। आप कहते हैं कि आज योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है जिसे देश विदेश में बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। कृष्ण को उनके बाल सखा माखन चोर कहते थे। यशोदा मैया के घर माखन चुराना, गोपियों के साथ आंख मिचौली करना और पकड़े जाने पर भोला सा मुंह बनाना, इसमें भगवान का वो रूप दिखता है जो बिल्कुल हमारे जैसा पर फिर भी दिव्य है। यही लीला हमें बताती है कि भगवान को घमंड नहीं, प्रेम और भोलेपन से जीता जा सकता है। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया गया उपदेश, जहां उन्होंने मित्र, गुरु और भगवान तीनों का धर्म निभाया। और भक्तों के लिए रासलीला सबसे प्रिय है क्योंकि इसमें प्रेम की पराकाष्ठा है। आप कहते हैं कि आज मैं अमर प्रेम का वही गीत सुनना चाहता हूं जिसमें उनके बाल स्वरूप का आनंद बख्शी साहब ने बड़ा ही मोहक चित्रण किया है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम में अगला कमेंट हमें भेजा है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुल शाह, शकील अहमद, शहनाज खान, सलीम अहमद और रुकैया बानो ने। आप कहते हैं आकाशवाणी की वर्किंग टीम और सभी श्रोताओं को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके यहां के जो भी शो होते हैं वो बड़े एनर्जेटिक होते हैं। आपके अनाउंसर और कंपेयर शो में जान डाल देते हैं। उनका शो पेश करने का अंदाज और बोलने का लहजा लाजवाब है। आपने ये गीत पसंद किया है,

इंद्र कॉटेज दलिताल नैनीताल उत्तराखंड से मोहन सिंह रावत लिखते हैं। लकी थ्री के लिए आज मैंने फिल्मों

से जुड़े अपने निजी अनुभव पे आधारित गीत चुना। मेरी पसंद का गीत है 1967 में प्रदर्शित फिल्म अनीता से, जिसके बोल हैं, तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से। 1980 के दशक में जब फिल्म देखने का शौक परवान चढ़ा, तो उस दौर में फिल्मी गीतों का अपना अलग ही आकर्षण होता था। उस जमाने में सिनेमा हॉल के अतिरिक्त फिल्में देखने का एकमात्र सपना और साधन दूरदर्शन था। दूरदर्शन में फिल्मों के अलावा फिल्मी गीतों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम चित्रहार का बेसब्री से इंतजार रहता था। उन दिनों चित्रहार में जब ये गीत प्रसारित होता था तो घर पे बहुत चर्चा होती थी इसके फिल्मांकन के बारे में। ये पूरा गीत नैनीताल के हनुमानगढ़ी में मनोज कुमार और साधना पे फिल्माया गया है। गीत देखकर ये मंदिर की शांति, स्वच्छ निर्मल वातावरण और यहां से दिखाई देने वाला मनोरम दृश्य अपने मोहपाश में अपने आप बांध लेते हैं। इस गीत के फिल्मांकन के लगभग 58 वर्ष बाद आज भी मंदिर का वही शांत सुंदर स्वरूप बरकरार है। नैनीताल में हमारे घर से इस मंदिर की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। जब भी यहां आते हैं तो इस गीत के दृश्य मन मस्तिष्क को तरोताजा कर देते हैं। गीत को आवाज दी है मुकेश ने और गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खान। शब्दों को संगीत में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लकी थ्री। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं काव्य पाठ उन्नति शर्मा के साथ।
1: प्रणाम, मैं उन्नति राधा शर्मा बरेली से। आप सभी ने प्रेम के कई मुक्तक सुने होंगे, प्रेम के कई गीत सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि जब दो लोग अध्यात्म में होते हैं और वो प्रेम में भी होते हैं तो प्रेम किस तरह का होता है।

और इस सावन के प्रेममय माह में हम एक मनोहार गीत की अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। तो हम एक मनोहार गीत सुनते हैं कि सावन में, मैंने आपको पहले ही बताया कि आज मैं वो पढ़ूंगी, जब दो लोग अध्यात्म में होते हैं और प्रेम में होते हैं तो प्रेम किस तरह का स्वरूप लेता है।

अभी तक आपने सुना एक गीत जो कि प्रेम से भरा था, और सावन में ये गीत आप सुना सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं अपने प्रेयसी को। अब आपके सामने मैं रख रही हूँ एक गजल, प्रेम भरी गजल, कि जिसमें प्रेम भी है और विरह भी है। वो सावन जब आप अपने किसी प्रियतम से दूर हो रहे हो, वो सावन जब आपका प्रियतम आपसे दूर हो रहा हो, वो सावन कैसे बीतता है, वो पल वो क्षण कैसे बीतते हैं, सुनाती हूँ।

और क्योंकि ये सावन का महीना है और ये सावन का महीना बिना शंभू के पूरा हो नहीं सकता, तो हम एक छंद मेरे आराध्य शिव के लिए है, सुनेगा। शीश पे मयंक के गंग शोभिती जटा के बीच और गले में लपेटे हुए हैं भोजंग शिव, भस्म तन परमले सूरते से भोले भले, चले जग में तो लागे साधु या मलंग शिव, साज व श्रृंगार जो करे तो सजे ऐसे जैसे रंगों से बना रहे हो नए नए रंग शिव, रौद्र रूप धरे तो कठोर।

अगर आपका कोई अपना आपसे रूठा हुआ है या आपके प्रपोजल को नहीं मान रहा है या ऐसा है कि आप उससे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं, तो ये एक गजल आप ही लोगों के लिए। भोला सा एक लड़का है पर वो मुझसे डरता है। भोला सा एक लड़का है पर वो मुझसे डरता है। चांद सितारे खिलते हैं जब वो खुलकर हंसता है। जुगनू सी जगमग उसमें तारों का कुछ लगता है। मेरा भी एक दिल रख ले, सबके दिल तो रखता है। उससे जाकर सच कह दूं, पागल पागल कहता है। जिसके पीछे मैं हूं मैं, उसका इतराना बनता है। सौ सौ मरती हैं उस पर, सौ सौ मरती हैं उस पर, वो अम्मी पर मरता है। और अगर यहाँ तक भी अगर आपकी कोई बात जो कि अधूरी रह जाए और आप नहीं कह पा रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं क्योंकि सावन है और आपको सावन में किसी को याद दिलाना हो कि आपको क्या उपहार चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि

अभी आप सुन रहे थे उन्नति राधा शर्मा के कुछ कविताएं और काव्य पाठ में। कविताओं के साथ ही उन्होंने गजल भी आपको सुनाई। तो ये कार्यक्रम था हमारा काव्य पाठ। आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र। शाम के 6 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी आबिदा के साथ। प्रस्तुति है गौरव सक्सेना की।

हेलो हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपना खूब खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, आपकी रेडियो हम सफर आबिदा फातिमा, लेकर आ चुकी हूँ आपका और मेरा फेवरेट प्रोग्राम युववाणी, जिसमें हम करते हैं आपसे ढेर सारी गुफ्तगू और सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत नगमे भी।

0: अपनाए।
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: और साथियों, क्योंकि आज का दिन है भक्ति प्रेम और उमंग से भरा हुआ, क्योंकि आज है कान्हा जी का जन्मोत्सव जन्माष्टमी। वही नन्हे नंदलाल जिनकी मुस्कान में पूरी दुनिया की खुशियां समाई हैं, जिनकी बांसुरी की धुन पर दिल खुद ब खुद झूम उठता है। तो चलिए आज के इस खास मौके पर याद करते हैं अपने प्यारे कान्हा को, उनकी शरारतों को और उनके दिए हुए प्रेम के संदेश को। मैं हूं आपकी दोस्त आबिदा फातिमा और आप सुन रहे हैं 100.4 FM, एक ऐसा सफर जहां साथियों आज हर पल में मिलेगा आपको कान्हा का रंग। और एंजॉय कीजिए जन्माष्टमी उत्सव पर इस प्यारे से सॉन्ग को।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: तो दोस्तों, अभी आपने सुनी एक खूबसूरत सी धुन और आज का दिन भी कुछ ऐसा ही खूबसूरत है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्णा के जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है दोस्तों, बल्कि ये प्रेम, भक्ति और उम्मीद का त्योहार है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्णा का जन्म मथुरा की जेल में देवकी और वसुदेव के घर हुआ था। उस समय मथुरा के राजा कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस के अंत का कारण बनेगा। और फिर आई वो आधी रात जब अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उसी अंधेरे के बीच भगवान कृष्णा ने जन्म लिया। वसुदेव उन्हें लेकर यमुना पार गोकुल पहुंचे, जहां नंद बाबा और यशोदा मैया के घर उनका पालन पोषण हुआ। कान्हा की बचपन की शरारतें तो हम सब ने कहानियों में सुनी है, मक्खन चुराना, गोपियों को परेशान करना और अपनी प्यारी सी मुस्कान से सबका दिल जीत लेना। लेकिन साथियों, कृष्णा सिर्फ नटखट कान्हा ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने हमें जिंदगी जीने का बहुत बड़ा संदेश भी दिया। भगवद गीता में उनका सबसे मशहूर संदेश है, अपना कर्म करो और उसके फल की इच्छा मत करो। शायद इसीलिए कृष्णा जी का जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें अपना कर्तव्य और सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन देश भर में अलग अलग तरह से सेलिब्रेशंस होते हैं। कहीं दही हांडी होती है, कहीं कृष्णा जी की झांकी सजाई जाती है, कहीं भजन कीर्तन होते हैं, तो कहीं लोग रात 12 बजे कान्हा के जन्म का उत्सव मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम कान्हा का जन्मदिन मना रहे हैं जब, तो क्यों ना उनकी एक बात अपनी जिंदगी में भी उतारें। खुशियां बांटिए, अपनों से प्रेम कीजिए और मुश्किल वक्त में हिम्मत कभी मत हारिए। फिलहाल अभी एंजॉय कीजिए इस सॉन्ग को।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14-डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: आप बनी हुई अपने दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी। और आइए साथियों, अब चलते हैं सेगमेंट नजाना शाम की ओर और सुनते हैं नजाना शाम की ये पहली पेशकश।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: तो साथियों, सेगमेंट चल रहा है नजराना शाम, और आइए नजराना शाम की सुनते हैं ये एक और पेशकश।
3: नवाजता है जो सबको

और साथियों, अब वक्त है आज के सवाल का। और सवाल हमने आपसे पूछा है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? और इसका सही उत्तर है गुजरात। और सही उत्तर देने वालों में नाम शामिल हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, विष्णु गंगा सिंह रावत, जॉन डी कैस्ट्रो, सुदर्शन शाह, संजय, मुकेश कश्यप, हीरा मणि वर्मा, गोविंद, जमुना प्रसाद, कृष्णा मेहरा, शेख मूसा, ताज अंसारी, रविंद्र दास, लाल मोहम्मद अंसारी, अनोखी लाल, प्रवीण चौहान, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और हमारे अन्य सभी साथी। तो साथियों, हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे पत्रों के माध्यम से। हमारा पता है युवाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी बरेली। हमारा पिन कोड नंबर है 243001। और अब दीजिए अपनी दोस्त आबिदा को इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

युववाणी। अभी आपने सुना युवा साथियों का ये पसंदीदा कार्यक्रम आबिदा के साथ। प्रस्तुति थी गौरव सक्सेना की। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पे। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम जगत। भैया धारा सिंह के साथ प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव की।

कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे सभी भैया और बहनों, आप सभी को आपके भैया धारा की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या गांव, क्या शहर, आज सभी मंदिरों को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है। और क्यों ना सजाया जाए, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, प्रेम, कर्म और मानवता का संदेश देने वाला अवसर है। तो इस अवसर को खाली कोई नहीं जाने देता। सुबह से ही मंदिरों को सजाया जा रहा है, भक्तगण भजन में लीन हैं और घर पर माताएं बहनें पूजा पाठ की तैयारी कर रही हैं।

0: तरह तरह के व्यंजन बना रहे हैं। और जब रात के 12 बजेंगे उस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और जयकारे से पूरा वातावरण गुंजायमान हो जाएगा। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें सत्य और कर्तव्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। विशेष रूप से हम बात करें कि अपने ग्रामीण क्षेत्र के उन भैया बहनों की जो खेतों में कोई भी समय हो काम में लगे रहते हैं। इस समय नदियों में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में हम पहुंचे विकास खंड फतेहगंज पश्चिमी के गांव मीरापुर में, जहां गंगा के किनारे बहुत लोग एकत्र थे। गंगा के किनारे एक विशालकाय पीपल का पेड़ और वहां एक मंदिर जहां बहुत से लोग खड़े हुए हमें मिले, और मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष में मंदिर को सजाया जा रहा था। वहीं हमने बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं कि किस प्रकार से ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने की तैयारी कर रहे हैं और हमें क्या बता रहे हैं।
1: क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के दौरान आज हम हैं ग्राम मीरापुर विकास खंड फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली के गांव में, और यहां एक संभ्रांत बुजुर्ग नागरिक हमारे साथ हैं। जानते हैं आप ही आपका करके।
2: मेरा नाम अभिष कुमार दीक्षित
1: जी। दीक्षित जी, आपकी उम्र क्या हो चुकी
2: है? 73 बहत्तर वर्ष।
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा सा बताएं।
2: इंटर तक पढ़ाई थी जी।
1: 72 साल का आपका जो अनुभव है इस गांव मीरापुर को देखने का, अगर हम 72 सालों में से लगभग 10 साल निकाल दें तो 62 साल का आपका बहुत अच्छा अनुभव है कि इस गांव में हो रहे विकास कार्य, इस गांव के लिए हो रहे नुकसान, और इस गांव के जो खेतीबाड़ी करने वाले किसान भाई हैं वो किस प्रकार से खेती किया करते थे, इसका बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा।
3: पहले तो हमारा गांव अभी पिछड़े में आता था
1: जी।
3: जब हमारा लड़का पढ़ाई लिखाई का तो यहाँ कोई रोग व्यवस्था नहीं, तैर के जाया करते थे पढ़ने के लिए
1: जी।
3: यदि कोई बीमार हो जाता था तो उसे इलाज भी नहीं मिलता था, तो चार पाई पे बांध के दो पंद्रह के लोग लेके जाया करते थे फतेहगंज तक, तब इलाज हो जाता था।
1: समय
3: अपने गांव का हमारे साथ के हमारे पति रामकिशोर और गाँव के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति गंगा ये सोचा कि कम से कम एक हिसाब में गाँव के कुछ पक्ष होना चाहिए। 77 में जब सूखा पड़ा था तो गवर्नमेंट ने अनाज के काम के बदले अनाज योजना की, उस योजना के अंतर्गत यहाँ पे कार्य मंदिर हुआ फतेहगंज को, यहाँ तक तो खरंजा जो डल जाएगा था,
1: हाँ इसका खरंजा हुआ,
3: हाँ जो खरंजा डल जाता है, फिर टांगिया में चलना शुरू हुआ, घोड़ा जो है सहूलियत हुई। अच्छा, इससे पहले गांव में प्रयास करते हुए विद्युतीकरण भी हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से कराया
1: जी।
3: जब लाइट और टेलीफोन गांव में हो गया तो विकास धीरे धीरे फिर आगे
1: बढ़ता रहा,
3: बढ़ता।
1: और आज यहाँ पर पक्की सड़क है,
3: आज हमारा गांव संपन्न है कि राम गंगा में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे यहाँ से ये था। बड़ी बड़ी ज़मीनें थी लोगों, बहुत अच्छी ज़मीनें थी, आदमी परेशान है उधर खेती करने में।
1: बाढ़ नियंत्रण के बाद या बाढ़ में जो नुकसान हो जाता है उससे किसानों को मदद मिलने के लिए कोई निधि नहीं आता।
3: हाँ, ये रास्ता बनाने के लिए, इधर से रास्ता अगर बन जाए तो उस पार की खेती हो जाए, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये मिट्टी कार्य हो जाए जो कि एक चलता मनरेगा से
1: जी। दूसरी जी, एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस समय बाढ़ का समय चल रहा है और गंगा के बिल्कुल नज़दीक आपका गाँव ये मीरापुर बसा हुआ है। पहले लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर लोगों ने बताया कि गंगा जी बहा करती थी, तो इसमें जो नुकसान जिन किसानों को हुआ क्या उसकी भरपाई के लिए किसी भी किसान ने जनप्रतिनिधि से या जिला प्रशासन से ऐसी कोई मांग की?
3: हम लोगों द्वारा मांग की गई थी, यही पता शुरू हुआ, फिर हमने प्रतिज्ञा ली कि अपने गांव को हम बचाएं
1: जी,
3: पूरा कोशिश करेंगे। यहाँ बाढ़खंड भी नहीं हुआ करता था बरेली में, ये बाढ़खंड की स्थापना हमारी जो बरेली थी, बरेली में जो बाढ़खंड आज दिखाई दे रहा है और जगह जगह मंदिर के काम हो रहे हैं
1: जी,
3: ये शुरुआत मीरापुर के जो है जागरूक लोगों द्वारा ही थी। ये हमारा पीपल का वृक्ष बचा लीजिए जो आज आप देख रहे हैं, ये हमारे गांव

0: काफी शान है, अगर एक कट गया तो समझ लो मीरापुर हो गया।
1: बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और हो सकता है ये पीपल की शक्ति की वजह से ही ये मीरापुर बचा हुआ,
0: और उन्होंने बचाया इसको, इतना कार्य किया यहाँ पे करा के आज हमारे गांव के आन बान शान ब्रह्मदेव महाराज का मंदिर बचा हुआ है।
1: और आज हम यहाँ ब्रह्मदेव महाराज के इस पीपल के वृक्ष के नीचे मंदिर पर बैठे हुए हैं, और आज जन्माष्टमी का पर्व है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व चाहे गांव हो या शहर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। आपके यहाँ इस गांव में जन्माष्टमी का पर्व किस समय से और कैसे करके मनाया जाता है, इस बारे में बताइए।
0: हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से पर्व मनाया जाता है, सबसे प्राचीन मंदिर जो है हमारा गांव का ठाकुर द्वारा है
1: जी,
0: तो बरेली के रिकॉर्ड में दर्ज जो हमारे बुजुर्गों ने बनवाया था मुगल पीरियड में, जबकि एक मूर्ति भी नहीं रख सकती, उस वक्त बरेली जिले का सबसे प्राचीन ठाकुर हमारे गाँव का। और ये जो मंदिर है यहाँ से जमींदार राधेश्याम द्वारा बनवाया मंदिर था गांव में, शिव मंदिर वो कट गया, अब ये हमारे गांव के लोगों ने मिलके।
1: तो आज का क्या कार्यक्रम है?
0: आज कार्यक्रम शाम के लिए कार्यक्रम है
1: जी,
0: बाकायदे सब लगा के भजन कीर्तन ढोल ताशे सब बज के बढ़िया भजन कीर्तन होंगे और प्रसाद वितरण किया जाएगा इस मंदिर से भी जी, ठाकुर द्वारा से भी दोनों ही प्रसाद वितरण होगा। 12 बजे जो है कृष्ण जी का जन्म होता है और फिर 7 बजे से लेके 1-2 बजे तक के कार्यक्रम बढ़िया रंगारंग
1: जी। और कुछ विशेष बताएगा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है श्री कृष्ण जी के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, इससे लोगों के लिए क्या आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, क्या भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इस बारे में
0: भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं सबसे अच्छा अवतार श्री कृष्ण का 16 कलाओं के साथ, और बाकी जो अवतार हुए हैं वो एक एक के रूप में हुए हैं, उन्होंने जो कार्य किए वो आज अविस्मरणीय है
1: जी,
0: जैसे अताताइयों से मुक्ति दिलाना
1: बिल्कुल,
0: और गौधन के लिए गाय के पीछे कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं इस भारत में इतिहास साक्षी है
1: जी जी जी,
0: गाय देसी गाय के दूध में स्वर्ण की मात्रा होती है, और इसलिए हमारे भारत के लोगों में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता
1: ज़्यादा होती है,
0: ये चीज़ विदेशी कंपनियों को हजम नहीं होती, दवा कंपनियों का ये सब षड्यंत्र है जो गाय को खत्म किया जा रहा है भारत
1: जी।
0: उन्होंने रिसर्च किया कि यहाँ का आदमी जो है कैसे कमजोर हो, कैसे ज़्यादा बीमारियाँ हों, और कैसे जो है हमारा जो है बिजनेस बढ़े, तो बड़े प्री प्लानिंग तरीके से ये जो है गाय को समाप्त देसी गाय को खत्म करने की रणनीति के ये काम हो रहा है
1: जी। दीक्षित जी बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का जन्म कारागार में और अंधकार में हुआ था, तो ये कारागार में अंधकार के समय जन्म होना ये जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए नहीं, आदमी के लिए व्यक्ति के लिए उसकी प्रवृत्ति कहें या उसके सब विचार कहें उनको जागरूक करने के उद्देश्य से भी इस जन्माष्टमी को मनाया जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना है?
0: श्री कृष्ण भगवान ने समाज के जितने भी गुरु लोग, गुरु का मतलब ही ये होता है, गुरु का मतलब होता है अंधेरा, प्रभु का मतलब होता है प्रकाश, तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ये कार्य हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था, जो आज के हमारे पत्रकार मार्गदर्शक हैं गुरुदेव जी ने,
1: इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है,
0: गो पालन बढ़े, घर घर एक गाय होना चाहिए, मेरा संदेश है सभी से जितने भी लोग, तो उससे आपको आस्था बढ़ेगी, गाय जिस घर पे होती है उस घर से दुख दलिद्र हमेशा दूर
1: जी। दीक्षित जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास का त्यौहार है, ऐसे में लोग बहुत भजन गाते हैं, प्रस्तुति देते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ मटकी कार्यक्रम भी होता है, इस बारे में आपका क्या कहना है?
2: बादों आधी रात कृष्ण ने लियो जेल अवतार, हर्ष करें बस देव देव की सोए गए पहरेदार, जेल के तारे टूटे कंस के छक्के छूटे
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आइए एक संगीत में प्रस्तुति हम आपके लिए पेश करते हैं।

0: हरीरा बना रही हैं, हमने उनसे बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं।
1: हमने गांव में घरों में जाकर के भी देखा है कि माताएं और बहनें शाम की पूजा के लिए बहुत तैयारी कर रही हैं। ये देखिएगा, हमने देखा है कि चूल्हे पर ये कढ़ाई रखी हुई है और कढ़ाई में कुछ बना रही हैं। क्या नाम है आपका?
2: मीना
1: जी। तो ये बताइएगा कि आज आप ये कढ़ाई में क्या तैयारी कर रही हैं?
2: ये आज जन्माष्टमी है
1: जी,
2: कन्हैया जी का जन्म हुआ है।
1: हाँ हाँ।
2: तो उसी उपलक्ष्य में खाना बना रहे हैं
1: जी।
2: अच्छे अच्छे पकवान, पूड़ी बनाएंगे, सब सब्जियाँ बनाएंगे, जेवे बनाएंगे, हरीरा बनाएंगे
1: जी। तो अभी जो है क्या तैयारी चल रही है?
2: अभी इस समय अब खाना तो बन चुका। अब ये हरीरा बनाएंगे।
1: अच्छा, शाम को पूजा के लिए।
2: शाम की पूजा के लिए
1: जी जी जी। चलिए बहुत अच्छा है कि देखिए अब चूल्हों का चलन कम हो गया है, लेकिन आपने ये चूल्हे की परंपरा अभी भी यहाँ पर बरकरार है। तो ये चूल्हे का स्वाद की वजह से, या अब तो हर कोई गैस पे बनाना चाहता है?
2: बनाता है, लेकिन हम नहीं बनाते हैं।
1: अच्छा।
2: हम तो कोई मतलब इमरजेंसी में ही बनाते हैं, या बारिश हो या कुछ हो, लेकिन हम चूल्हे पे ही बनाते हैं। हमें चूल्हे का ही खाना अच्छा लगता है।
1: देखिए आप तो बुजुर्ग हैं और बहुत समय से चूल्हे का इस्तेमाल भी कर रही हैं, कढ़ाई पर ये सब चीजें बना भी रही हैं। अगर आज अगर किसी नए बच्चे से, बेटी से या बहू से ये कह दो कि चूल्हे पर रोटी सेक ले, तो सेकना चाहिए?
2: वो तो नहीं बनाएंगे, लेकिन जब तक हम आए हमारा पैर चलना तब तक बनाएंगे
1: जी जी। अच्छा जी, ये बताइएगा कि जन्माष्टमी के त्योहार को मनाने के पीछे मतलब क्यों मनाते हैं इतने हर्षोल्लास के साथ?
2: अरे क्यों, ये कन्हैया जी का जन्म हुआ है तो उसी उपलक्ष्य में मनाते हैं कि भगवान मतलब कृष्ण जी का जन्म हुआ है उसी के लिए।
1: चलिए साहब बहुत अच्छा है। तो शाम को तो बहुत बड़ी पूजा पाठ होगी,
2: बहुत 56 भोग बनते हैं, तब भोग लगता है शाम के लिए, 12 बजे उनका जन्म होता है, फिर हम सब पूजा करके उसी के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं
1: जी। खूब अच्छी तरीके से नाच गाना भी होता
2: है, नाच गाना खूब,
1: तो तैयारी चल रही है,
2: तैयारी चल रही है।
1: चलिए साहब बहुत अच्छा है कि आपने हमें इस संबंध में बताया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये लगी है कि आपने चूल्हे की परंपरा को कायम रखा हुआ है कि आज इस बदलते समय में जहां हर घर में गैस पर रोटी बनाई जा रही है, ये परंपरा समाप्त होती जा रही है। आपने हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और हम उसमें शामिल ना हो, आइए आपको सुनवाते हैं एक मधुर लोकगीत भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर। इस मधुर लोकगीत को सुनना चाहा है कस्बा मीरगंज बिजली घर के पास से आदर्श देवाकर, लव देवाकर, ओमेंद्रपुरी गोस्वामी, भाई कल्लू मिस्त्री, ग्राम लभेड़ा दुर्गा प्रसाद मीरगंज से दीनदयाल मौर्य, साक्षी मौर्य, सम्राट मौर्य, प्रियदर्शी कुशाग्र मौर्य और समस्त मौर्य परिवार, अलखनाथ मंदिर के सामने गंगवार बैगलाइन बरेली से बेंचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव, इला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, महावीर कश्यप, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य, बाबू भाई, रमेश चंद्र सैनी, गौतम राम, श्री राम राठौर और राज कश्यप, ग्राम बीरपुर पोस्ट बिलसर तहसील अलीगंज एटा से विपिन कुमार साक्य, सपना साक, कुलदीप रत्न साक, खुशी साक और समस्त साक्य परिवार, आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जघेल, मोरस जघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जघेल, नंदनी जघेल, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जघेल, सपनी जघेल, आरुषि, अंशिका और अंजलि जघेल, ग्राम लाहौड़ा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी और रामानंद कश्यप, रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी, ग्राम फरासी जिला हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, जलालाबाद से सुरेश, पूनम, विशाल और दिसानी और निमित, ग्राम दूनीनगर से हैं ठाकुर मुन्ना सिंह कठहरिया और उनके परिवार के लोग, छबीलपुर गुन्नौर से हरवेश कश्यप, अर्जित कश्यप, दिव्यांश कश्यप, गायत्री कश्यप, कासगंज से पवन गौड़, सुरेश गौड़, आशीष गौड़, तनय और अपूर्वा, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, पीतल नगरी ग्राम दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना गुरवंत सिंह जौड़ा, कस्बा उगैती बदायूं से धीरज गुप्ता, पंकज गुप्ता, डॉक्टर देवेंद्र, डीके हिटलर और उनके परिवार के लोग, गांव नगला खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, परवीन शर्मा, राहुल शर्मा और मनीष शर्मा। तो आइए

इसी मधुर लोकगीत के साथ आज का कार्यक्रम ग्राम जगत यहीं पर संपन्न होता है। पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने भैया धारा को दीजिए इजाजत। भैया बहनों, राम राम।

अभी आपने सुना किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम जगत धारा सिंह भैया के साथ। प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव की।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कृषि पाठशाला।

0: किसान भाइयों और बहनों, राम राम। आज की कृषि पाठशाला में हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित पिपल जी, जो कि तकनीकी अधिकारी हैं IVRI इज्जत नगर बरेली में। और आज हमारी कृषि पाठशाला का विषय है उच्च रिटर्न के लिए अंतर फसल और एकीकृत कृषि प्रणाली। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारा विषय है उच्च रिटर्न के लिए अंतर फसल और एकीकृत कृषि प्रणाली, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अंतर फसल क्या है।
1: अंतर फसल का कहने का मतलब है कि आप एक ही समय में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को एक पंक्ति में करते हैं, उसको हम अंतर फसल कहते हैं।
0: जी, हमारे किसान साथ चाहते तो हैं कि खेतों से अधिक आमदनी करें, लेकिन अभी जो इंटरक्रॉपिंग की बात आप कर रहे हैं अंतर फसल की, ये किस तरह से कौन कौन सी फसलों को शामिल करके हमारे किसान साथी कर सकते हैं?
1: देखिए, अभी जैसे सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में आप सब्जियों के साथ इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, अंतर फसल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने टमाटर के साथ

0: में आप बैगन लगा सकते हैं,
1: जी
0: फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, मेड़ों पे आप जैसे आपने टमाटर लगा दिया, बैगन लगा दिया, मेड़े डाली हैं तो मेड़ों पे आप चुकंदर लगा सकते हैं और मूली लगा सकते हैं, गाजर लगा सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बड़े लेवल पे कि जैसे कई बार हम बाग की संरचना करते हैं कि हम बाग लगाते हैं, तो
1: जी
0: बाग में हमें फसल मिलने में 4 से 5 साल लगते हैं, तो उस तरह अगर आप बाग लगा

0: तो उस तरह अगर आप बाग लगा रहे हैं तो बाग में 4-5 साल में तैयार होगा, तब आप उसमें भी है ना अंतर फसल लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप हल्दी लगा सकते हैं, अदरक लगा सकते हैं, और जो भी सब्जियां हैं आप बेल वाली सब्जियां हैं आप वो लगा सकते हैं, लौकी है, तोरी है, ये लगा सकते हैं, और सर्दी के मौसम में आप है ना सर्दी की सब्जियां लगा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान साथी हैं वो कोई भी काम करने से पहले, कोई भी फसल करने से पहले ये मन में सोच लेते हैं कि इससे हमें फायदा क्या होगा, इसके लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। तो इसके जो अंतर फसल है, इसके क्या मुख्य फायदे हमारे किसान साथियों को होंगे?
0: देखिए, अंतर फसल लगाने का आपको सबसे बड़ा फायदा तो ये कि जो भूमि में सिंचाई की संभावनाएं कम हैं तो
1: जी
0: वहां पे आप अंतर फसल कर सकते हैं। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि हमने एक फसल लगा ली, वो फसल में हमारे रोग लग गया या उस फसल से हमें अच्छी इनकम नहीं मिल पाई मार्केट में, तो वहीं अगर हम अंतर फसल लगाते हैं तो एक फसल अगर हमारी खराब भी होती है तो दूसरी फसल से हमें वो लाभ मिल जाएगा।
1: बिल्कुल
0: दूसरा, हमारे खरपतवार कम होंगे उसमें।
1: जी
0: तीसरा, एक चीज और है कि आप जब अंतर फसल लगाते हैं तो आपको फसल ऐसी फसल का चयन करना है कि जो एक फसल हो वो गहरी जड़ वाली हो, एक कम गहरी जड़ वाली हो, एक
1: जी
0: ऊंची फसल हो, एक आपकी छोटी हाइट वाली फसल हो, एक आपकी ज्यादा नाइट्रोजन वाली फसल हो तो एक कम नाइट्रोजन वाली फसल हो। तो इससे आपके खेत बैलेंस बना रहेगा, मिट्टी की संरचना अच्छी होगी, आपको रसायन कम यूज करने पड़ेंगे, कम खाद लगानी पड़ेगी, तो एक अच्छा रिटर्न मिलेगा इससे आपको।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है कि हम एक ही फसल की लागत में दो फसलों का उत्पादन ले सकते हैं, तो जहां हमारी लागत में कमी आएगी वहीं हमें उत्पादन अधिक मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: अब बात करते हैं डॉक्टर साहब, एकीकृत कृषि प्रणाली ये क्या है?
0: देखिए, एकीकृत कृषि प्रणाली, इसको समेकित कृषि प्रणाली और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी कहा जाता है।
1: जी
0: इसका मेन उद्देश्य यह है कि हम जितनी भूमि है उस पूरी भूमि का एक तो यूज कर सकें खेती में, और दूसरा हम इसमें किसान को 365 दिन रोजगार दे सकें।
1: जी
0: जैसे कि एकीकृत कृषि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, कई बार ऐसा होता है कि प्राकृतिक आपदा होती है, बहुत ज्यादा सर्दी या बहुत ज्यादा गर्मी या बरसात से फसल खराब हो जाती है, तो फसल तो हम कर ही रहे हैं, उसके अलावा हमें और क्या कार्य करना चाहिए। तो जैसे खेती के अलावा हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग में, हम एकीकृत कृषि प्रणाली में मुर्गी पालन, बतख पालन, बकरी पालन, मोन पालन, मछली पालन, ये सब भी हम कर सकते हैं।
1: जी एकीकृत कृषि प्रणाली में तो इनकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं किसान भाई? किस तरह से, क्या प्लानिंग, क्या योजना बनाएं, किस तरह से इस कार्य को कर सकते हैं?
0: जब आप इस तरह का एक मॉडल बनाते हैं तो उसमें आपको एक छोटा सा एरिया अपने खेती के लिए रखना है, ये किचन गार्डन हो, उसके अलावा उसमें मुर्गी पालन का एक हो। पहले तो एक तालाब का निर्माण करना है आपको,
1: जी
0: और तालाब का जब निर्माण करते हैं तो तालाब के ऊपर ही आपको बकरी पालन का, एक तालाब में मुर्गी पालन का, एक पे बतख पालन का निर्माण करना है। तो जिसमें कि ये जो आपके जानवर हैं, जो जैसे बकरी है, बतख है, आपके पक्षी हैं, मुर्गियां, ये तालाब के ऊपर बाड़े में रहेंगे और नीचे तालाब होगा, और इनका जो भी मलमूत्र होगा वो तालाब में गिरेगा। जब तालाब में गिरेगा तो वो जू प्लैंक्टोन्स और फाइटो प्लैंक्टोन्स बनेंगे, वो हमारे मछलियों का चारा बनते हैं। तो इससे हमें जो नीचे रह रही है मछलियां उनको कुछ हमें भोजन नहीं देना पड़ रहा है, सिर्फ हम ऊपर जो है हमें उन्हें भोजन देना है बाड़े में।
1: अब बात करते हैं, जैसे आपने बताया एकीकृत कृषि के जो प्रकार हैं उसमें हम मछली पालन कर सकते हैं, बत्तख पालन कर सकते हैं और कुक्कुट पालन भी कर सकते हैं। तो इस सब के लिए, जैसे अब किसान साथी तो खेती करते हैं लेकिन इन सब चीज़ की जानकारी उन्हें नहीं है, तो इसके लिए कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करें, किस तरह से वो इस कार्य की शुरुआत करें?
0: देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र IVRI सभी तरह के समय समय पे प्रशिक्षण कराता है, मुर्गी पालन, बतख पालन, बकरी पालन, मोन पालन और महिला समूह, इन सब की समय समय पे प्रशिक्षण होते हैं। सभी प्रशिक्षण निशुल्क होते हैं, तो किसान भाई वहां से आके प्रशिक्षण ले सकते हैं और एक अपना आत्मनिर्भर बन के एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं।
1: जी अब बात करें एकीकृत प्रणाली जो है, कृषि प्रणाली, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या फायदे होंगे, किसान साथियों को कितना लाभ इसका मिल सकता है?
0: देखिए, एकीकृत कृषि प्रणाली अगर आप कर रहे हैं तो आप मछली पालन के साथ में अगर आप बकरी पालन करते हैं
1: जी
0: तो एक तालाब में आप कई तरीके की, विभिन्न तरीके की आप मछलियां का पालन कर सकते हैं, जैसे रोहू, कतला, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ये सब हैं। ऊपर आप बकरियों का बाड़ा बनाते हैं तो वो बाड़े पे भी आप बकरियां रख सकते हैं। तो समय समय पे जब आप मछलियां भी बेचते रहेंगे और इधर पे जब आपकी बकरियां बड़े हो जाएंगे तो आप ये बकरियों को भी सेल करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। उसी तरह बतख

0: पालन में, जैसे अगर बतख पालन के साथ मछली पालन करते हैं तो जो बतख होती है जब पानी में आपके तालाब में चलेगी तो एक प्राकृतिक ऑक्सीजन बनाएगी जिससे आपकी बढ़वार अच्छी होगी और बतख से भी आपका एक अच्छा रेवेन्यू आता रहेगा और जो उसका वेस्ट होगा वो मछलियों का चारा बनता रहेगा, तो मछलियों को हमें चारा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
1: अब बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ किसान साथी जो हैं, खास करके अगर जो सब्जी फसलें नहीं करते हैं, फसल के रूप में गन्ना की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, तो ये भी अंतर फसल के अंतर्गत कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं।
1: इसमें मतलब ये है कि गन्ने के साथ गेहूं की बुवाई कर सकते हैं, तो सहफसली का जो लाभ है वो हमारे किसान साथियों को मिल सकता है।
0: बिल्कुल
1: एकीकृत कृषि प्रणाली के संबंध में और कुछ बातें आप जो आज किसान साथियों को बताना चाहते हैं?
0: इसके साथ में जैसे अभी मैंने आपको बताया मुर्गी पालन, बकरी पालन, बतख पालन, इसके साथ में आप मोन पालन भी कर सकते हैं, मधुमक्खी का पालन भी कर सकते हैं और आप इसके साथ केंचुए खाद का प्रशिक्षण भी ले सकते हैं कि केंचुए खाद जो गोबर है, जैसे आप जब आप एकीकृत कृषि प्रणाली करेंगे तो इसमें आप एक गाय भी रखेंगे या भैंस रखेंगे तो उसके गोबर को भी आप इसमें ना केंचुआ खाद बनाने में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक मशरूम भी आप साथ में रख सकते हैं कि आप है ना मशरूम की खेती भी कर सकते हैं, तो अगर इस तरह से आप एक करते हैं तो ये आपकी आय को निश्चित रूप से बढ़ाएगा ही।
1: अच्छा, आपने बताया कि मशरूम का उत्पादन भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं, तो मशरूम उत्पादन का कार्य अगर कोई किसान साथी बहुत छोटे स्तर पर करना चाहता है तो कैसे शुरुआत कर सकता है?
0: सब प्रथम तो किसान साथी को इसके लिए प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, प्रशिक्षण आप कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं, उसके बाद आप मशरूम की खेती आप कर सकते हैं।
1: और मौन पालन की बात की, इस संबंध में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है क्या?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्था है मौन पालन की भी।
1: अच्छा, तो जो हमारे किसान साथी हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र पर जानकारी लेते रहें कि किस समय कौन सा प्रशिक्षण शुरू हो रहा है और उस प्रशिक्षण में भाग लेंगे, तो इसके लिए क्या मतलब अर्हता होती है, कोई भाग ले सकता है प्रशिक्षण?
0: कोई भी किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र में आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और रजिस्ट्रेशन के पश्चात किसान भाई को फोन कॉल पे बताया जाता है कि आपकी ट्रेनिंग होनी है, आपको आना है और ट्रेनिंग अटेंड करनी है,
1: जी,
0: इसका कोई शुल्क नहीं है।
1: कोई शुल्क नहीं, निशुल्क
0: जी
1: प्रशिक्षण की व्यवस्था है, तो इसमें भाग ले सकते हैं, तो एकीकृत कृषि प्रणाली में अच्छा रिटर्न देने के लिए अपना सकते हैं।
0: इसमें आप ये कर सकते हैं जैसे आपने जो तालाब बनाए, तालाब की मेड़ों पे आप बड़े फलदार वृक्ष लगा सकते हैं,
1: जी,
0: जैसे या केला लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं और उसके बीच में आप जो हमारे मौसमी सब्जियां होती हैं वो लगा सकते हैं। इसके अलावा आप है ना जब इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे, एकीकृत कृषि प्रणाली, तो चारे की व्यवस्था के लिए आप हरे चारे के लिए आप नेपियर घास लगा सकते हैं।
1: जी
0: नेपियर घास की कई विभिन्न प्रजातियां हैं, CO4, CO5, सुपर नेपियर, ये सब आप लगा सकते हैं।
1: तो आपने बताया डॉक्टर साहब कि जैसे हम जो तालाब बनाते हैं उसके चारों तरफ फलदार पौधे भी लगा सकते हैं, उनसे भी एक अतिरिक्त आमदनी का साधन बना सकते हैं उसको उस रूप में, और आपने बताया कि चारे के रूप में हम नेपियर घास को भी लगा सकते हैं। बात ये करते हैं कि जैसे एक किसान है और वो किस तरह से इसकी शुरुआत कर सकता है, कितना एरिया इस काम के लिए उसको चाहिए और कैसे वो करे, कौन सी तकनीक अपनाए उसमें?
0: देखिए किसान को अगर सबसे पहले तो सर्वप्रथम कि उसको एक एरिया का चयन करे, उसके अलावा जिस तरह अगर उसको मुर्गी पालन के साथ करना है या बतख पालन के साथ तो छोटे छोटे तालाब बनवाए, उन तालाब के ऊपर उसे बाड़े बनवाने,
1: जी
0: अगर 2 बीघे 3 बीघे का तालाब बनवाते हैं उसके ऊपर एक ऐसा बाड़ा हो जिसमें वो अगर बकरियां रखना चाहता है तो 10 से 15 बकरियां रख सके, उस
1: जी
0: तरह का उसे चयन करना पड़ेगा। और उसी उसी हिसाब से 2 बीघे या 3 बीघे का तालाब है तो उसके लिए एक पशु रख सकते हैं कि जो जिसका गोबर का निकास सीधे तालाब में हो, तो इससे जू प्लैंक्टोन्स फाइटो प्लैंक्टोन्स बनते रहें।
1: जी मतलब ये है कि उसके साथ ही साथ उसको ध्यान देना होगा, जागरूक रहना होगा, और अगर एकीकृत कृषि प्रणाली अपना रहे हैं तो आपको पूरा एक समावेशी तरीके से कृषि करनी होगी, उसमें आपको पशुपालन भी करना है और आप अगर मछली पालन कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि किसान साथी ये तो समझ रहे होंगे कि हम तालाब बनाकर मछली पालन कर लेते हैं, तो मछलियों का रखरखाव कैसे करें, और मछलियों का अब सबसे पहले आती है कि छोटी मछलियां कहाँ से प्राप्त करें, तो इसको वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?
0: देखिए मछलियों का जब आप तालाब का निर्माण करते हैं उसके बाद में आपको फिंगर साइज की मछली लेनी है और मछली कोई सरकारी संस्थान से ही आप लें कि आप जो लेना चाह रहे हैं रोहू, कतला, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, इस तरह की मछलियां लें और इनकी बढ़वार 1 साल में बहुत अच्छी बढ़वार हो जाती है मछलियों की। दूसरा ये है कि मछलियों को मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि समय

0: समय पे मछलियों के तालाब के पानी का पीएच चेक करते रहें, तालाब ज्यादा गंदा ना हो, समय समय पे चूना डालते रहें उसमें, और मछलियों की देखरेख के लिए दाना भी दें, जैसे सरसों की खल दे सकते हैं, चोकर दे सकते हैं, इस तरह का आप दाना भी दे सकते हैं मछलियों को।
1: अच्छा, बात करें तो जो मछलियों का जो तालाब है डॉक्टर साहब, उसको मतलब बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपने बहुत अच्छी बात कही कि पीएच का जरूर ध्यान रखें, तो तालाब मतलब किस तरह की गहराई हो, किस तरह की लंबाई और चौड़ाई हो?
0: जब आप तालाब का निर्माण करें तो तालाब जो है वो आपका ओवल शेप में होना चाहिए, कढ़ाई के शेप में होना चाहिए तालाब आपका।
1: जी
0: दूसरा, जब तालाब बनाते हैं तो कोशिश ये करें कि उसमें रोहू, कतला, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, यही मछली ज्यादा हो। कॉमन कार्प जैसी मछलियां हैं उनको ना आप रखें, कोई क्योंकि कुछ मछलियां ऐसी होती हैं कि जो तालाब की मिट्टी भी आपकी खोदती आती है, तो जिससे कि हर 3-4 साल बाद तालाब आपका रिन्यूवेशन मांगने लगता है।
1: बिल्कुल। अब जैसे बात आती है कि जैसे बारिश होती है, बारिश का पानी, अब अगर नज़दीक में ही खेती हो रही है और उसमें हम कई तरीके के रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, और ऐसे समय में जब बारिश होती है तो तालाब में क्या ध्यान रखने की जरूरत है? क्योंकि बरसात का पानी तालाब में आए, किस तरह से अपनी मछलियों को बचा सकते हैं?
0: देखिए, बरसात के पानी तालाब में आएगा उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन रासायनिक पानी कोई तालाब में आ रहा है तो उससे आपकी मछलियां मर सकती हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, एक ये काफी जब सर्दी होती है, धूप नहीं निकल रही है, उस मौसम में भी आपको मछलियों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन आपकी कम हो जाती है और कई बार नाइट्रोजन बढ़ जाती है, तो जिससे कि हम देखते हैं कि तालाब में एकदम मछलियां ऊपर दिखने लगती हैं और फिर मछलियां एकदम मरने लगती हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको कि ना तालाब में पानी प्रॉपर रहे और पानी चलता रहे तालाब में
1: खास करके ये जो जाड़े का
0: जाड़े के
1: मौसम
0: दिन।
1: है, तो इसमें इस समय क्या ध्यान रखें मछली पालक जो अपने तालाब बनाए हुए हैं खेतों में?
0: मछली पालक ये सबसे ध्यान रखें कि हरा चारा ज्यादा ना डालें, इस टाइम कम थोड़ा कम चारा डालें, चोकर दें, तालाब में समय समय पे चूना डालते रहें, और इसके अलावा कुछ ना प्रोबायोटिक्स आते हैं वो प्रोबायोटिक्स डालते रहें, जैसे कि तालाब का पानी साफ रहे। दूसरा, पानी में फिटकरी डालते रहें कि पानी एकदम साफ बना रहे, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इस तरह से आप एक अच्छे मछली पालक बन सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारा विषय उच्च रिटर्न के लिए अंतर फसल और एकीकृत कृषि प्रणाली है, इस संबंध में चलते चलते किसान साथियों को क्या सलाह देना चाहते हैं, किस तरह से वो अपना कार्य करें और अपनी तरक्की करें?
0: किसान भाई, एकीकृत कृषि प्रणाली बिल्कुल अपनाएं, क्योंकि खेती के अलावा दूसरे कार्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकीकृत कृषि प्रणाली हमको 365 दिन का रोजगार देती है। अगर हम खेती करते हैं तो बीच में हमें कभी खेती में काम रहेगा नहीं रहेगा, कभी हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन एकीकृत कृषि प्रणाली से हम अपनी आय को दुगनी करने में सक्षम होंगे।
1: डॉक्टर साहब, आप स्टूडियोज में उपस्थित हुए और आपने उच्च रिटर्न के लिए अंतर फसल और एकीकृत कृषि प्रणाली पर हमारे किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: कृषि पाठशाला, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, आइए कुछ खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचना सुनते हैं। एक लड़की पूजा, पुत्री हरिकिशन, निवासी ग्राम नगरिया सोवरनी, थाना शेरगढ़, जिला बरेली। इनकी उम्र 19 वर्ष, लंबाई 5 फीट 4 इंच, सामान्य शरीर, रंग सांवला है। ये 26 फरवरी 2026 से लापता हैं और इनके विषय में कोई सूचना हो तो थाना प्रभारी शेरगढ़ बरेली को सूचित कर सकते हैं। सूचना एक बार और सुन लीजिए। एक लड़की पूजा, पुत्री हरिकिशन, निवासी ग्राम नगरिया सोवरनी, थाना शेरगढ़, जिला बरेली। इनकी उम्र 19 वर्ष, लंबाई 5 फीट 4 इंच, सामान्य शरीर, रंग सांवला है। ये 26 जनवरी 2026 से लापता हैं। इनके विषय में अगर कोई सूचना है तो थाना प्रभारी शेरगढ़ बरेली को सूचित कर सकते हैं। एक सूचना और सुनिए। एक लड़का सुमित, पुत्र

सियाराम, निवासी बलरऊ आजमपुर, थाना सीबीगंज बरेली। इनकी उम्र 19 वर्ष, लंबाई 5 फीट 5 इंच, एक हरा मजबूत जिस्म और रंग सांवला है। यदि इनके विषय में आपके पास कोई सूचना है तो थाना प्रभारी सीबीगंज जिला बरेली को सूचित कर सकते हैं। सूचना एक बार और सुन लीजिए। एक लड़का सुमित पुत्र सियाराम, निवासी बलरऊ आजमपुर, थाना सीबीगंज बरेली। इनकी उम्र 19 वर्ष, लंबाई 5 फीट 5 इंच, एक हरा मजबूत जिस्म और रंग सांवला है। इनके विषय में अगर आपके पास कोई सूचना है तो थाना प्रभारी सीबीगंज जिला बरेली को सूचित कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रदेश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मथुरा में जन्माष्टमी की विशेष धूम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, डबल इंजन सरकार ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मथुरा वृंदावन के विकास पर कर रही है काम। और प्रदेश के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित, मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत और बचाव तंत्र मुस्तैद। 17,544 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा

0: कोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है और यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि EOS-05 भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग strategic data for our country.
0: प्रदेश भर में आज श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजधानी लखनऊ में चौक स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर में श्री द्वारकाधीश के दर्शन और पूजन कर देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उधर मथुरा सहित ब्रजमंडल के प्रमुख मंदिरों में कृष्ण भक्तों का तांता लगा हुआ है। जन्माष्टमी पर पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवन किया जा रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण का 5353वां जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कान्हा की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं और श्री कृष्ण भक्ति में लीन है। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा श्री की जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर, वृंदावन की स्थित विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, प्रिय कांजू मंदिर, चंद्रदेव मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्रम भी जारी है। इस बीच आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किया और कृष्ण भक्तों का स्वागत कर रहे उन्हें शुभकामनाएं दी। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: वाराणसी कृष्ण भक्ति और उल्लास के रंगों में रंग गई है। काशी विश्वनाथ धाम सहित शहर के कई मंदिरों में जन्माष्टमी के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर काशी शुक्रवार को भक्ति और उल्लास के रंग में रंगी नजर आ रही है। मंदिरों में विशेष सजावट, पूजन अर्चन और भजन कीर्तन का दौर शुरू हो चुका है। मध्यरात्रि 12 बजे बाल गोपाल के प्रकट के साथ शंख घड़ियाल और घंटियों की गूंज के बीच भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके बाद बाल गोपाल का श्रृंगार कर आरती और प्रसाद वितरण होगा। काशी के घाटों और प्रमुख मंदिरों में जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। शहर के काशी विश्वनाथ मंदिर, इस्कॉन मंदिर, माखनलाल मंदिर, आदि केशव मंदिर समेत कई मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इस बार तिथि और नक्षत्र के विशेष संयोग के कारण गृहस्थ और वैष्णव परंपरा के अनुयायी एक ही दिन जन्माष्टमी मना रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।
0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर प्रदेश भर के ग्रामीण और शहरी इलाकों में उल्लास और आस्था का माहौल है। जगह जगह श्री कृष्ण मंदिरों को भव्यता के साथ सजाया गया है। झांकियों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में भगवान श्रीकृष्ण का दर्शन और पूजन किया। बाद में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हजारों साल पहले भगवान श्रीकृष्ण का जन्म इस पावन धरती पर हुआ था। उनकी शिक्षाएं और संदेश आज भी मानवता के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं। श्री योगी ने धार्मिक महत्व की जगहों को पुनर्स्थापित और विकसित करने के सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के क्रम में मथुरा वृंदावन के विकास पर निरंतर काम कर रही है।
5: ब्रज तीर्थ विकास परिषद इस ब्रज भूमि के आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसी भव्य स्वरूप यहाँ के मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के देने का कार्य कर रही है। और हमारा प्रयास है कि मथुरा वृंदावन में

0: वही भव्य परिसर तैयार हो जैसे अयोध्या में और जैसे काशी में हुआ। ये पर्व और त्योहार केवल एक आस्था ही नहीं, ये हमारी आर्थिकी के आधार भी।
1: मुख्यमंत्री श्री योगी लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट परिवार की तरफ से आयोजित सांस्कृतिक धरोहर के उत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के संदेश का जिक्र करते हुए सभी से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और विकसित भारत बनाने की दिशा में योगदान करने का आह्वान किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने आज ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मंदिर का निरीक्षण और व्यवस्थाओं को समझने के बाद जल्द ही रणनीति तैयार की जाएगी और उसके क्रियान्वयन का असर जल्द दिखाई देने लगेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के नव निर्वाचित सीईओ पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंच चुके हैं और उनके पदभार ग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ट्रस्ट के महासचिव महंत गोविंद देवगिरी ने बताया कि सीईओ के साथ बैठक के बाद पदभार ग्रहण करने की तारीख तय होगी। वहीं रामलला की आरती व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शनिवार से श्रृंगार आरती के दौरान रामलला के समक्ष पदगान की नई परंपरा शुरू होगी। महंत गोविंद देवगिरी के मुताबिक सीईओ मंदिर की सुरक्षा समेत ट्रस्ट की सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षक दिवस पर कल गोरखपुर में प्रदेश के 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राज्य स्तरीय इन पुरस्कारों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के 61 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 20 शिक्षकों का चयन किया गया है। सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज तहसील में आज स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 7 परिवारों को सहायता राशि के चेक सौंपे। इस अवसर पर श्री पाल ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके हित के लिए कई योजनाएं चला रही है। राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से अधिक लोगों को बाढ़ शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। राहत से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अब तक 5.5 लाख से अधिक क्लोरीन टैबलेट का वितरण किया जा चुका है। राहत और बचाव अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 1634 बाढ़ चौकियां, 1697 नाव, मोटरबोट और 1000 से अधिक मेडिकल टीमें सक्रिय हैं और अभी तक कोई जन या पशु हानि की खबर नहीं है। इस बीच मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रदेश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मथुरा में जन्माष्टमी की विशेष धूम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा डबल इंजन सरकार ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मथुरा वृंदावन के विकास पर कर रही है काम। और प्रदेश के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित, मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत और बचाव तंत्र मुस्तैद, 17,544 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
3: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पे। आइए सुनते हैं रेडियो हेल्पलाइन। आज का विषय है गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक

0: इलाज, शंकाएं एवं समाधान। विशेषज्ञ हैं यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
2: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
3: पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में गुर्दे की पथरी, मूत्र रोग और निसंतान दंपतियों के संपूर्ण इलाज का एकमात्र स्थान
2: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
3: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बरेली शहर का एक ऐसा अस्पताल जहां उपलब्ध है
4: मर्दाना कमजोरी,
3: महिलाओं के मूत्र रोगों,
4: गुर्दे की पथरी,
2: गदूद और बच्चों की पेशाब संबंधी समस्याओं के समाधान बहुत कम खर्च में,
4: उच्च कोटि की विदेशी मशीनों से सुसज्ज,
2: यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट लिथोट्रिप्सी विशेषज्ञ द्वारा संचालित
4: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
3: हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9837057929। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581253-1234।
5: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मुकेश कुमार पांडे का नमस्कार। और मेरे साथ आज स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
6: सारे श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार।
5: डॉक्टर साहब, नमस्कार के साथ ही आज बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हम आपसे करने जा रहे हैं, क्योंकि हर बार आप बताते हैं कि भाई गुर्दे में अगर पथरी है तो उसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, और ऑपरेशन भी कई तरीकों से करा जाता है। अब तो बहुत एडवांसमेंट हो गया, कई आधुनिक तरीके आ गए हैं, लेकिन आज कुछ अलग ही बात हम आपसे करना चाह रहे हैं।
6: अच्छा, बताइए
5: अगर आपकी अनुमति हो तो।
6: जी बताइए
5: डॉक्टर साहब, आज कुछ ऐसा तरीका बताइए जबकि गुर्दे में पथरी हो और उसका ऑपरेशन ही न करना पड़े, ऐसे ही ठीक हो जाए, क्या ऐसी भी कुछ संभावना है, कुछ ऐसा मेडिकल साइंस में है संभव?
6: आज आपने बीच का प्रश्न पूछा। पहले एक तरफ हम बताते आए हैं कि गुर्दे की पथरी ना बने
5: जी,
6: जिस तरह से उसको जो है आपको ये परेशानी ही ना हो
5: जी, जी।
6: फिर अगर बन रही है तो किस तरह से आधुनिक विधि से हम उसको लेजर से, किरणों द्वारा भी इलाज कर सकते हैं
5: जी, जी।
6: तो ये जो बीच वाला जो इश्यू है कि जी बनी है
5: जी
6: और उसका इलाज भी जो है वो बिना ऑपरेशन के या लेजर टेक्निक से किया जाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है
5: जी।
6: इसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि कौन सी पथरियां जो हैं
5: जी
6: वो इस लिस्ट में आती हैं जिसका इलाज जो है वो बिना ऑपरेशन के हो सकता है।
5: अच्छा।
6: कुछ ऐसी पथरियां हैं जो साइज के ऊपर हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि पेशाब की नली जो है 3 से 4 mm की होती है।
5: बिल्कुल।
6: इससे छोटी पथरी होगी
5: जी
6: तो उसको हम दवाइयों से या किसी भी विधि से उसको उसके रास्ते से निकाल सकते हैं।
5: अच्छा।
6: लेकिन अगर वो साइज उससे बड़ा हो गया तो उसमें जो है वो ऑपरेशन या उसको छोटा करना जरूरी हो जाता है
5: जी, जी।
6: तो इसमें मरीज को या पेशेंट को ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जी उसको सिम्टम हो या ना हो अपना बराबर चेकअप कराता रहे
5: जी,
6: और अगर उसको पथरी हो रही है तो उसको जल्दी से जल्दी इलाज के लिए आ जाए।
5: चेकअप कराने से फायदा डॉक्टर साहब जैसा आप बता रहे हैं ये होगा कि पता लग जाएगा कितनी बड़ी पथरी है, उसका साइज कितना है
6: जी,
5: और अगर शुरुआती अवस्था में ही पता लग जाता है तो निश्चित ही है कि फिर जो आप बता रहे हैं
6: वो हो सकता है,
5: वो संभव।
6: क्योंकि ऐसा है कि 3 से 4 mm से पथरी या उससे छोटी पथरी हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें कोई परेशानी नहीं होती
5: जी।
6: तो मरीज वो कहता है मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, मैं किस चीज का इलाज कराऊं या क्यों अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करवाऊं। तो इसमें वो जब बड़ी हो जाती है और परेशान रहती है तब तक वो इतनी बड़ी हो जाती है कि जी उसका दवाइयों से या किसी भी नॉन ऑपरेटिव विधि से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें छोटी पथरियां का इलाज दवाइयों से हो सकता है
5: जी।
6: और मैं तो कहूंगा कि 70-80% पथरियां जो हैं वो इस विधि से निकाली जा सकती हैं।
5: अच्छा।
6: अगर जो है वो टाइम से आ जाएं
5: जी, यानी समय पर पहचान
6: जी
5: और समय से इलाज की शुरुआत अगर हो जाती है तो ये बिल्कुल संभव है कि बिना किसी ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी निकाली जा सकती है।
6: और आप ये समझिए कि पहले जब हम आए थे
5: जी
6: तो ऑपरेशन की क्या उसमें तो बड़े बड़े ऑपरेशन और चीरे वाले ऑपरेशन करने पड़ते थे। पथरी का साइज है 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm।
5: डॉक्टर साहब आपने तो पत्थर निकाले हैं लोगों के जिस्म से और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम है
6: जी। वो 85 mm की पथरी एक बच्चे
5: 85 mm
6: जी 85 mm की पथरी एक बच्चे में निकालना, तो उस समय इतनी बड़ी थी जो जागरूकता कम थी।
5: बिल्कुल।
6: इसके बाद में धीरे धीरे अब पथरी का साइज कम होना शुरू हो गया है जब वो हमारे पास आते हैं, नहीं तो पेशेंट जो है जब डॉक्टर के पास में आता है तो साइज आमतौर पे बड़े ही होते थे
5: जी, जी।
6: अब वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि 50-50% दवाइयों

0: से हो सकती है, 50% की ऑपरेशन की या ऐसी आधुनिकतम विधि से निकालने की जरूरत पड़ती है।
1: जी, आम धारणा डॉक्टर साहब ये है कि अगर गुर्दे में किसी को पथरी है तो या तो उसे दर्द होगा
0: जी
1: या पेशाब में कोई समस्या होगी,
0: जी
1: लेकिन एक तरफ आप ये भी बताते हैं कि ये जरूरी नहीं है हर बार गुर्दे में दर्द हो, गुर्दे की साइड में और पेशाब में समस्या हो,
0: जी
1: पथरी फिर भी हो सकती है,
0: बिल्कुल हो सकती है।
1: वो कैसे डॉक्टर साहब?
0: देखिए ऐसा है कि गुर्दे के तीन हिस्से होते हैं,
1: जी
0: उन हिस्सों में छोटी सी पथरी बैठी हुई है और कोई कोई रुकावट नहीं कर रही है तो कोई परेशानी नहीं होती है,
1: कोई
0: पेशाब
1: दर्द
0: का
1: नहीं
0: जो
1: होगा
0: फ्लो होता है आराम से होता रहता है
1: जी।
0: और कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर वो हटके पेशाब की या गुर्दे की नली में आके फंस जाए
1: जी
0: तो जैसे होता है ना कि नाली चोक हो जाती है तो
1: जी जी
0: पानी आसपास फैल जाता है, अगर कम परेशानी है ये छोटी है तो उसके साइड से निकल जाता है, लेकिन
1: जी
0: जब पथरी रास्ते में फंस जाती है तो फिर परेशानी शुरू हो जाती है।
1: अच्छा, यहाँ ये बात भी करना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि चूंकि पेशाब तंत्र की जो संरचना है उसके बारे में आपने हमारे श्रोताओं को कई बार बताया
0: जी
1: है
0: जी
1: कि पुरुषों की अलग होती है, महिलाओं की अलग होती है, बच्चों की अलग होती है, तो जो पथरी का साइज आप बता रहे हैं जो बिना ऑपरेशन के निकाली जा सकती है,
0: जी
1: महिलाओं में क्या साइज है मिनिमम जो कि बिना ऑपरेशन के निकल सकती है पथरी?
0: देखिए ऐसा है कि साइज तो बराबर का ही होता है महिलाओं
1: अच्छा
0: में और
1: अच्छा
0: पुरुषों में,
1: जी
0: परेशानी क्या होती है कि जी कुछ हार्मोन्स की वजह से
1: जी
0: और कुछ अन्य वजह से परेशानी आती है। अब जैसे कि अगर जो है फीमेल जो है प्रेग्नेंट है
1: अच्छा
0: तो बच्चे का सर है या शरीर का हिस्सा है वो पेशाब की नली पे दबाव रखता है, तो ऐसे प्रेगनेंसी में जो है वो छोटी पथरियों में से भी जो है महिलाओं को परेशानी होने लगती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जी पथरी और उस समय जो है हम कोई ना तो एच से कर पाते हैं
1: जी
0: ना हम उसका कोई आधुनिकतम ऑपरेशन करते हैं,
1: जी
0: तो उसमें महिलाओं को जब तक कि जी बच्चा हो नहीं जाता तब तक जो है वो परेशानी झेलनी पड़ती है, कई बार तो अबॉर्शन भी करवाना पड़ता है या
1: ओहो
0: टर्मिनेट करवानी पड़ती है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है कि जी जो है वो हर पुरुष और महिलाओं के साथ में परेशानी का सबब अलग अलग हो सकता है
1: जी
0: और इसका इलाज जरूरी है।
1: बिल्कुल, महिलाओं की बात आपने की है और बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर साहब कि पथरी की वजह से कई बार एबॉर्शन तक कराना पड़ जाता है,
0: जी
1: तो अगर कोई महिला कोई युगल जो है वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं
0: जी
1: तो अल्ट्रासाउंड पहले कराने की जो बात है वो
0: जी
1: काफी हद तक इस मामले में भी मदद कर सकती
0: हाँ,
1: है।
0: इसमें मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जी अल्ट्रासाउंड दो तरह की शरीर में पथरी होती है, एक
1: जी
0: गुर्दे में होती है और एक गॉल ब्लैडर में पथरी होती
1: जी
0: है,
1: जी
0: और दोनों की ही पथरी अगर जो है वो अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हुए तो ऑपरेशन बहुत ही लिमिटेड उससे हो सकता है, हमें दवाई से ही कंट्रोल करना पड़ता है,
1: बिल्कुल
0: और वो फिर अगर शुरुआत में ही हो जाए तो वो अगले 6 महीने 7 महीने तक जो है वो फिर महिला को जो है ये दर्द या इन्फेक्शन वगैरह बर्दाश्त करना पड़ता है, एंटीबायोटिक खानी पड़ती है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये परेशानी का सबब बन सकता है,
1: जी इसलिए पहले एक जांच हो जाए
0: तो उससे काफी ज्यादा चीजें जो है
1: मदद
0: वो
1: मिल
0: मदद
1: जाएगी
0: मिल जाती है।
1: जी। बच्चों के विषय में डॉक्टर साहब हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है
0: जी
1: बच्चे के शरीर से पत्थर निकाला था, तो बच्चों में जो पथरी की संभावनाएं हैं या जो बच्चों में रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मरीज आ रहे हैं वो किस शिद्दत से आ रहे हैं और वहां क्यों बढ़ रही है पथरी?
0: कि पहले जब हम शुरुआत में हम प्रैक्टिस में आए थे या देखते थे या पुराने भी रिकॉर्ड देखते थे,
1: जी
0: 15, 16, 20 साल से पहले जो है पथरियां बहुत ही कम होती
1: बहुत कम
0: थी,
1: होती थी जी
0: मतलब होती ही नहीं थी, मान
1: जी
0: लीजिए कि
1: जी
0: जी यार बच्चे में है तो हम और परेशानी सोचते थे, पथरी सोचते ही नहीं थे।
1: जी
0: अब आपको आश्चर्य हो रहा कि 2-2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 8 साल के तो से 10 साल के तो बहुत ही ज्यादा
1: जी
0: पथरियों से इतने ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं कि जी एक वो अलग विभाग भी बन जा रहा है। उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है वो हमारा खान पान,
1: खान पान की वजह से ये पथरियां होती हैं
0: 90% जो है वो फास्ट फूड के शौकीन होंगे,
1: जी।
0: कोल्ड ड्रिंक पी रहे होंगे,
1: ओहो
0: एक्टिविटी उनकी कोई होगी नहीं,
1: जी
0: एक्सरसाइज शारीरिक एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, और इससे गुर्दे की डैमेज वही बढ़ती हुई स्टेज है जिस समय की गुर्दा डेवलप हो रहा होता है
1: जी
0: और परेशानी का सबब बनता है। बच्चों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि जी उनका खान पान माँ बाप को भी रखना है, बच्चों को भी ध्यान देना
1: बिल्कुल
0: है, और उसमें जो है गुर्दे की पथरी की जो इंसिडेंस है या जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
1: बहुत ज्यादा बढ़ गई और बढ़ने की वजह आपने बताई दी है
0: जी
1: डॉक्टर साहब। अब चूंकि बात हम कर रहे हैं गुर्दे की पथरी का इलाज, वो भी बिना ऑपरेशन के, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारे श्रोता भी ये सोचते हैं कि जब भी डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब तो सर्जन है तो सर्जरी की बात बताएंगे, लेकिन आज तो विषय बिल्कुल अलग है डॉक्टर साहब, सर्जरी की बात ही नहीं करनी है आज, हमें बताना है अपने श्रोताओं को कि गुर्दे की पथरी बिना ऑपरेशन

0: ये कैसे निकाली जा सकती है।
1: जी
0: आपने बताया कि इसका साइज बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो पथरी बनने के, या ये कहें जिस चीज से पथरी बनती है, जो सॉल्ट होता है, क्या उसका भी कोई महत्व होता है?
1: वो तो है ही। इसमें जैसे भी मैंने बताया, बच्चों में जो है वो फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक की वजह से बन रही है।
0: जी
1: बाकी और चीजें, किसी को यूरिक एसिड से पथरियां बन रही हैं,
0: अच्छा
1: किसी को कैल्शियम ऑक्सलेट से बढ़ रही हैं।
0: जी
1: तो खान पान तो जो है वो संतुलित और जिस तरह से खाना है वो सबके लिए है।
0: बिल्कुल
1: लेकिन जो पथरियां बिना ऑपरेशन के निकालनी है तो उसके लिए साइज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: जी
1: दूसरी चीज, जल्दी से पता चले।
0: बिल्कुल
1: कई बार छोटी पथरी गुर्दे के उस हिस्से में पहुंची हुई होती है जहां कोई परेशानी नहीं होती है, रुकावट नहीं होती है,
0: जी जी
1: वहां पे हम उसको किरणों द्वारा तोड़ सकते हैं, या फिर हम एक्सरसाइज से बता सकते हैं कि जी वो पेशाब के रास्ते निकल जाए।
0: एक्सरसाइज से भी डॉक्टर साहब ऐसा संभव है क्या?
1: एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण यह होता है कि जो जो चीज बैठी हुई है उसको हिलाना, जैसे
0: अच्छा
1: कि आप चावल फटकते हैं या चीजें आप सफाई के लिए, तो वो अपनी जगह से हिलती है
0: अच्छा
1: और उसके बाद में वो पानी पिया और बाकी जो है कुछ मेडिसिन्स दी तो उससे निकल सकती है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि हमें कोई समस्या तो है नहीं,
1: जी
0: न कभी दर्द होता है और ना
1: जी
0: हमें कोई और समस्या है, तो हम क्यों जांच कराएं, जबकि जांच कराने पे कुछ और ही तस्वीर सामने आती है। तो ऐसी भी क्या परिस्थिति होती है गुर्दे में पथरी पड़ी रहती है और लोगों को पता भी नहीं होता?
1: बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके दोनों गुर्दों में बड़ी बड़ी पथरियां हो जाती
0: दोनों
1: हैं,
0: गुर्दों में
1: दोनों गुर्दे फेल हो जाते हैं।
0: जी
1: और जब मेरे को पहली बार दिखाया, हमने टेस्ट करवाया, मेरे कहा तुम्हारे दोनों गुर्दे फेल हैं और तुम्हें दोनों गुर्दे निकलवा के और उसके बाद में ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा।
0: गुर्दे फेल हो जाते हैं
1: जी
0: डॉक्टर साहब।
1: बिल्कुल खत्म, उसमें कहीं कुछ नहीं हो सकता। तब वो कहते हैं डॉक्टर, हम तो पहली बार अस्पताल में या किसी डॉक्टर को दिखाने आए हैं, इससे पहले हमें कोई समस्या ही नहीं थी और उनके दोनों गुर्दे फेल हैं और उसका कोई इलाज नहीं। ऑपरेशन से भी वो पथरी निकालने के बाद वो गुर्दे काम नहीं करेंगे।
0: अच्छा फेल होने की जो बात है डॉक्टर साहब, गुर्दा फेल किस परिस्थिति को, एक किस स्थिति को कहेंगे?
1: नहीं,
0: क्या होता है शरीर में ऐसा जब गुर्दे
1: उसमें
0: फेल होते हैं?
1: जब ऐसे ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन जो है, दो चीजें होती हैं, वो
0: जी
1: जब बढ़ जाती हैं
0: अच्छा
1: और इतनी बढ़ जाती हैं कि जी वो सफाई या डायलिसिस के बिना नहीं निकाली जा सकती,
0: जी
1: तो हम कहते हैं कि पेशेंट का या मरीज का गुर्दा फेल हो गया।
0: और ये दोनों गुर्दों के साथ एक साथ हो
1: जी
0: सकता है?
1: डायलिसिस की जरूरत तभी पड़ती है जब दोनों गुर्दे फेल एक साथ हो जाए।
0: जी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर शुरुआत में ही हम जागरूक हो जाएं और एक छोटी सी जांच करा के ये पता कर लें कहीं
1: जी
0: गुर्दे में पथरी तो नहीं है, तो शायद इससे निजात मिल जाए। डॉक्टर साहब आप ये भी बताते हैं कि जो हमारा ये क्षेत्र है रुहेलखंड का क्षेत्र, ये स्टोन बेल्ट है,
1: जी जी
0: इसके पीछे क्या वजह है, स्टोन बेल्ट क्यों कहा जाता है, सबसे ज्यादा पथरी यही क्यों होती है लोगों को?
1: देखिए पथरी का जो आराम कारण जो है वो जो मैं कई बार बता चुका
0: जी
1: हूँ,
0: जी
1: उसमें ये है कि पानी की मात्रा भी कम है और कुछ उसमें जो है जो
0: कंटेंट चाहिए
1: कंटेंट जो है या उसमें जो अंदर डिजॉल्व है उससे होती है। दूसरी चीज, 9 से 10 महीने यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ती
0: जी
1: है,
0: जी
1: फिर जो आदमी बाहर काम पे जाता है तो हर समय पानी की बोतल लेके तो चलता नहीं है,
0: बिल्कुल
1: तो उसमें क्या है कि जी पता चला सुबह 8 बजे निकला, उसने अगला पानी जो है वो शाम के 4-5 बजे पिया,
0: जी
1: उससे जो है वो जैसे किसी गिलास में आपने चीनी डाली, शुरू में तो घुल जाती है
0: जी
1: लेकिन आप डालते चले जाएं तो फिर वो बैठना शुरू हो जाती है।
0: बिल्कुल
1: उसी तरह से जो है अंदर के जो शरीर की गंदगी है, पानी की कमी होने से वो बैठना शुरू हो जाती है गुर्दे के अंदर
0: जी
1: और वही फिर पथरी का आकार ले लेती है।
0: जी जी डॉक्टर साहब यहाँ ये भी जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ जिनको पथरी की समस्या हो चुकी है और वो लेजर से या फिर किरणों से किसी तरह इलाज करा चुके हैं, उन्हें दोबारा पथरी बनने की संभावना भी बढ़ जाती है ऐसा
1: जी
0: आपने बताया है। क्या उन लोगों में जो दोबारा पथरियां बनती हैं उनको बिना ऑपरेशन के निकाला जा सकता है?
1: पथरी ये नहीं देखती कि मैं पहली बार बनी, दूसरी बार बनी या तीसरी बार बनी,
0: जी
1: वो तो साइज के ऊपर है। दूसरी
0: अच्छा
1: बार बनी और वो जागरूक है, उसने शुरुआत में ही पकड़ लिया, उसका तो इलाज हो सकता है उसका।
0: जी क्या बताना चाहेंगे उन श्रोताओं को जो पथरी की समस्या से पहले जूझ चुके हैं, उन्हें क्या खास बातें ध्यान रखनी होंगी?
1: देखिए उनके लिए तो हम सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर उनकी पथरी निकली है और उनके पास है तो उसकी स्टोन एनालिसिस जरूर कराएं कि किस
0: अच्छा
1: चीज से बनी है। दूसरी चीज जो सामान्य सभी के लिए है कि खान पान सही रखें, पानी ज्यादा पिए
0: जी
1: और इस तरह की चीजें ना खाएं जिससे जो है पथरी की बनने की संभावना ज्यादा है,
0: जी और
1: और
0: उसके
1: अपना
0: अलावा
1: रेगुलर अपना चेकअप
0: चेकअप,
1: करवाते हैं।
0: बिल्कुल एक जांच जो आपने बताई
1: बिल्कुल
0: अल्ट्रासाउंड की वो बहुत मददगार हो
1: जी
0: सकती है। यूरिक एसिड की पथरी की बात आपने की
1: जी
0: डॉक्टर साहब, और यूरिक एसिड के जो मरीज हैं वो कहते हैं कि हमारी उंगलियों में दर्द होता है
1: जी।
0: जो यूरिक एसिड को इसी तरह पहचाना जाता है उसके बाद लोग जांच कराते हैं। तो पथरी से क्या लेना देना है यूरिक एसिड?

0: यूरिक एसिड की पथरी जो है वो पेशाब के रास्ते ही यूरिक एसिड निकलता है
1: जी,
0: और जब वो उसका मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा निकलता है गुर्दे में से
1: जी,
0: वही जो है वो जाके स्टोन बन जाता है। और यूरिक एसिड का स्टोन एक बिल्कुल ही भिन्न तरीके का स्टोन होता है, वो एक्सरे में भी नहीं आता है।
1: अच्छा,
0: कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन और जो कैल्शियम वाले स्टोन है वो एक्सरे करवाइए तो आ जाते हैं
1: जी,
0: यूरिक एसिड वाले नहीं आते हैं, वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही पहचाने जा सकते हैं या फिर उनका सीटी स्कैन किया जाता है
1: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, परहेज की जहां तक बात है तो परहेज में ये कहा जाता है कि साहब जिन फलों में बीज होते हैं या जिन सब्जियों में बीज होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, उनके खाने से पथरी बन सकती है, क्या ये बात सही है?
0: देखिए उसमें इन सब में जो है कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है
1: जी।
0: कुछ लोग जो है वो भर भर के खाते हैं तब तो ये चीज होती है उन पे लागू, लेकिन जो आम मात्रा में आपने एक सेब ले लिया या आपने जो है एक यूरिक एसिड संयुक्त चीज आपने ले ली उससे इतनी विशेष परेशानी नहीं होती, पर प्रिवेंशन तो करना ही होता है। कुछ लोग की जो है परिवार में आप देखते होंगे कि सभी लोग बैगन की सब्जी खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, उसमें से एक या दो को हो रही है पथरी
1: जी जी,
0: तो उसकी बॉडी की शरीर की जो संरचना है, पानी की कमी है और वातावरण जो जैसा है उसकी वजह से भी असर पड़ता है, तो इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा अब ये और बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, जो पहले पथरी से पीड़ित रह चुके हैं जिनको पथरी हुई है
0: जी,
1: उनको संभावना पथरी बनने की जो होती है वो कितने प्रतिशत होती है और क्यों होती है? क्योंकि लोगों का कहना है हमने पथरी का इलाज कराया, डॉक्टर साहब ने किरणों से तोड़ दी हमारी पथरी, निकाल भी दी, लेकिन फिर भी दोबारा पथरी बन गई।
0: पहले साल में 60-70% हो जाएगी फिर
1: पहले साल में।
0: हाँ पहले साल।
1: अच्छा
0: आगे के सालों में थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पहले साल में ही जो है वो पथरी सबसे ज्यादा फिर से बन जाती है
1: जी। एक श्रोता लाइन पर है डॉक्टर साहब, इनकी बात सुन लेते हैं, क्या जानना चाहते हैं। रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय बताइए।
2: हेलो,
1: अपना परिचय बताइए और गुर्दे की पथरी के संबंध में कोई प्रश्न हो तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
2: रमेश बोले किशनपुर से।
1: जी रमेश जी बताइए, क्या समस्या है आपकी?
2: समस्या ये है कि जैसे हमारी पत्नी के ना गुर्दे गुर्दे में तो पथरी ना है, उसमें है पित्ते में
1: जी। अच्छा
2: तो हाँ। पित्ते की पथरी और इसकी पथरी जो है दोनों क्या निकल जाती है? पित्ते की पथरी,
0: पित्त की थैली की पथरी जो है ना वो पित्त की थैली और पथरी दोनों एक साथ निकलती हैं, इसका दवाई से इलाज नहीं होता है, उसका ऑपरेशन करके।
2: अच्छा अच्छा
0: हाँ।
2: अच्छा तो गुर्दे की जो पथरी है तो क्या बिना ऑपरेशन के निकल सकती है?
0: हाँ गुर्दे की पथरी जो है वो बिना ऑपरेशन के आधुनिकतम तकनीक लेजर है किरणों द्वारा निकाली जा सकती है।
2: अच्छा तो फिर दोबारा ना होगी?
0: दोबारा फिर से बनने की संभावना उसी गुर्दे में जो है 60-70% है।
2: अच्छा अच्छा तो मतलब ये इलाज क्या महंगा है ज्यादा?
0: नहीं वो तो पथरी का साइज और बाकी चीजें जांचों पे पता चलता है कि क्या है, तो दिखाना पड़ता है कि कितनी बड़ी पथरी है, कहाँ पे है और कैसी है और कौन सी विधि से निकाली जाएगी।
2: हमारे भतीजे से जो है वो 12 mm की पथरी बताई है गुर्दे में, पथरी है उसको अलग अलग से।
0: हाँ 12 mm की पथरी तो बड़ी है, वो दवाइयों से तो नहीं निकलेगी, उसको किसी आधुनिकतम टेक्निक से जो है वो पहले तोड़ के निकाला जाएगा, वो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड देखने के बाद पता चलेगा।
2: तो मतलब चीरा हो रहा नहीं, आराम से हो जाएगा।
0: हाँ 12 mm की पथरी के लिए आमतौर पे चीरा नहीं लगता है।
2: हाँ तो मतलब ऑपरेशन का जो डर लगता है ना लोगों को वो डर ना हो।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ
1: जी
0: उसमें कई बार उस पथरी के में भर्ती भी नहीं किया जाता है, 2 या 3 घंटे में ऑपरेशन से छुट्टी हो जाती है।
2: घर भी कर दिया जाता मरीज?
0: हाँ जी हाँ।
2: हाँ तो ये तो अच्छी बात है, चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद रमेश जी आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया डॉक्टर साहब। चूंकि आज का हमारा विषय गुर्दे की पथरी का है लेकिन इन्होंने पित्ते की थैली की पथरी की बात की, आपने इन्हें जवाब भी दिया इनके प्रश्न का। डॉक्टर साहब ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं लेकिन भ्रम रहता है लोगों में कि गुर्दे में अगर पथरी है उसका इलाज आप कर रहे हैं तो पित्ते की थैली की पथरी का भी इलाज आप कर देंगे।
0: नहीं दोनों की टेक्निक अलग है,
1: अलग
0: है। जैसे मैंने बताया गुर्दे की पथरी जो है वो दवाइयों से, किरणों से और गुर्दे को बचा के की जा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन पित्त की थैली की पथरी के लिए जो है वो ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है जिसमें पित्त की थैली और पथरी दोनों ही निकाली जाती है।
1: दोनों ही निकाल दिए जाते हैं सर, तो ये तो बिल्कुल अलग बात हुई
0: जी।
1: तो हमारे श्रोताओं को ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह की समस्या है उसका समाधान किसके माध्यम से होगा।
0: बिल्कुल उसमें फिर जब पिक्की थैली निकल जाती है तो फिर से बनने की संभावना शून्य हो जाती है।
1: जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब अगर किसी के गुर्दे में पथरी है कोई समस्या नहीं हो रही और वो कहता जब समस्या नहीं तो मैं इसका इलाज क्यों करूं
0: जी,
1: आगे चल के क्या हो सकता है ऐसे लोगों
0: जी? जो ऐसे लोगों

0: जो है अगर रुकावट है तो गुर्दा डैमेज हो सकता है, एक ही गुर्दे में है तो वो डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब के रास्ते खून आ सकता है, दोनों गुर्दों में है और बड़ी पथरियां हैं तो दोनों गुर्दे फेल हो सकते हैं, डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है।
1: जी, यानी जान जोखिम में जा सकती है,
0: बिल्कुल
1: हम ये
0: जी,
1: कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसी दवाइयां आप निश्चित ही होंगी जिनको देकर के आप सही करते
0: जी
1: हैं? मेरा इशारा उन तरीकों की तरफ है जो लोग आजमाते हैं,
0: जी
1: कहीं से पानी में मंत्र पढ़वा लिया, तो कोई किसी पेड़ के पत्ते खा लिए, ये प्रयास लोग करते हैं और उससे ये विश्वास कर लेते हैं कि गुर्दे की पथरी खत्म हो जाएगी।
0: जी
1: क्या ये संभव है?
0: देखिए, ऐसी छोटी पथरियां स्वतः ही निकल जाती हैं, आपने कुछ भी नहीं किया तो।
1: जी
0: उसी में अगर आपको पता है और आपने कहा कि जी हमने ये खाना खाया और ये पानी पिया और ऐसी चीजें की या ये दवाइयां ली, तो उससे नॉर्मल पथरियां जैसी जो निकलती हैं वो तो निकल ही जाएंगी।
1: जी
0: इसका साइंटिफिक कोई भी वो नहीं है जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं इस चीज से हो।
1: जी
0: साइंटिफिक बेसिस का मतलब होता है कि जो शोध करके ये चीज होती है कि जिसको नहीं है उसके बाद में उसको देख के और साइंटिफिकली प्रूफ किया जाए,
1: जी
0: तो वही दवाइयां और वही चीजें जो हैं वो कारगर होती हैं और लेनी चाहिए जिसका कि शोध हो चुका हो
1: बिल्कुल
0: और उस पे जो है हमें पता है कि हाँ जी इससे इतना फायदा होने वाला है।
1: जी,
0: बाकी प्रयास करने से आप अपने ही शरीर से खेल रहे हैं।
1: बिल्कुल। लक्षा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। अच्छा, पानी पीने की बात आप बार बार कहते हैं हमारे श्रोताओं से कि पथरी का जो सबसे बेहतर और सबसे पहला इलाज है वो पानी पीना है, पानी पीना चाहिए।
0: जी
1: कितना पानी पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, आप कई बार बता भी चुके हैं,
0: जी
1: लेकिन
0: जी
1: एक बार हम चाहेंगे फिर हमारे श्रोताओं को बताइए कि पानी पीने का सही तरीका क्या है।
0: देखिए, सही तरीका यह है कि साफ पानी हो,
1: जी
0: निथार के जो है उबाल के या तो उसके बाद में उसको जो है वो छान के उसके बाद में पीना चाहिए, या आजकल जो आरओ वाटर है
1: जी
0: वो पीना वो हो जिसमें कि सोल्यूट्स अंदर जो है वो टीडीएस जो है वो सही मात्रा में हो। दूसरा, ये कितना पानी पीना चाहिए, हम ये कहते हैं जितनी देर आप जगे हुए हैं उसमें हर घंटे पे 1 गिलास पानी पी लीजिए।
1: जी
0: तो ये हो गया कि अगर आप 15 घंटे दिन में जगे हुए हैं तो आमतौर पे 15 गिलास पानी पी लीजिए,
1: जी
0: वो चाहे वो 2-3 घंटे के अंतर पे हो, लेकिन ये ऐसा नहीं हो कि सुबह 6 बजे पी लिया और रात में 10 बजे पी लिया,
1: जी
0: दिन में पानी नहीं पिया, तो वो काम इतना नहीं करता है।
1: लोग करते ये हैं डॉक्टर साहब कि सुबह उठे और 4-5 गिलास इकट्ठा पानी पी लिया और ये
0: जी
1: मान लेते हैं कि अब तो ये दोपहर तक के लिए हो गया, अब दोपहर के बाद में देखा जाएगा, तो ये
0: जी
1: गलत
0: तो
1: प्रैक्टिस है।
0: उसमें क्या है कि जी उसी समय ही या उसके 1-1.5 घंटे में वो जितना पानी पिया है वो
1: जी
0: पेशाब के रास्ते निकल जाएगा, फिर बाकी दिन के समय में आपके जो है शरीर में पानी नहीं है,
1: जी सही तरीका यही है कि हर घंटे पे 1 गिलास पानी औसत रूप से
0: वो
1: पीते
0: जाना
1: रहें।
0: चाहिए।
1: जी, और क्या खास बात बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? चूंकि रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आज जो मुद्दा हमने आपसे तय किया है वो ये है कि गुर्दे की पथरी का इलाज, वो भी बिना ऑपरेशन के,
0: जी
1: क्या खास बात बताएं?
0: देखिए, इसमें तो आज हमने बहुत चीजें ऐसी की हैं जो मरीज या पेशेंट खुद करें,
1: जी
0: इसमें डॉक्टर का जो है वो इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल
0: इसमें, चाहे वो ये हो कि जी वो पथरी ना बने, चाहे
1: जी
0: वो पानी पीने का, चाहे वो खान पान का, चाहे वो टेस्ट का, चाहे वो सही तरीके से इलाज का, तो इसमें डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये तो जो है वो लोगों को आपस में ही करने के और
1: जन
0: अपने
1: जागरूकता
0: शरीर
1: के लिए ये बात
0: जी
1: कही गई है।
0: हाँ,
1: जी
0: इसमें ये नहीं है कि जी आज पथरी का कैसे इलाज हो,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, उसको ना बने या बने तो शुरुआती उसमें कैसे इलाज हो सकता है।
1: जी, कुछ पेशाब संबंधी और भी समस्याएं जुड़ी होती हैं सर, अगर किसी को पथरी हो जाती है, पथरी अपनी जगह है, गुर्दे में नुकसान करती है, उसके अलावा पेशाब का तो लंबा रास्ता होता है, इसमें और क्या क्या समस्याएं पथरी की वजह से होती हैं, ये भी हम चाहते हैं हमारे श्रोता जान लें।
0: ये बहुत बड़ी पथरी हो, बहुत लंबे टाइम तक फैली हो तो वो अंदर की संरचना को भी डैमेज करती हैं,
1: जी
0: तो कई बार उसमें खून आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों को कैंसर भी हो सकता है।
1: कैंसर तक हो जाता है।
0: जी
1: जी
0: तो इसलिए ये जो है ये पथरियां जो है हर तरह की समस्या की
1: वो वजह
0: सकती है।
1: बनती हैं।
0: जी
1: जी डॉक्टर साहब, जो एक बड़ी आधुनिक और जरूरी बात है, हम चूंकि बात भले ही बिना ऑपरेशन की कर रहे हैं पथरी के इलाज की, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये बात आ रही है बार बार कि मैं आपसे उस विधि के बारे में एक बार जरूर बात कर लूं जिसमें बिना किसी चीरा, बिना किसी टाके के, बिना मरीज को छुए आप पथरी का इलाज करते हैं, विशेष तौर से गुर्दे की पथरियां, बड़ी बड़ी पथरियां निकाल देते हैं।
0: अभी जैसे अभी हमने श्रोता से बात की थी कि
1: जी
0: उनके साथ में 12 mm की पथरी थी, तो उसमें जो है वो हम कोई भी इलाज जो है उसमें किरणों द्वारा किया जाता है,
1: जी
0: एडमिट भी नहीं किया जाता मरीज को, 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर उसकी छुट्टी भी हो जाती है।
1: 3 से 4 घंटे में डॉक्टर साहब,
0: जी
1: ये कैसे संभव है?
0: बाहर से ही हम किरणें उसको देते हैं,
1: जी
0: पथरी पे फोकस करते हैं, वो सेमी रोबोटिक टाइप चीज होती है, जैसे कि जी उसमें बाहर से

0: सब कुछ होता है
1: जी
0: और उसके बाद में रेस देने के बाद में पेशाब के रास्ते ही जो है वो कण टूट के निकल जाते हैं,
1: यानी पथरी जो बड़ी पथरी है वो छोटे टुकड़ों में टूट जाती है,
0: रेते जैसी हो जाती है, बालू जैसी
1: जी,
0: और उसके बाद में पेशाब के रास्ते निकल जाती है।
1: डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि 3-4 घंटे में ही मरीज घर चला जाता है, तो ये सब करने में कितना समय आपको लगता होगा जो इस तरह का ऑपरेशन है जो किरणों के द्वारा आप बता रहे हैं?
0: उसमें 45 मिनट से 1 घंटा।
1: अच्छा, और उसके 2 घंटे बाद मरीज को घर भेज
0: देते हैं।
1: तो देखिए आधुनिक चीजों का ये फायदा है और आज मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है उसके पीछे की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो यही हैं कि कम समस्या तुरंत समाधान
0: जी,
1: और उससे भी बेहतर ये है श्रोताओं कि आपको अगर गुर्दे की पथरी से बचना है या अपने गुर्दों को बचाना है, मैं तो ये कहूंगा, तो आप जागरूक हो, समय पर इलाज कराएं और उससे पहले समय पर जांच कराएं।
0: बिल्कुल,
1: तभी आप बिना ऑपरेशन के, मैं तो ये कहूंगा कि गुर्दे की पथरी का इलाज बिना खर्चे के कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: जी। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, विशेष तौर से गुर्दे की पथरी पेशाब संबंधी बीमारियों के जो इलाज है उसके विषय में बताया और आज बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि बिना ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी ठीक की जा सके।
0: बिल्कुल,
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
4: पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में गुर्दे की पथरी, मूत्र रोग और निसंतान दंपतियों के संपूर्ण इलाज का एकमात्र स्थान
3: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
4: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बरेली शहर का एक ऐसा अस्पताल जहां उपलब्ध है
2: मर्दाना कमजोरी,
4: महिलाओं के मूत्र रोगों,
2: गुर्दे की पथरी,
3: गदूद और बच्चों की पेशाब संबंधी समस्याओं के समाधान बहुत कम खर्च में,
2: उच्च कोटि की विदेशी मशीनों से सुसज्ज
3: यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट लिथोट्रिप्सी विशेषज्ञ द्वारा संचालित
2: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
4: हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9837057929। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581253-1234।

रेडियो हेल्पलाइन। अभी आपने सुना स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर आधारित ये कार्यक्रम। आज का विषय था गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। आज के विशेषज्ञ थे नीरज कुमार अग्रवाल। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए आज का हिंदी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं

0: हिंदी कार्यक्रम में श्रोताओं आपको सुनवाने जा रहे हैं शिव कुमार शास्त्री की वार्ता। विषय है श्री कृष्ण जन्मोत्सव, प्रेम और भक्ति का उत्सव।
1: जैसा कि आप जानते हैं, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देश में चारों ओर प्रेम और भक्त की गंगा बहने लगती है। हर तरफ उत्साह और उल्लास का मंगलमय वातावरण होता है। गृहस्थ से लेकर वैराग्य जनों तक, घर से लेकर मंदिरों तक सिर्फ और सिर्फ माखन चोर की झांकी और उनके जन्म के समय की प्रतीक्षा में बैठे भक्त भजन गाते रहते हैं।

और तमाम तरह की पूजा अर्चना करते रहते हैं। गांव गली नगर और कस्बे मथुरा वृंदावन जैसे लगने लगते हैं साथियों। और फिर ठीक मध्य रात में घनघोर घंटे और शंख का निनाद, खुशियों से फूटते गोले तमाशे और वैदिक मंत्रोच्चार, महिलाओं के सोहरगान अद्भुत कृष्ण जन्म का दृश्य प्रस्तुत कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णित है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटुले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्ट तो विजयते गोपाल चूड़ा मड़ी। आदि मंत्रों से जो पुजारी

चूड़ामणि आदि मंत्रों से जो पुजारी लोग होते हैं, वैदिक लोग होते हैं, वो भगवान की पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं और यदुनंदन का ध्यान पूजन करने के लिए तमाम भक्त जो है उसका आनंद लेने के लिए बैठ जाते हैं। साथियों, इस तरीके से जो भक्तगण होते हैं, सनातनी भक्त होते हैं, वो चाहे स्मार्ट हो चाहे वैष्णव हो, वो भादों की जन्माष्टमी को दृढ़ संकल्पित होकर बैठ जाते हैं कि जब तक 12 बजे रात्रि यानी मध्य रात में भगवान का अवतार नहीं होगा, हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये उनका बहुत ही समर्पित भक्ति होता है। साथियों, गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत धर्म संस्थापनाशाय संभवामि युगे युगे। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, गोस्वामी जी भी यही कहते हैं कि जब जब हो ये धर्म की हानि और बाढ़ही असुर महा अभिमानी और तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान का अवतार मूल रूप से धर्म की स्थापना के लिए होता है संसार में। हमारे शास्त्रों में 10 अवतार वर्णित है। खंभे से नृसिंह का अवतार हुआ और उस समय अपने भक्त प्रहलाद को बचाया। कौरव पांडव की सभा में द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वस्त्रावतार, वस्त्र के रूप में भगवान श्री नारायण प्रकट हुए। मत्स्य अवतार हुआ, कच्छप अवतार ग्रहण किया भगवान ने और शुक्रावतार भी ग्रहण किया। भगवान के 10 अवतार इसलिए पूज्य हैं क्योंकि वे अवतार लोक कल्याण के लिए हुए हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने जब भी इस संसार में अवतार लिया, धर्म के लिए, ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, देवताओं के लिए, इनके उत्थान के लिए हमेशा अवतार लिया। भक्त और भगवान का परस्पर संबंध अकथनीय है। साथियों, यद्यपि भक्ति भी 9 प्रकार की होती है, शास्त्र कहते हैं अर्चनम वंदनम दास्यम सख्युम आत्मनिवेदनम आदि, लेकिन भगवान कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तु माम ये नरा परुपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। नंद और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण और वसु थे। इन्होंने भी तपस्या करके भगवान को पुत्र रूप में मांगा था, इसलिए शिशु रूप का पूरा आनंद भगवान ने अपने भक्त को दिया। पुतना जिस समय भगवान जो है वामन बन करके राजा बलि को छलने गए, उनके घर की कन्या ने जो है भगवान को देख करके और पुत्र रूप में कामना की कि यदि ये मेरे पुत्र होते तो कितना अच्छा होता। तो भगवान ने उसे मन ही मन उसके प्रेम को देख करके, वात्सल्य को देख करके वरदान दे दिया कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें भी मैं स्तन पिलाने का अवसर दूंगा। इस तरीके से भगवान ने पुतना को भी वरदान दिया। साथियों, जन्म वसुदेव और देवकी के द्वारा मिला, वात्सल्य का अवसर नंद और यशोदा को दिया गया, साक्ष्य भाव में गोपी और ग्वालों को मिले तथा मित्र के रूप में भगवान कन्हैया, सुदामा जी और अर्जुन को मिले। कन्हैया ने अपने प्रेमियों की सुरक्षा में गोवर्धन उंगली पर उठाया, वनाग्नि पिया तथा गोधन और प्रकृति का सम्मान करने का पूरा संदेश दिया। विषैले कालिया नाग से कालिदास से मुक्त तो कराया, लेकिन बदले में उसे उसके सिर पर अपना चरण चिन्ह दे करके नागों को संसार में पूजित बनाया। संकट में अपने बुआ कुंती के पुत्रों की सहायता की तथा शांति और युद्ध दोनों मार्गों का अनुसरण करने का संदेश दिया। मित्र पार्थ के सारथी बने, गीता ज्ञान दिया और संसार को दिखाया कि मित्र के लिए शाप और वरदान, यश और अपयश, दुख और सुख का कोई परवाह नहीं करना चाहिए। भागवत कहती है कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या और निवसति हृदय रे काम श्री हरेर भक्ति रे कहा ओ हरिरपि निज लोके सर्वथा तो बिहाये और प्रविशति हृदय तेसाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। भक्ति एक ऐसा सूत्र है कि उस सूत्र में बंध करके परमात्मा अपने भक्त के हृदय में चला आता है। इसलिए व्यास जी लिखते हैं कि सारे संसार में तीनों लोकों में वो निर्धन भी धन्य है जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, लेकिन निवसत हृदय तेसाम श्री हरे भक्त रेखा, उसके हृदय में भगवान की भक्ति है, समझो संसार का सबसे बड़ा और मालामाल व्यक्ति है। भगवान कन्हैया ने दिखाया कि मनुष्य की इच्छा शक्ति यदि दृढ़ हो तो प्रकृति भी उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। कंस के कारागार में जब भगवान का अवतार हुआ तो प्रकृति देवकी वसुदेव के पक्ष में खड़ी हो गई। भीषण जलवृष्टि होने लगी, कारागार के ताले स्वयं खुल गए, हथकड़ी बेड़ियां टूट गईं और तो और जल प्रलय की लय वाली यमुना की लहरें भी थम गईं और सहजता से वसुदेव भगवान को लेकर के गोकुल चले गए। सब चिर निद्रा में विलीन थे। योग माया यशोदा के बगल में सोई थी, जिसे उठाकर वसुदेव जी मथुरा ले आए और उसी योग माया ने कंस को सूचित किया कि तुम्हारा काल धरती पर आ चुका है। जो भक्त भगवान कन्हैया के जीवन दर्शन को आत्मसात कर लेते हैं साथियों, उन्हें संसार की चुनौती का कोई भय नहीं।

0: नहीं रहता। आश्र सिद्धि और नवनिधियों के स्वामी चक्र सुदर्शन धारी होते हुए भी कन्हैया ने जेल में जन्म लिया, भगवान ने भादों में जन्म लिया, भाद्रपद मास को चुना और बचपन में माँ की गोद छूट गई, शिशु काल में ही तमाम शत्रुओं से पाला पड़ा, पूतना आई और जो है बकासुर आए, तमाम प्रकार के जो है शत्रु आए जो उनको जान से मारना चाहते थे। इसके अलावा जीवन में एक प्रेमिका आई राधिका, जो प्रेम भी विरह की भेंट चढ़ गया उनका। किशोरावस्था में माँ के अपमान का बदला लिया और क्रूर कंस का वध करना पड़ा, जिसके बाद कंस के ससुर जरासंध ने उनके राज्य मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। कन्हैया को समुद्र में द्वारिका बसाना पड़ा। भाई बलराम ने छाया की तरह साथ दिया। मुख भगवान ने दुर्योधन के घर का 56 भोग ठुकरा दिया और अपने प्रेमी विदुर की साग रोटी खा ली। मित्र के प्रेम सुदामा का तंदुल खाकर उन्हें तीनों लोक दे दिया और बहन के प्रेम में खिचड़ी का एक कण खाकर दुर्वासा उनकी सस्यों का पेट भर दिया। शिशुकाल में अंजूरी में अनाज लेकर फलवाली से फल खरीदना चाहा, लेकिन असफल रहे तो प्रेम बस फलवाली ने उनके सामने समर्पण भाव में पूरे फल की डलिया रख दी। इस प्रेम के बदले भगवान ने उसकी गरीबी दूर कर दी। श्री राधा कृष्ण का प्रेम अमर और अद्वितीय है। जहाँ प्रेम के वसीभूत कृष्ण गुजरिया बने तथा मथुरा जाकर के राधा की विरह में तड़पते रहे एवं संसार को संदेश दिया कि विरह ही प्रेम का असली तत्व है, निस्वार्थ अलौकिक और पूरे समर्पण के साथ कृष्ण प्रेम की परिभाषा में राधा रानी से कहते हैं, ममास हृदय तुम तो तुमास हृदय महम वियोगो आयोर नास्ति माया पुरुषयोर रथा। श्री कृष्ण कहते हैं, राधे यदि प्रेम वासना से मुक्त हो तो आत्मा से परमात्मा के मिलने जैसा आनंद देता है। जिस तरह माया और पुरुष कभी अलग नहीं, उसी तरह हम और तुम कभी अलग नहीं, क्योंकि तुम हमारे हृदय में हो और हम तुम्हारे हृदय में हैं। भगवान कन्हैया सिर पर मोरपंख धारण करते हैं, जो इसका प्रमाण है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन किया। साथियों, कन्हैया से प्रेम और भक्ति को संसार में यशस्वी होने और परमात्मा के प्राप्त होने का सुलभ मार्ग बताया गया है। अधिकांश भक्त भगवान घनश्याम को पुत्र भाव, मित्र भाव, प्रेमी भाव में पूजते हैं, जैसे सूरदास और मीराबाई जी। चैतन्य महाप्रभु जी ने कृष्ण की पराकाष्ठा को दुनिया के सामने रखा। साथियों, भगवान कृष्ण को योगी कहा गया है। योग का अर्थ होता है जोड़। गीता में भगवान कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, यानी अर्थात संसार में बिना भेदभाव के साथ रहना और सुख दुख सफलता असफलता में मन और स्वभाव का स्थिर रहना ही योग है। यो हृत्यति न साद्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभासु पुरोत्यागी भक्तिमान समे प्रिया योगः कर्मसु कौशलम। भगवान कहते हैं, अपने कर्मों को बिना अहंकार के बिना स्वार्थ के करते रहिए, वो सबसे बड़ा योग है। भगवान ने गीता में 4 तरह के योग मार्ग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग, जिसे आत्मसात करके मनुष्य सहजता से योग क्षेम सहित संसार सागर से मुक्त हो सकता है। श्याम, कृष्ण, मनमोहन, गोवर्धनधारी, वासुदेव, चितचोर आदि तमाम सांसारिक नामों से पूजे जाने वाले जगदीश्वर गोपालक कृष्ण को प्रतिवर्ष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना के साथ धरती पर भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को बुलाते हैं और कल कलुष नाश की प्रार्थना करते हैं। आज भगवान वासुदेव के प्राकट्य की प्रतीक्षा में सारा संसार पलक पावड़े बिछाकर बैठा है। एक बार पुनः समरसता की मुरली और अधर्म नाश हेतु चक्र सुदर्शन धारी धरती पर आ रहे हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आप सभी को योगेश्वर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई।
1: अभी आप सुन रहे थे शिव कुमार शास्त्री की वार्ता। विषय था श्री कृष्ण जन्मोत्सव, प्रेम और भक्ति का उत्सव। इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:10 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए आज का कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं रूबीना बैनर्जी के स्वर में भजन। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मीराबाई की इस रचना के साथ।

कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर योगेश प्रवीण की रचना स्वर था रुबीना बैनर्जी का। अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं मीराबाई की रचना रुबीना बैनर्जी के स्वर में।

इस भजन के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज एक कलाकार थीं रुबीना बनर्जी, इनके गाए भजन आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:30 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, आरजू फिल्म।

कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश के युगल आवाजों में। आगे बढ़ चलते हैं और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं सीआईडी फिल्म से मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में ये गीत।

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका? कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया? जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: अगर आप आकाशवाणी लखनऊ मीडियम वेव के चैनल से विज्ञापनों के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और पहुंचाना चाहते हैं अपना संदेश प्रदेश के हर शहर हर गांव तक, तो तुरंत करें हमें कॉल। हमारा फोन नंबर 0522453020 7, 0522453020 7।
2: इसके साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम चित्रपट से भी यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरी कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्य

0: राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहाँ कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
6: वी हैव एक्सटेंडेड आवर सॉलिडैरिटी एंड सपोर्ट टू द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ नेपाल।
7: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
6: एंड रिकवरी एफर्ट्स इन द कंट्री।

0: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धारडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
3: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
4: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, CCTV सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और

0: बनारस के हरे कृष्णा मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
2: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यूर से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए शैलेंद्र सिंह की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है बॉबी।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है गुलशन बावरा ने। संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है ये वादा रहा।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन है राजेश रोशन की और फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, तर्ज है राहुल देव बर्मन की, फिल्म का नाम है जहरीला इंसान।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है रफू चक्कर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

आज एक ऐसा कलाकार जिसने कई फिल्मों में बैकग्राउंड संगीत दिया, कई फिल्मों में गाया और बहुत सी फिल्मों के संगीतकार रहे। 1990 और 2000 के दशक के एक लोकप्रिय कलाकार का जिक्र है आज। आइए सबसे पहले रूना लैला के साथ इनका गाया फिल्म अग्निपथ का ये गीत आपको सुनवाएं।

इस कलाकार ने फिल्म सैलाब में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। आइए इस गीत को भी सुन लें।

आज हम बात करने जा रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी और हिंदी फिल्म संगीत का जाना पहचाना नाम आदेश श्रीवास्तव की।

शाहरुख खान रानी मुखर्जी अभिनीत 2003 की चलते चलते फिल्म में संगीत जतिन ललित और आदेश श्रीवास्तव का था। फिल्म संसार में कटनी मध्य प्रदेश से आए आदेश का जन्म 4 सितंबर 1964 को हुआ था। आदेश ने शुरुआत में आरडी बर्मन, राजेश रोशन जैसे संगीतकारों के साथ एक ड्रमर की हैसियत से काम किया, फिर एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में आपने अमिट छाप छोड़ी। राजनीति फिल्म का उनका संगीतबद्ध ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। आइए सुनते हैं आदेश श्रीवास्तव की आवाज में ये गाना।

एक सफल संगीतकार रहे हैं आदेश श्रीवास्तव। अपने संगीत के करियर में आपने 100 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया है। फिल्म मेजर साहब का है ये गाना।

आदेश श्रीवास्तव का विवाह जतिन ललित और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की अभिनेत्री बहन विजेता पंडित से हुआ। बात 1993 की है, जब आदेश श्रीवास्तव को एक बड़ा ब्रेक फिल्म कन्यादान के लिए मिला। लता मंगेशकर ने इनका संगीतबद्ध गीत उदित नारायण के साथ गाया था, जो लोकप्रिय हुआ, पर यह फिल्म और इसके बाकी के नगमे उतने नहीं चले। फिलहाल ओ सजना दिलबर कन्यादान का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि कन्यादान फिल्म के गीत बाकी के नहीं चले या उतने लोकप्रिय नहीं हुए, ऐसा ही फिल्म जाने तमन्ना के साथ भी हुआ। इसके गीत भी उस तरह से नहीं लोकप्रिय हुए जैसा उनको होना था, जैसी उम्मीद आदेश को थी। लेकिन आदेश ने इन असफलताओं से हार नहीं मानी। बाउंस बैक करते हुए इन्होंने जिस फिल्म में अपनी पुनः वापसी की उसकी चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल 2004 की फिल्म दीवार के गीत के साथ आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।

1994 की बात है, फिल्म आई आओ प्यार करे। आदेश श्रीवास्तव अपने श्रोता दर्शकों के बीच मधुर कर्णप्रिय संगीत के साथ पहुंच गए।

आदेश श्रीवास्तव ने कई हिट गाने गाए, जैसे सोना सोना, शावा शावा, गुस्ताखियां। फिर कुंवारा के गीतों के माध्यम से फिर एक बार सफलतापूर्वक पहुंचा आदेश का संगीत, जिसे दर्शकों ने सराहा। ये गाना है फिल्म आंखें का, आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाज में।

0: जैसा कि हम जानते हैं, एक गायक संगीतकार के साथ साथ एक अभिनेता के रूप में भी आदेश श्रीवास्तव ने अपनी पहचान बनाई। 1992 की अंगार में इनका एक्टिंग डेब्यू हुआ था और 1991 की फिल्म प्रहार में आपने एक रोल अदा किया था, छोटा सा वायलिन वादक बने थे आप। सन 2016 की मराठी फिल्म फैमिली कथा में भी आपने काम किया। वैसे तो इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार का अपने साथियों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रहा ही होगा, पर कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ आदेश श्रीवास्तव के संबंध काफी अच्छे रहे। आइए सुनते हैं कभी खुशी कभी गम का ये गाना।
1: जी बादशाह की देख रहे हो तुसी, चलो शुरू हो जाओ।

आदेश श्रीवास्तव की आखिरी फिल्म थी जिसमें आपने म्यूजिक स्कोर किया था वेलकम बैक, जो इनके जन्मदिन 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। और 5 सितंबर को कैंसर ने आदेश श्रीवास्तव को संगीत प्रेमियों से यकायक छीन लिया। ये क्षति अपूर्णीय है, लेकिन उनका संगीत और उनकी शख्सियत श्रोता, दर्शकों और करीबियों के बीच एक याद बनकर हमेशा रहेगी।

0: आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था गायक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव पर, आलेख और स्वर जी श्याम का, और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: यह हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की

0: नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में, बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
1: ऐसी अद्भुत यादें।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: रात्रि के 10 बज गए हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

रहे थे बादशाह फिल्म से अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य की युगल आवाजों में। आगे बढ़ चलते हैं और अब लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में आपको सुनवाते हैं जब प्यार किसी से होता है फिल्म से अगला गीत।

लता मंगेशकर और बाबला मेहता की जुगल आवाजों में चांदनी फिल्म से कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं दीवाना फिल्म से साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज में।

0: संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अगर आप आकाशवाणी लखनऊ मीडियम वेव के चैनल से विज्ञापनों के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और पहुंचाना चाहते हैं अपना संदेश प्रदेश के हर शहर हर गांव तक, तो तुरंत करें हमें कॉल। हमारा फोन नंबर 0522453020707, 0522453027।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए आज का कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं दीपांकर राय चौधरी का हवाइन गिटार, राग है किरवानी।

0: अभी आप सुन रहे थे दीपांकर राय चौधरी का हवाईयन गिटार, राग था किरवानी। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में।

0: सुनिए, रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: अगर आप आकाशवाणी लखनऊ मीडियम वेव के चैनल से विज्ञापनों के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और पहुंचाना चाहते हैं अपना संदेश प्रदेश के हर शहर हर गांव तक, तो तुरंत करें हमें कॉल। हमारा फोन नंबर 0522453020 7, 0522453020 7।
2: हमारे बुजुर्ग जैसे बरगद की छांव, किस्से कहानियां दादा दादी के, प्यार दुलार नाना नानी का, जीवन की इस सांझ के अनुभवों को याद दिलाता है हमारा ये कार्यक्रम अक्षयवट। हर रविवार 1:30 बजे मीडियम वेव 747 MHz पर, तो सुनना ना भूलें अक्षयवट।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में आप समाचार सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को

संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने यह बात कही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहां युवा

उन्होंने कहा कि ये पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहां युवा भारतीय उस विविधता का जश्न मनाते हैं जो उन्हें खास बनाती है और उन साझा बंधनों का भी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: for UGC NET June 2026 in English, Commerce and Sociology on the 9th and 10th of this month. Candidates can download their admit cards from ugcnet.ta.nic.in using their login credentials. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter their fourth straight China Masters semi-final after beating Denmark's Kim Estrup and Anders Kvarup Rasmussen in Shenzhen this evening. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, कृपया हमारे एक विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, अब हम आपको आकाशवाणी के मथुरा केंद्र के सौजन्य से सुनवा रहे हैं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थल और श्री द्वारिकाधीश मंदिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल। श्री कृष्ण जन्म स्थान से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं श्रीयुत श्री कृष्ण और श्री देश दीपक मिश्रा। श्री द्वारिकाधीश मंदिर से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं डॉक्टर मीनू खरे और डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा। आइए सजीव प्रसारण के लिए मथुरा चलते हैं।
2: वंदे कृष्ण की लीला स्थली ब्रज धरा धाम को शत शत नमन वंदन। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम पावन पवित्र मोक्षदायिनी मथुरा नगरी के जगत विख्यात श्री द्वारिकाधीश मंदिर से मैं डॉक्टर मीनू खरे अपने साथी कमेंटेटर्स डॉक्टर नृत्य गोपाल और कृष्ण जन्म स्थान से श्रीयुत श्री कृष्ण व देश दीपक मिश्रा के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ, अशेष मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। तीनों लोकों से न्यारी मथुरापुरी में आज हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का 5253वां जन्म उत्सव। इस अवसर पर मथुरा नगरी कुछ यूं सजी है मानो कोई नववधू अपने प्रियतम का स्वागत करने जा रही हो। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं का स्वागत दोनों बाहें फैलाकर करती हुई ये वही नगरी है जिसके स्थापना भगवान राम के छोटे भाई श्री शत्रुघ्न ने आततायी लवणासुर के वध के पश्चात किया था और कालांतर में द्वापर युग में इसी नगरी को चुना भगवान श्री कृष्ण ने आततायी कंस के नाश और सत्य मूल्यों की स्थापना के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज के दिन सभी को प्रतीक्षा आगत के स्वागत की, अजन्मे के जन्म की। कृष्ण का जन्म इस संसार का सुंदरतम क्षण है। मेरो मन आनंद भयो ब्रज राजे ही याचन आयो अपने अपने मन की मतो कही सब परिवार पठायो। अधर्म के नाश हेतु साक्षात परम ब्रह्म विष्णु स्वरूप वासुदेव जनार्दन रसेश्वर सर्वेश्वर ब्रिजेश्वर योगेश्वर द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतरण से इस धरा को धन्य किया। आज उसी दिव्य और अलौकिक घटना की प्रतीकात्मक पुनरावृत्ति के साक्षी बनने को उत्सुक आज यहाँ उपस्थित हर जन हर भक्तगण कण कण से प्रसन्नता व्याप्त हो रही है। यशोदा नंदन नंद दुलारे कन्हैया के आवन की कड़ी जो है वह सब चारों ओर है। परमानंद आज यहाँ साक्षात बरसता हुआ उल्लास और उमंग में सराबोर श्रद्धा का सागर आज भक्तों के मन में उमड़ता हुआ। सभी कंठों से राधे कृष्ण की वाणी गुंजायमान होती हुई आज की रात याद दिलाती।

0: द्वापर युग की उस विलक्षण और अलौकिक घटना की जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र सूर्य नारायण सिंह राशि में और चंद्र वृष राशि में अवस्थित थे, तभी कान्हा ने जन्म लेकर इस धरा को धन्य किया। यूं तो आज श्री द्वारकाधीश मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं ऋतुराज के दर्शन के लिए, परंतु हर किसी की प्रतीक्षा मध्य रात्रि की, जब कान्हा प्रतीकात्मक रूप से एक बार पुनः प्रकट होंगे, एक बार पुनः ब्रज की धारा धन्य होगी कन्हैया के अवतरण से। कान्हा रे नंद नंदन परम निरंजन हे दुख भंजन। श्री यमुना महारानी के विश्राम घाट और अस्कुंडा घाट के बीच बसे श्री द्वारिकाधीश मंदिर में आयोजित कान्हा के जन्म का ये उत्सव अद्भुत विलक्षण और अलौकिक प्रतीत होता है। रंगीन प्रकाश में नहाया हुआ ये प्रांगण मानो किसी और दुनिया में ले जाता प्रतीत होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर चारों ओर मथुरा नगरी ही मात्र ऐसा स्थान है जहां ब्रह्म और शक्ति एक साथ प्रकट हुए। गीता के पुरोधा लीलाधारी कृष्ण और अष्टभुजा मां योग माया की प्राकट्य भूमि होने के कारण आज इसका महत्व वैकुंठ से भी अधिक है। ब्रज की महिमा को कहे को बरनई ब्रज धाम, जहां बसत हर सांस में श्री राधे घनश्याम। और अब आगे का हाल आंखों देखा हाल सुनाने के लिए डॉक्टर नृत्य गोपाल।
1: धन्यवाद डॉक्टर मीनू खरे। नमस्कार, मैं नृत्य गोपाल राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर मथुरा से बोल रहा हूँ। कृष्ण कन्हैया ने यहाँ इस धरा पर जन्म लिया। ब्रजराज श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में आज यह मथुरा नगरी, यह द्वारकाधीश मंदिर दिव्यता और भव्यता की अद्भुत संगम बना हुआ है। और इस संगम में जहां से हम आपको आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, उसके ठीक सामने द्वारकाधीश महाराज जी का श्री विग्रह विराजित है। और इस समय विग्रह स्थल के पट बंद हैं और बहुत सुंदर सा प्रीत वर्णी ये जो पर्दा आया हुआ है, जिसमें झिलमिल सितारे लगे हुए हैं, जिसकी आभा से ये पूरा भवन, ये पूरा प्रांगण आलोकित हो रहा है। और ठीक द्वार के बाहर जगमोहन में कुछ हिस्से को बहुत सुंदर सी रेलिंग से घेरा हुआ है। इस परिधि के भीतर सेवायत जन, जो सिर्फ उन्हीं का प्रवेश यहाँ पर वांछनीय है, वही इसमें भीतर है। सेवायत जन अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं, अभी हम देख रहे हैं कि ठीक यहाँ पर इतने सुंदर हल्दी के थापे रखे गए हैं और सेवायत जन जिस तरीके से जैसे इधर उधर अपने कार्यों में तल्लीन है, वह अनोदार्थी है, उनकी सेवा अद्भुत है, वह देखने योग्य है। और ये सेवा भाव भारत की आत्मा है। और यहाँ पर जैसे जैसे परिक्रमा में लोग जा रहे हैं, जैसे जैसे श्रद्धालु आ रहे हैं, संख्या निरंतर बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि ये जो श्रद्धालुओं का जो तांता है, ये अपने आप में ये कह रहा है कन्हैया आओ तो सही, तनिक आओ तो सही, दर्शन दो तो सही। और अब हम देख रहे थे कि कितनी जोर की आवाज आपके तक पहुंच रही होगी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, क्या ही सुंदर गूंज। और ये यहाँ पर, और अब हम आपको लिए चलते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान भागवत भवन, जहां से आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंट्रेटर श्री देश दीपक मिश्रा आपको वहां का आंखों देखा हाल सुनाएंगे।
2: जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मस्थली के भागवत भवन से मैं देश दीपक मिश्र अपने साथी कमेंटेटर श्रीयुत श्री कृष्ण के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं भी प्रेषित करता हूं। जब भीतर का अंधियारा टूटे तब कृष्ण जन्म लेते हैं, जब मन की बेड़ियां छूटे तब कृष्ण जन्म लेते हैं। मथुरा कोई दूर नगर नहीं, ये तो अपने मन में है। और जब मन में प्रेम जगे समझो तब कृष्ण जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज सिर्फ इस धराधाम पर प्रतीक रूप पे ही नहीं होगा, भगवान जन्मेंगे हर हृदय में, हर प्राणों में, हर चेतना में। क्योंकि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु, हर भक्त अपनी आस्था, विश्वास और भक्ति के दम पर यहाँ पर आया है, तो अपने परमात्मा, अपने आराध्य, अपने ईष्ट के जन्म के उन क्षणों का साक्षात्कार करने के लिए, जिसके लिए उल्लसित और उमंगित होकर

संपूर्ण मथुरा ने कर लिया है मानो अपना श्रृंगार। आज मथुरा की सज्जा देखते हुए जिस तरह से रोशनी में ये नहाई हुई है, जिस तरह से ये आनंद में, ये तो आनंद प्रेम और माधुर्य की नगरी ही है। रास रंग इसके धारा का एक विशेषता है, लेकिन जिस तरह से आज मथुरा ने किया है अपना श्रृंगार, वो स्वर्ग से भी देवता यहाँ आने को लालायित हैं। वैसे श्री हरि विष्णु जब अवतार लेते हैं तो समस्त देव स्वामियों वहां उपस्थित हो जाते हैं, समस्त तीर्थ वहां पर एकत्र हो जाते हैं। तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को इस समय न केवल हमारे परमात्मा श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की झांकी देखने का सुअवसर मिलेगा, बल्कि समस्त तीर्थों का जो पुण्य है वो भी उन्हें मिलेगा। जहां से हम ये आपको आंखों देखा हाल सुना रहे हैं वो भागवत भवन है, श्री कृष्ण जन्म स्थली का वो मुख्य भवन, जहां पर पूजन अर्चन होता है और जिसे देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। मथुरा मोक्षदायिनी नगरी है और इस मोक्षदायिनी नगरी में पहुंच चुके हैं। लाखों की संख्या में आए हुए श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ बड़े ही अनुशासित ढंग से भागवत भवन में प्रवेश करते हैं और मुख्य विग्रह के सामने आकर ठिठकते हैं। मुख्य भवन में जो विग्रह हैं उन पर जब हमारी दृष्टि पड़ती है तो अपलक हम उन्हें निहारते रह सकते हैं। आज परमात्मा का जो विशेष श्रृंगार है वो अद्भुत और अंगूठा है। प्रतिवर्ष की तरह जैसे भगवान की पोशाक होती है वो अनूठी है, इस बार भगवान ने पीताम्बर वस्त्र धारण किए हैं और इस वस्त्र को पंचरत्नी पोशाक नाम दिया गया है। ये पंचरत्न उस पर जरी और काम के साथ हीरे जवाहरात माणिक्य के साथ अंकन किए गए हैं। वो पंचरत्न हैं जो समुद्र मंथन में निकले हुए थे, श्री हरि विष्णु के पास आए थे और उनका संबंध श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। कामधेनु गाय, पांचजन्य शंख, अमृत कलश, एरावत हाथी जो कि श्री हरि विष्णु को मिला था, उन्होंने बाद में इंद्र के मांगने पर उन्हें दे दिया था, और कल्प वृक्ष अंकित हैं। इतनी सुंदर मनमोहक छवि है। भगवान ने मुकुट जो धारण किया है वो अद्भुत और अनूठा है। स्वर्ण जड़ित इस मुकुट में अनेकों माणिक के हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और वो सब अपने भाग्य पर इतरा रहे हैं। इतरा इसलिए नहीं रहे हैं कि उनमें हीरे जवाहरात और माणिक्य लगे हुए हैं, बल्कि इसलिए इतरा रहे हैं कि हमारे परमात्मा ने उन्हें अपने शीश पर धारण किया है। भगवान ने कंठाहार पहन रखा है, हाथों में चूड़ा है, कमर में करधनी है। उनके आभूषणों के साथ उनकी सज्जा देखने लायक है। जब दृष्टि पड़ती है तो अपलक लोग देखते रह जाते हैं। राधा रानी की आंखों से बरसती हुई करुणा मानो सभी को सम्मोहित कर ले रही है। उनके पीतांबर वस्त्रों को देखकर लोगों के आंखों से अश्रु छलक पड़ते हैं। जो सुंदर सजावट की गई है वो भगवान के पुष्प बंगले की है, जिसे कल हंस पुष्प बंगले का नाम दिया गया है। सुंदर हंस बने हुए हैं जो कि श्वेत रंग के पुष्पों से बनाए गए हैं और गुलाबी रंग के पुष्पों से उनके पंख हैं। नीले रंग के मयूरों की आकृति है। श्वेत गुलाबी और हरे रंग के पुष्प और पत्तियों का सुंदर समावेश किया गया है। एक ऐसी अद्भुत चित्ताकर्षक झांकी है जिसे देखते हुए श्रद्धालु यहाँ पर ठिठक जाते हैं और ये वातावरण पूरी मथुरा में छाया हुआ है। मथुरा जो कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति और आस्था का एक केंद्र है, वो स्वागत करने के लिए तैयार है। समस्त द्वारों पर जो तोरण द्वार बने हैं वो मुस्कुरा कर स्वागत करते हैं। मथुरा के समस्त चौराहों पर रेशमी वस्त्रों, गुब्बारों, विद्युत लड़ियों और खिलौनों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रवेश करते ही श्रद्धालु अपलक निहारते रहते हैं अपने कान्हा की इस धरती पर जहां पर उन्होंने लीलाएं की थी। मथुरा के प्रवेश द्वारों पर की गई सजावट सभी का स्वागत कर रही है। स्वागत तो यहाँ पर भागवत भवन में श्रद्धालुओं का भी हो रहा है। श्रद्धालु आ रहे हैं तालियां बजाते हुए, श्री हरि बोल के नारों से गुंजायमान कर रखा है और तालियां बजा के आते हैं। बस एक ही अभिलाषा होती है कि अपने प्रभु की छवि को किस तरह निहार लें, उस मनोरम छवि को सदैव के लिए मानस पटल पर अंकित करना चाहते हैं। ठिठकते हैं, लेकिन जो सेवायत हैं, जो हमारे यहाँ व्यवस्था में लगे लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनकी श्रद्धा आहत न हो, धीरे से कंधे पर थपकी देकर उन्हें आगे बढ़ने का एक इशारा कर देते हैं। बाहर आज बारिश भी कुछ देर पहले बहुत तेज हुई थी, ऐसा लगता था कि द्वापर का वो दृश्य जीवंत हो गया जब परमात्मा ने यहाँ पर जन्म लिया था। श्रद्धालुओं का अगर मथुरा में प्रवेश होता है तो जगह जगह उन्हें कृष्ण की लीलाएं दिखती हैं, कटआउट लगे हैं, झांकियां सजी हैं, ध्वनि और संगीत के प्रभाव से वो उन्हें आकर्षित ही नहीं कर रही हैं, मोह रही हैं। माखन चोरी है, रासलीला, नाग नथैया, कृष्ण जन्म, गौचारण जैसे तमाम प्रसंग हैं जो कि वहां पर अंकित हैं और ये सब कुछ दिव्य है। 11 बजे से यहाँ पर पूजन, जो विशेष पूजन है वो चल चुका है। 1008 सहस्त्रार्चन से करते हैं।

0: हैं, पुष्प कमलों को चढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन हुआ, उसके बाद नवग्रह का पूजन हुआ और सहस्त्रार्चन चल रहा है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं, सहस्त्रार्चन के साथ साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह भी अनवरत हमारे बाईं तरफ से निकलता है और दाहिनी तरफ से चला जा रहा है। ये जो दिव्य शोभा है, ये जो अद्भुत वातावरण है, इसे शब्दों में व्यक्त करना नितांत असंभव, लेकिन फिर भी मैं श्रीयुत श्री कृष्ण जी को ये माइक्रोफोन देता हूँ आगे का विवरण देने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देशदेव दीपक जी। एक बार पुनः श्री कृष्ण स्थान से स्वीकार कीजिए श्री कृष्ण का सादर प्रणाम और आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज इस समय यहाँ भागवत भवन में जहाँ ठाकुर जी अपनी आलादनी शक्ति श्री राधा रानी के साथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और इस समय भक्तों का आने का सिलसिला एकदम अचानक से बढ़ गया है। बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा से, उल्लास से, उमंग के साथ राधे राधे का जय घोष करते हुए भागवत भवन की ओर बढ़ते चले आ रहे और यहाँ पर उनकी वेशभूषा से प्रतीत होता है कि देश के सुदूर प्रांतों से अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर दर्शन करने आए हैं और वर्ष पर्यंत उनके मन में बस एक ही भावना रहती है कि कब वो अद्भुत पल आए, जब वो भगवान के प्राकट्य उत्सव का, अपने लाला के आगमन की प्रतीक्षा के लिए उनके यहाँ पर भागवत भवन में अपने प्रभु के दर्शन करने आए। जब अजन्मे का जन्म होता है, पालनहार प्रकट होते हैं, उस समय भागवत भवन में रहना अपने आप किसी पुण्यों के संचित लाभ से प्राप्त करने से कभी भी कम नहीं होता है। और इस समय जो भक्त आ रहे हैं, जैसे ही भगवान के सामने आते, हाथ उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय श्री राधे का जय घोष करते हैं और यहाँ पर भगवान जैसा नाम है कृष्ण, सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक बार जो उनकी ओर देख लेता है, बस उनका होकर रह जाता है, पांव ठिठक जाते हैं, आगे बढ़ने का मन ही नहीं होता। लेकिन जो सेवायत है, सुरक्षा प्रहरी है, बड़े ही अनुनय विनय के साथ, विनम्रता के साथ उनसे आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं और जो पीछे से आने वाले भक्तों का प्रवाह है, उन्हें अपने स्थान पर रुकने भी नहीं देता है। और न केवल भागवत भवन, अगर मैं बात करूं श्री कृष्ण जन्म स्थान में, यहाँ पर मुख्यतः तीन मंदिर और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर ठाकुर केशव जी का मंदिर है भागवत भवन के अलावा, और वो गर्भगृह क्रूर कंस के कारागार का वह भाग जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था और उस कारागार को आज इतना सुंदर ढंग से सजाया गया है, बिल्कुल कारागार का दृश्य उपस्थित हो रहा है। और कारागार के प्रवेश द्वार के पास योग माया मंदिर है, जहाँ पर आज योग माया ने एक विशेष स्वर्ण और रत्न जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है। और उस कारागार में जहाँ पर भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, धन कंस का कारागार, हर ने लिया जहाँ अवतार, ये बंदी वसुदेव देव की स्तुत करते उन देव देव की। और यहाँ पर आज भागवत भवन में इस समय भजन गाया जा रहा है, तमाम श्रद्धा तालियां बजा बजा कर मंजीरे की धुन में, शंख के साथ में, झान मंजीरे के साथ में भजन गा रहे हैं। और यहाँ आज बड़े सवेरे मंगल आरती हुई शहनाई नगाड़ों के साथ और उसके बाद सुबह 8 बजे विशेष पंचामृत अभिषेक किया गया ठाकुर जी का और पवित्र श्लोकों का पाठ किया गया और करीब 8 बजे के आसपास पुष्पार्चन हुआ और इस बार पुष्पार्चन में गौ रक्षा के साथ देश रक्षा का संकल्प दिया गया। इसके बाद मंगलार्चन, वेद मंत्रों के मध्य युगल सरकार के शिष्यों में पुष्पांजलि यहाँ पर की गई और उसके आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर गणेश पूजन और नवग्रह पूजन के साथ यह पूरा जन्मोत्सव कार्यक्रम विधिवत आरंभ हुआ है। और भागवत वन के ठीक सामने जो यहाँ पर एक लीला मंच बना हुआ, आज वहाँ पर प्रयोजन लीला आयोजित की जा रही है कि भगवान ने किस कारण से यहाँ पर अवतार लिया था, उसका यहाँ पर आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर एकत्रित है। और जो सामान्य दिनों में यहाँ पर जो प्रवेश द्वार होता है, जहाँ पर भगवान कृष्ण सारथी की भूमिका में अर्जुन को गीता को उपदेश दे रहे हैं, आज वहाँ से निकासी है। और जो सामान्यतः जो दूसरा दरवाजा होता है प्रवेश द्वार, वहाँ से प्रवेश ले रहे हैं और साथ साथ इस पूरे मथुरा नगरी को बहुत ही आकर्षक ढंग से रंग बिरंगी विद्युत झालों से, रंग बिरंगी पताकाओं से और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कहीं माखन चोरी की लीला है, कहीं गाल ग्वाल बालों के साथ माखन चोरी कर रहे हैं, उनसे जगह जगह सजाया गया है और अनेक सांस्कृतिक मंच बनाए गए। उन सांस्कृतिक मंचों में यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। और जैसे द्वापर में जब भागवत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो स्थितियां बनी थी, आज वही स्थिति यहाँ बन रही है। आज बारिश भी हुई है, यहाँ पर बिजली भी चमकी है।

0: अंधेरी रात भी है, लेकिन उस समय गहन अंधकार था, आज मथुरा नगरी का कण कण प्रकाशवान है। ऐसा प्रदृश्य, शायद अद्भुत दृश्य यहाँ पर उपस्थित हो रहा है और पूरी मथुरा नगरी पे एक बड़े मेले जैसा आयोजन है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं और जो कान्हा की नगरी है तो कोई भी श्रद्धालु भूखा कैसे रखता है। जगह जगह पर यहाँ पर भंडारे लगाए गए हैं जहाँ पर विभिन्न तरह के पकवान बड़े अनुनय विनय के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को परोसे जा रहे हैं। उनसे विनती की जा रही है, हे लाला साथ को ले लो। और जैसे ही यहाँ पर लोग भागवत भवन की ओर प्रवेश करते हैं, वे मंदिरों की ओर जाते हैं, तो देखते हैं कि हर मंदिर, हर मठ, हर घर में आज कान्हा की विशेष झांकी सजाई गई है। आज कान्हा का जन्म होगा और उस जन्म में पूरा ब्रजमंडल ही नहीं, जहां जहां भी यहां पर भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वे सभी अपने लाला के प्राकट्योत्सव पर बड़े आनंद से, बड़े उत्साह के साथ लाला का जन्मदिन मना रहे हैं। और इस समय श्री द्वारकाधीश मंदिर में क्या दृश्य उपस्थित हो रहा है, आइए और दृश्यों के लिए चलते हैं डॉक्टर मीनू खरे के पास।
1: धन्यवाद श्री कृष्ण, आप सभी को एक बार पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाइयां। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ये रात्रि मोह रात्रि कही जाती है। कान्हा के रूप ने मोह लिया इस ब्रह्मांड का, ऐसे और देखिए राजाधिराज की जय बोली जा रही है, क्योंकि द्वारिकाधीश का ये मंदिर, इसका नाम श्री द्वारिकाधीश मंदिर यूं पड़ा क्योंकि श्री कृष्ण द्वारिका के स्वामी हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में इस मंदिर के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल था, जिसे हरिग्रह कहा जाता था। और आज इसी हरिग्रह में, हरि के चरणों में बैठकर आंखों देखा हाल जन्मोत्सव का आप तक पहुंचाने का ये सौभाग्य आकाशवाणी की तरंगों का और उसकी पूरी टीम का। ब्रज की रज जाको मिल गई, बाकी चाह न शेष, ब्रज की चाहत में रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ पर राधे राधे कृष्णा कृष्णा की गुंजार होते हुए ध्वनि एक मंत्र जैसा सभी भक्ति भावना में लीन। चारों ओर भक्तजन अब उत्सुकता बढ़ती हुई। श्री यमुना जी के तट पर बसे द्वारिकाधीश मंदिर का सौंदर्य आज अनुपम छटा बिखेर रहा है। असंख्य रंग बिरंगे पुष्पों, तोरणों, रंग बिरंगी झालरों, कुमकुमों, बंधन वारों से सजे स्तंभ द्वार और झरोके मानो पुष्प बगिया के स्वर्गीय द्वार हो। इस क्षण का सौंदर्य शब्दों से परे है, मानो शब्द भी प्रभु के आगे नतमस्तक हो गए हो। तीतर पाखी बादलों की झूमती हुई छटा और बयार की इटलाती लहरियां, और आज झूमती हुई लहराती हुई बादलों की ये घटाएं और बारिश अनायास ही याद दिला देता है वो लोकगीत। और देखिए एक बार पुनः राजाधिराज की जय। भादो मास रैन अंधियारी, जन्मे कृष्ण मुरारी ना। आज प्रकृति स्वयं बाहें फैलाकर मानो कन्हैया के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। वातावरण में आध्यात्मिकता है, दिव्यता है, उस अलौकिक पल की आहट आज हर बीतते पल में मानो उत्तेजना, उत्सुकता और अधीरता उत्पन्न करती प्रतीत होती है। अजन्मा आज जन्म लेगा, अनंत अपरिमेय आज समा जाएगा माँ की गोद में। जग के अश्रु पोछने वाले का शिशु क्रंदन सुनकर आज हर श्रद्धालु की आंखों में होंगे अपरिमित आनंद के अश्रु। जग का पालनहार आज स्वयं पालने में होगा। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल्हावे, जोई जोई कछु गावे। मध्य रात्रि का घना अंधकार है, लेकिन गोकुल में उजियारा फूटने ही वाला है। श्री यमुना महारानी भी अपनी लहरों में नेह के मोती बरसाती प्रतीत होती हैं। चारों ओर उल्लास, आनंद और भक्ति का अद्भुत समागम आज यहाँ चारों ओर व्याप्त दिखता है। यमुना महारानी अपने अद्भुत श्रृंगार में सजी हैं। उनकी लहरों पर चांदनी का रेशमी आभूषण मानो झिलमिला रहा है। लहरों की तरंगे वीणा की झंकार जैसी प्रतीत होती हैं। आज वे स्वयं को सजाकर खड़ी हैं, क्योंकि ब्रज का नन्हा नंदलाल स्वयं नटनागर उनकी गोद से पार होकर गोकुल जाने वाला है। यमुना महारानी आज केवल नदी नहीं है, उनकी व्यग्रता उफन कर शिशु

0: कृष्ण के चरण छू लेने की है। देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह, देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह, चरणों को छू भर लिया हुई सांवरी देह। और अब अगली आवाज डॉक्टर नृत्य गोपाल की।
1: डॉक्टर मीनू खरे, आप इस समय देख रहे हैं कि मंदिर प्रांगण में भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ हम जिधर देख रहे हैं, चारों ओर श्रद्धालु अपार जन समूह इस समय श्रद्धावनत होकर के अजन्मे के जन्मोत्सव की पावन घड़ी का पल पल बाट जो रहा है और हम देख रहे प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे जैसे कन्हैया के प्राकट्य की घड़ी पास आती हुई, वैसे वैसे जय घोष से, गूंजों से मंदिर परिसर ऐसे गुंजायमान हो रहा है जैसे कि गगन भेदी ये स्वर यहाँ पर सबको आह्लादित उमंगित कर देता है। इस उल्लास के वर्णन करना हम इन शब्दों में जैसे जैसे आप तक पहुंचा पा रहे हैं। राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर का यह आंगन, द्वारकाधीश की जय, वसुदेव नंदन की जय, देव की नंदन की जय, नंद नंदन की जय, यशोदा नंदन के जयकारों के साथ गूंज रहा है। ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदा फर चंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और इस कन्हैया लाल की जयकारे के साथ ये माखन चोर कृष्ण आज जब इस मथुरा भूमि पर यहाँ पर पधार रहा है तो यहाँ पर भक्तों का जो समूह है इनका नृत्य देखने लायक है। और बहुत सुंदर देखने लायक यह भी है कि देश विदेश से आए हुए जो श्रद्धालु हैं कैसे कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये जो सामने से एक टोली जा रही है लग रहा है कहीं विदेश से आए हुए हैं, और इन्होंने कितने सुंदर मोर पंख धारण किए हुए हैं, बांसुरी लिए हुए, वो कभी बांसुरी को देखते हैं कभी मोर पंख को देखते हैं, और कैसे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। और क्या है, कृष्ण जन्मभूमि का मथुरा, क्रीड़ा स्थली गोकुल, लीला स्थली नंदगाम, बरसाना, दिव्य महाराज की पावन धरा, वृंदावन की छवि आज अलौकिक है। और जनमानस भावातिरेक में बार बार यही गाए जा रहा है, बड़ो भाग नंदरानी तेने पायो, तेरो पुत्र जगत को स्वामी, सो तेने गोद खिलायो। आस्था और संस्कृति के इस जीवंत आज के सु अवसर पर जहाँ पर सदियों पुरानी परंपराओं का जिस तरीके से निर्वाह और उसको लोक में उतारने का अद्भुत जो एक क्रम द्वारकाधीश मंदिर से, और यहाँ के सेवाएं तो धन्य है, देख रहे हैं जैसे जैसे समय पास आ रहा है कुछ कुछ यहाँ पर हलचल होने लगी है, कुछ सेवाएं इस समय थालों में भर करके बड़ी सुंदर सुंदर सामग्री ला रहे हैं। और आज हमने प्रातःकाल यहाँ के सेवायतों से बात की, एक विशेष भोग यहाँ पर आता है धनिये की पंजीरी के साथ सौंठ के लड्डू, ये यहाँ का, और सीरा जो कि ब्रिज का अपना ही प्रसाद है उस सीरा का भोग यहाँ पर लगाया जाएगा। और देख रहे हैं कि धीरे धीरे कितने सुंदर सजे हुए हमारे ये जो यहाँ के सेवायत हैं, यहाँ इनको मुखिया जी कहा जाता है, और बड़ा बड़ा सुंदर क्रम यहाँ पर सेवायतों का, लेकिन सुंदर सुंदर वस्त्रों में थाल लिए हुए यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि संभवतः इसमें दधि दूध मक्खन घृत शर्करा ये सब अभिषेक के लिए लाया जा रहा है। और प्रातः काल में यहाँ पर अभिषेक हुआ, श्री कृष्ण की जन्मपत्री का वाचन हुआ, और अब इस समय जब कन्हैया के जन्म की घड़ी पास आ रही है तो जैसे जैसे ये जैसे पर्दा हिलता तो भीतर हम देख रहे हैं कि इस प्रांगण में हमारे श्रद्धालुओं में ऐसा उत्साह आ जाता है, उन्हें लगता है कि पर्दा खुलने वाला है, लेकिन वो देखते हैं कि वहां तो भीतर से कुछ ना कुछ सामग्री लाई जा रही है। और इस सामग्री में कौन कौन सी सामग्री होगी हम थोड़ी देर में बताएंगे। डॉक्टर मीनू खरे, आप देख रहे हैं कितनी हलचल होने लगी है श्रद्धालुओं में,
0: बहुत बढ़ती हुई व्यग्रता उत्कंठा उल्लास मानो अब अपने चरम पर पहुंचता हुआ। आज इस समय श्री द्वारिकाधीश मंदिर में जो कि जहां पर बल्लभ संप्रदाय के आचार्यों के संरक्षण में पूजा अर्चना की जाती है, पुष्ट मार्गी सेवा प्रणाली के अंतर्गत आज भाव भोग श्रृंगार की प्रधानता है। यहाँ पर बाल भाव की सेवा की जा रही है, भगवान का यहाँ पर ध्यान मुद्रा में है, और यहाँ पर जय जयकार के नारे भगवान के, लोग अब उनसे प्रतीक्षा के पल बहुत भारी हो रहे हैं। यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई दीर्घाओं में, दर्शक दीर्घाओं में बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हुए उनके वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे स्थान पर खड़े हो जाएं जहाँ से कम एक बार वो देख को लें। आप श्री द्वारिकाधीश मंदिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर।

0: एक आकाशवाणी द्वापर युग में भी हुई थी जब कि हे कंस देवकी का आठवां पुत्र तेरा संहार करेगा, लेकिन एक के बाद एक सात पुत्रों को मारा गया, पर जिसे भगवान बचाए, जब भगवान स्वयं अवतार ले तो फिर किसकी क्या विसार। चारों ओर अंधकार था पर प्रकाश का अद्भुत संचार होने वाला था। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। संकादि ऋषि स्तुति करने लगे, वासु सर्व निवास परम पुष्प वासुदेव। देवकी वासुदेव विस्मित माँ ने प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी संतान के इस दिव्य रूप के आभा सहने की नेत्रों में क्षमता नहीं है। और देखते देखते चतुर्भुज रूप नीलमणि सी कांति वाले द्विभुज बालक के रूप में बदल कर बाल रूप में रुदन करने लगे। ऐश्वर्य का विस्मरण हुआ और वात्सल्य उमड़ पड़ा। वसुदेव ने शिशु को गोद में उठाया, पांवों की बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार सो गए और एक नई यात्रा की ओर चल पड़े वासुदेव कृष्ण को लेकर। मानो अपने यमुना नदी जो थी उफान पर थी, वो धीमे धीमे, और अब यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण इकट्ठा हो गए हैं। चारों ओर जिधर भी देखिए आपको भक्तगण दिखेंगे, उनके अंदर अद्भुत सामंजस्य है। भीड़ होने के बाद भी उनके अंदर सामंजस्य है और वो एक दूसरे को किनारे होकर जगह दे रहे हैं खड़े होने की। और हमारे बीच में ब्रज संस्कृति साहित्य के विशेषज्ञ और समालोचक आशुतोष शुक्ल जी हैं। अगली आवाज आप सुनेंगे आशुतोष शुक्ल।
1: अब वह घड़ी निकट है जब लाला का अवतार होने वाला है। अवतार ऐसा क्षण है जो बड़ा ही भक्तिपूर्ण होता है। यह अवतार का क्षण भावनाओं का चरम शीर्ष होता है, भक्ति का चरम शीर्ष होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्राकट्य का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम, इसका भावार्थ है वसुदेव ने उस अद्भुत बालक के दर्शन किए जिसके नेत्र कमल के समान थे। वे चार भुजाओं वाले थे, उनके हाथों में दिव्य आयुध थे, उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनका स्वरूप वर्षा के गहरे मेघ के समान अत्यंत मनोहर था। ऐसे अलौकिक स्वरूप को देखकर देवकी और वसुदेव का हृदय आनंद आश्चर्य और भक्ति से भर गया। वे समझ गए कि जिन परमात्मा की उन्होंने आराधना की वही आज पुत्र रूप में उनके समक्ष उपस्थित हुए हैं। उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की कि प्रभु अपने इस दिव्य स्वरूप को छिपाकर सामान्य बालक का रूप धारण करें ताकि कंस के इस दिव्य प्राकट्य का ज्ञान न हो। श्रीमद् भागवत में माता देवकी की यह प्रार्थना अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में आती है। उपसंहर विश्वात्मन अदह रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम, इसका भावार्थ है हे विश्वात्मा अपने इस अलौकिक चतुर्भुज स्वरूप को अब छिपा लीजिए। शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित यह दिव्य स्वरूप अत्यंत अद्भुत है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप सामान्य बालक के रूप में अपनी लीला प्रारंभ करें। यही वह अद्भुत क्षण है जहां परम सत्ता ने प्रेम के लिए स्वयं को सीमित कर लिया। जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वही माता पिता की गोद में आने के लिए तैयार हो गए। यही भगवान और भक्त के संबंध की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी के साथ मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कृष्ण जी के।
2: धन्यवाद आशुतोष शुक्ला जी, क्या ही सुंदर पल, अद्भुत घड़ी, और जिस घड़ी की प्रतीक्षा सभी को थी, और इस समय द्वारकाधीश मंदिर के ये पट खुल गए हैं और श्रद्धालुओं की अपलक निहारने की ये जो कला, ये जो दृष्टि और वो जो कन्हैया को अपने नेत्रों में भरने की ये जो ललक है, श्रद्धालु इस समय राजाधिराज द्वारकाधीश की अनुपम छवि को एकटक अपलक होकर निहारे जा रहे हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की शंख ध्वनि, नगाड़े की ध्वनि, नफीरी की ध्वनि, क्या आज के इस धन्य यशोदा भाग्य त्योहारो जिन ऐसा सुत जायो। आज द्वारकाधीश प्रभु का अलौकिक श्रृंगार हम देख रहे हैं ठीक सामने। इस श्रृंगार को भारी श्रृंगार कहा जाता है।

0: और यहाँ आभूषण और अलंकारों से सुसज्जित द्वारकाधीश अवर्णनीय छवि, भक्तजन मंत्र मुग्ध आकर्षित हुए जा रहे हैं। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ पर मुक्ताहार, मणियों की मालाएं, कलाइयों में कंगन, सुंदर करधनी युक्त आभा बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है। जो जहाँ खड़ा है वहीं पर ठगासा रह गया है। आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मनमोहन के साथ मनमोहक भी लग रहे हैं और संभवतः यही वह श्रृंगार है, यही वह सौंदर्य है, यही वह आकर्षण रहा होगा जब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टक में लिख दिया, अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वसनम मधुरम, चरितम मधुरम, वचनम मधुरम, बलितम मधुरम, चलितम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आज लोकमानस, जनमानस का उत्साह, उमंग और श्रद्धालुओं में इस समय बहुत तीव्रता से हर कोई चाहता है कि मैं तुरंत आगे जाऊं और अपने कन्हैया को, अपने द्वारकाधीश को, उनके बगल में विराजित रुक्मणी जी को यहां जाकर के निकट से देख लूं, दर्शन कर लूं, या मुरली मनोहर की अद्भुत छवि उसका दर्शन कर लूं। और कभी वो ऊपर की तरफ देखते हैं, कभी सामने पर्दे पर नाचते हुए मोरों की छवि देख रहे हैं, और लेकिन पुनः सभी की दृष्टि अपने अपने द्वारकाधीश के चरणों में लगी हुई है। और पुष्टि मार्ग में यही कहा जाता है, चरणों से ऊपर की ओर जैसे जैसे दर्शन किए जाए, कुंडल की छवि अद्भुत है, क्या ही सुंदर ये मुकुट की छवि। आप जिस अंग को देखें, जिस जगह से देखें, मेरे कन्हैया को यहाँ पर देखना, और ये देखते देखते यहाँ पर आतुरता से बाट जो रहे बाहर जो श्रद्धालु खड़े थे, अब वो धीरे धीरे धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। और धन्य है ये ब्रजवासी, और धन्य है ये सेवायत। आप अद्भुत देखेंगे, जिसको भी किसी को कष्ट ना हो, जो यहाँ पर सेवक लगे हुए हैं, जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, सिर्फ सबसे यही कहते हैं, राधे राधे राधे, जरा आगे चलो। और ये ब्रज में जैसे जैसे राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, इसकी गूंज के संग ये ब्रजवासी आगे आ रहे हैं, ये यहाँ पर श्रद्धालु आगे आ रहे हैं। और किसी को असुविधा ना हो, इसके लिए हमारे ये जो व्यवस्था में लगे हुए सेवक हैं, इनका भी कहना क्या, इनको धन्यवाद। और इस समय चलते बहुत सुंदर झांकी के लिए, वहां पर भागवत भवन में श्री कृष्ण जन्म स्थान से क्या दृश्य, क्या मनोरम छवि है, इसके लिए चलते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान भागवत भवन।
1: अद्भुत है हमारे कन्हैया के जन्मोत्सव की ये छटा। ये संपूर्ण अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, सप्तपुरिया ही नहीं, स्वर्ग से देवता भी लालायित होकर इस दृश्य का साक्षात्कार करने के लिए एकत्र हो गए हैं। और सबकी दृष्टि समय पूरे ब्रजमंडल पर है, जहां हर घर में कृष्ण जन्म के आनंद की बधाइयां गाई जाने लगी हैं, क्योंकि वो क्षण अत्यंत निकट आ गया है जब परमात्मा एक बार पुनः अवतरित होंगे प्रतीक रूप में इस धराधाम पर, हम सभी को आश्वस्त करने के लिए। यहाँ भागवत भवन के जो विग्रह है, वहां पर सहस्त्रार्चन पूर्ण हो चुका है, वहां पर तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं भगवान के जन्म के समय उनके विशिष्ट पूजन की। लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह अनवरत बढ़ता चला जा रहा है, वो बाई तरफ से प्रवेश करते हैं, तालियां बजाते हैं, गाते हैं, और अब यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा विविध रूपों में परिलक्षित हो रही है। बच्चों को उन्होंने कान्हा बना रखा है, कोई राधिका बनाए हैं, उन्हें जब लाते हैं विग्रह के सामने तो अपने कंधे पर बैठा ले रहे हैं, ठिठकते हैं, लेकिन एक बार पुनः विवशता है, क्योंकि पीछे से प्रवाह भगवती यमुना के समानांतर चला आ रहा है। परसों से ही लगातार जब श्रद्धालु इस धराधाम पर आ रहे थे तो देखकर लगता नहीं था कि कैसे इतने श्रद्धालु इस ब्रज मंडल में समाएंगे, लेकिन ममता मई माँ की तरह इस पूरी धराधाम ने सभी को समाहित कर लिया है। सामने छोटे जगमोहन में पुजारी विराजमान हो चुके हैं, वहां पर पूजन की तैयारियां चल चुकी हैं, जो स्वर्ण और रजत के चौकियां हैं वो लग गई हैं, जहां पर कुछ ही पलों के बाद, प्राकट्य के बाद भगवान की आरती होगी, वहां पर वो अपने दर्शन देंगे। और जो बड़ा जगमोहन कह सकते हैं, जिसे आज घेर कर विशेष रूप से बनाया गया, कुछ विशिष्ट जन बैठे हैं, तालियां बज रही हैं, वहां पर इस समय भजन चल रहा है और लोग भजन में नृत्य भी कर रहे हैं, आह्लादित है कि कृष्ण जन्म का ये उत्साह है। यहाँ पर आज कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ड्रोन के द्वारा बाहर भगवान श्री कृष्ण की झांकियों को भी दिखाया जाएगा, साथ ही साथ काशी और अयोध्या से भी भगवान के लिए विभिन्न पोशाक और उनके साथ लिए प्रसाद आया है वो भी चढ़ेगा, क्योंकि काशी

0: मथुरा और अयोध्या इन तीनों को स्थलों को जोड़कर एक विविधता की गई है। यहाँ पर जब आते हैं तो मुख्य विग्रह के ठीक दाहिनी तरफ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी के विग्रह भी विराजमान हैं और उनके ठीक सामने हनुमंत लाल उनके दर्शन करते हैं, जबकि मुख्य विग्रह के बाईं तरफ बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ जी हैं, जो कि ब्रज की संस्कृति और पुरी के उड़ीसा की परंपराओं का एक वैशिष्ट्य पालन है। सामने एक शिवलिंग है और उसके ठीक सामने भगवती दुर्गा जी हैं, यानी कि वैष्णव, शैव और शक्ति तीनों ही परंपराओं का अद्भुत पालन यहाँ पर होता है। बात हम करें भागवत भवन की, तो भागवत भवन की विशिष्ट विशेषता इसकी है जो दृश्य कथा वाचन की परंपरा है। इस भवन के स्तंभों, दीवारों और छत पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं की कथा चित्रित है। बाल रूप के कई प्रसंग हैं, तो कहीं गोप गोपियों के साथ लीला है, कहीं कान्हा का प्रेम है, तो कहीं कृष्ण का ज्ञान। यहाँ की दीवारें भी कथा कहती हैं और स्तंभ मात्र भार नहीं उठाते, उनकी लीलाओं के साक्षी भी बनते हैं। और अचानक बड़े जोर से एक हलचल सी हुई है, कोलाहल से हुई है, ये माइक्रोफोन से आवाज भी जा रही होगी। श्रद्धालु उत्साहित हो गए हैं क्योंकि वो क्षण आने वाला है, लेकिन अभी भी थोड़ी देर है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह को क्या कहा जाए। उन्हें लगता है कि पुजारी जी थोड़ा सा भी पर्दा हिलाते हैं तो लगता है प्राकट्य हो गया है, जबकि वो क्षण है। और उनके उत्साह में उत्साह मिलाते पूरे जगमोहन में लोग खड़े हो गए हैं, अबीर गुलाल उड़ाकर नृत्य करने लगे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब एहसास होता है कि वो घड़ी अभी थोड़ी देर में आएगी तो फिर वो शांत हो जाते हैं। लेकिन ये अद्भुत वातावरण रोमांचित कर देने वाला है। लोग यहाँ ठिटकते हैं, खड़े होते हैं, ठाकुर जी को निहारते हैं, राधा रानी को निहारते हैं, उनकी छवि आंखों से आंखें मिलती हैं तो अपलक उन्हें देखते रहते हैं और अश्रु बहने लगते हैं, स्वयं रोमांच हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भावनाएं जब प्रबल हो जाती हैं तो शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं। और देशी और विदेशी पुष्पों से सज्जित सुगंधित ये पूरा वातावरण आज अपने परमात्मा के आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है, जहां पर विशिष्ट पूजन अर्चन अपने अंतिम आयाम पर पहुंचेंगे और प्रकटेंगे एक बार फिर आठवें अवतार के रूप में हमारे परमात्मा श्री कृष्ण। हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ने चुना है इस ब्रज धाम को, जहां आकर सभी लोग आनंदित हैं, उल्लसित हैं, उमंगित हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। शास्त्रीय और लोक कलाकारों ने मंच बनाए हुए हैं पूरे मथुरा में, जहां पर वो गीत संगीत से अपनी श्रद्धा निवेदित कर रहे हैं। वो भी क्यों ना, ये वो धराधाम है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे। यहाँ की रज भी मोक्षदायिनी है, इसे देवता भी पूजते हैं और पूजे भी, क्यों ना, क्योंकि ये वही रज है जिसमें हमारे लाला ने जब कभी माता यशोदा से बिलख कर कोई जिद पूरी नहीं की तो उनके आंसू इसी रज में है। हमारे नंद बाबा की गऊओं को चराते समय या फिर सखवा के संग खेलते हुए उनके जो पसीने की बूंदे गिरी तो वो भी इसी रज में है। और एक बार फिर श्रद्धालुओं का प्रवाह फिर जोर से उत्साह से बढ़ गया है, तालियां बजती हुई, उत्साह अपने चरम पर पहुंचता हुआ, भावनाएं ऊंची पड़ते हुई। और अब जबकि वो प्राकट्य का समय नजदीक आने वाला है, आगे का विवरण देने के लिए श्री कृष्ण जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देश दीपक जी। भक्तों के आने का क्रम अचानक से बढ़ गया है और ये मुख्य मंदिर का पर्दा गिरा दिया गया है और भक्तों में एक उत्तेजना, उत्साह, उल्लास, दोनों पैरों पर उछल उछल कर, दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे जय श्री राधे कर रहे हैं। और यहाँ पर सेवायतों ने मुख्य मंदिर के कपाट बंद कर दिए हैं। शास्त्रोक्त विधि से जो भगवान के जन्म की प्रक्रियाएं होती हैं, जो परंपराएं, उनका पालन किया जा रहा है। और जो मंदिर के ठीक सामने जो विशेष स्थान बनाया गया है, जहाँ पर विशेष जन आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सभी अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं, सभी हाथ ऊपर कर उठा कर नृत्य कर रहे हैं, कुछ भक्त उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं। बस प्रतीक्षा उस पल की कि जब ये कपाट खुलते हैं। और जो भक्तों का आने का क्रम था, अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कपाट खुलने की प्रतीक्षा है। यही तो वो पल था जिसको प्रतीक्षा वर्ष पर्यंत करते हैं और आज इस विशेष मौके पर उस पल को कैसे गवा दें। सुरक्षा प्रहरी सेवाएं तो ने बार बार निवेदन कर रहे हैं आगे बढ़ने की, क्योंकि भक्तों का आने क्रम लगातार बढ़ता ही जा रहा है, संभालना मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन भक्तों का उत्साह कहीं कम नहीं हो पा रहा है। और ये पट सब बंद है, जो यहाँ पर सेवाएं हैं पट के बाहर खड़े हुए हैं, उसमें दो मयूर बने हैं और जो काष्ठ का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसमें पीतल से मोर और नीचे दो मोर नाचते हुए अद्भुत दृश्य है। ये वो बेसब्री घड़ियां हैं जिनको इंतजार करना हर एक के लिए बहुत कठिन हो जाता है। बस किसी भी पल ये पट खुलने वाले हैं। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं अपलक

0: निहार रहे हैं कि कब वो घड़ी आए और जब वो लाला का प्रथम दर्शन करें। प्राकट्योत्सव के बाद जब लाला बाहर आते हैं उस घड़ी को देखने के लिए, निहारने के लिए सभी एकजुट, और ये कपाट खोल दिए गए हैं लेकिन अभी पर्दा नहीं खुला है। भक्तों में उत्साह है, अचानक जैसे राधे का जयघोष हो रहा है और ये सुंदर पर्दा जिसमें गौ माता बनी है, दो हाथी बने हैं, उसमें एक वृक्ष है, बहुत ही रंग बिरंगे झिलमिल सितारों से ये पर्दा जिसके हटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, नृत्य कर रहे हैं और जो यहाँ पर भक्त लोग भजन गा रहे थे, अचानक उनके भजन गाने में ढोल झांझ मजीरा मृदंग और यह पर्दा खुल चुका है। प्रभु अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और यहाँ पर एक रजत कमल है, यंत्र चालित एकदम धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियां खुलती हुई, क्रमशः पंखुड़ियां खुल रही हैं और ये लड्डू गोपाल के प्रथम दर्शन आम भक्तों को सुलभ हो रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, यही दृश्य ऐसा जो सभी अपने नजरों में नेत्रों बसा लेना चाहते हैं। वहां पर जो दूसरे सेवाएं थे वो आरती कर रहे हैं और इसमें प्रथम कल से यहाँ पर पुष्पों की वर्षा हो रही है, गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त ही नहीं बल्कि भगवान भी स्वर्ग से यहाँ पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है और सुगंधित द्रव्य वहाँ पर बरसाए जा रहे हैं, गुलाब जल की वर्षा हो रही है, पूरा वातावरण सुगंधित हो चुका है और ढोल झांझ मजीरे मृदंग संग इनका संदेश और अद्भुत रोमांच पैदा कर रहा है। भक्त का ऐसा समूह और शायद कहीं प्रतीत नहीं होता है। और यहाँ पर जो लोग अपने मोबाइल लेकर आए, जैसे चने सभी के मोबाइल ऊपर उठे हुए हैं और यहाँ के दृश्य अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, अपने परिवारजनों को, अपने मोहल्ले में, टोले में, अपने जनपद में यहाँ के दृश्य वहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है और इसी दृश्य को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ पर पधारते हैं। और ये कमल जो रजत कमल था उसकी पंखुड़ियां खुल चुकी हैं, वहां पर चल विग्रह लड्डू गोपाल के विराजमान है, उन्होंने पीले वस्त्रों से अपने आप का श्रृंगार किया गया है और यहां पर जितने भी श्रद्धालु हैं वे सब तालियां बजा बजा कर उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं और सभी का प्रयास यही है कि अधिक से अधिक समय तक लड्डू गोपाल को निहार सके। लेकिन जो पीछे से आने वाले भक्तों का प्रवाह है उन्हें अपने स्थान पर रुकने नहीं दे रहा है और इस समय आरती हो रही है और इस आरती के बाद यहाँ पर लड्डू गोपाल को जो यहाँ पर सेवायत हैं बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, भक्त के भाव के साथ अपने शीर्ष पर रखकर बाहर यहाँ पर एक मंच बनाया गया है जहाँ पर एक रजत स्वर्ण मंडित एक कामधेन व्रत की गई है जिनके पैदलों से निकली दुग्ध धार से प्रभु का यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा। और इस समय जो आरती क्रम है वहां पर चल रहा है और भक्त लगातार आके आते आ जा रहे हैं और यहाँ पर व्यवस्था की गई ध्वनि विस्तार के यंत्रों से कि जो ढोल मजीरे शंख की जो अद्भुत ध्वनि है पूरे जन्म स्थान में ही नहीं बल्कि जन्म स्थान के आसपास जो जितना क्षेत्र है सभी जगह पर यहाँ पर ये ध्वनियां बिखर रही हैं और जगह जगह यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। जो भक्त जहां भी है ये अद्भुत दृश्य देख पा रहे हैं। ये मथुरा नगरी जहाँ पर देवता भी आने के लिए लालायित रहते हैं, आज तो अद्भुत दृश्य है। अचानक भक्तजन उछल उछल नृत्य कर रहे हैं और जितने विशेष जन हैं उन्होंने अपने छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठा रखा है क्योंकि ये जो बच्चे हैं कहीं भीड़ में भगवान का ये अद्भुत दृश्य देखने से वंचित न रह सके। कुछ यहाँ पर दृश्य आए, कुछ ऐसे भी भक्तजन हैं जिन्होंने लड्डू गोपाल को एक पालने में टोकरे का रूप दिया उन पर लेकर आए हैं, वो भी यहाँ पर दृश्य करा रहे हैं। और जो कृष्ण के विविध रूप है, जो राधे राधे का अभिवादन है, चाहे गीता का पठन पाठन हो, युद्ध भूमि में हो, कृष्ण हमारे बीच अनेक रूपों में आते हैं। और आइए चलते हैं देश दीपक मिश्र के साथ आगे के दृश्यों के लिए।
1: जब सांसों में यमुना बहे और मन वृंदावन हो जाए, जब भीतर का कंस सो जाए और कृष्ण जाग जाए, अंधियारे की कोख से जब उजियारा मुस्काए, समझो उसी क्षण हृदय में कृष्ण का जन्म हो जाए। हो गया है जन्म प्रतीक रूप में हमारे परमात्मा, हमारे ईष्ट, हमारे आराध्य श्री कृष्ण का, हमारे लाला का, हमारे कान्हा का। और उनके इस जन्मोत्सव का साक्षी बनते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ भागवत भवन इस समय पर्याय बन चुका है प्रेम का, भक्ति का, उल्लास का, उत्साह का, आनंद का, माधुर्य का।

का उछलते कूदते पीत वस्त्र धारण किए हुए श्रद्धालुओं की श्रद्धा का कोई अंत नहीं है। इस समय थोड़े से शिथिल हो गए हैं हमारे प्रशासन के लोग भी, वो शायद वो भी लीन हो गए हैं अपने परमात्मा की उस आराधना में जो इस समय मुख्य पुजारी जी कर रहे हैं। और हालांकि इस शिथिलता में भी वो सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं, मैं बहुत ही आसानी के साथ देख सकता हूँ, बहुत ही प्यार के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

परमात्मा की उस आराधना में जो इस समय मुख्य पुजारी जी कर रहे हैं, और हालांकि इस शिथिलता में भी वो सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मैं बहुत ही आसानी के साथ देख सकता हूं, बहुत ही प्यार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा और हमारे प्रशासन की एक कर्तव्य विवशता दोनों एक से बने हुए हैं। और इस समय कहते हैं कि इस पूरे भवन में एक अद्भुत वातावरण है, और ये वातावरण सिर्फ यहाँ नहीं, भागवत भवन में नहीं, मथुरा में नहीं, हर घर में नहीं, गोकुल, बरसाना, वृंदावन और नंदगांव में नहीं, संपूर्ण सृष्टि में हो रहा है। क्योंकि अभ्युत्थान आए अधर्मस्य संभवामि युगे युगे का जय घोष करने वाले हमारे परमात्मा का जन्म हुआ है। लाला ने हमें आश्वस्त किया है कि इस धराधाम पर मेरी उपस्थिति, तालियां हाथ उठाकर, दोनों हाथों से तालियां बजाकर, करतल ध्वनि करके अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए एक लय में, एक ताल में, एक धुन में, क्योंकि यहाँ संगीत की लहरियां भी हैं और हमारे परमात्मा गीत संगीत और नृत्य के भी गुणी हैं। यहाँ भगवान के जो विग्रह हैं वो त्रिभंगी मुद्रा में हैं, यानी कि तीन कोण से हल्के से तिरछे हैं, जो भगवान बताते हैं कि लचीला होना जीवन में कितना आवश्यक है। और ये शैली उनकी ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य में भी मिलती है। भगवान की आंखों से बरसती हुई करुणा, राधा रानी का प्रेम, उनकी निश्चलता, उनका आनंद अभिभूत कर दे रहा है। कहते हैं कि इस धरा पर आने के बाद जन्म सफल होना क्या होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है, ये गूंगे का गुड़ की तरह है। लेकिन जो आज मथुरा नगरी में है, भागवत भवन में है, हमारे इस युगल सरकार के विग्रह के सामने है, वो रोमांचित है, उन्हें एहसास हो जाता है कि जन्म सफल होना किसे कहते हैं। क्योंकि कृष्ण प्रेम भी है, सखा भी है, पथ प्रदर्शक भी है और निष्काम कर्म योगी भी है। संपूर्ण पुरुष की व्याख्या करते हुए यहाँ पर सभी उनके सामने आनंदित हैं, क्योंकि आज वो संपूर्ण पुरुष नहीं, वो कर्म योगी नहीं, वो एक लाला है, हमारे लाल हैं, हमारे शिशु हैं, जिनके आगमन से सभी आह्लादित हैं। इस भागवत भवन की दीवारों के स्तंभों पर विविध प्रसंग भी अंकित है, कहीं राम जटायु प्रसंग है तो कहीं सती के कटे मस्तक पर दुखी शिव भगवान है। तालियों की गूंज, संगीत के धुन के साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह बढ़ता हुआ कृष्ण जन्म का भी प्रतीक बड़े गुण है, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं गुण अर्थों को भी लेके आती हैं। आधी रात को जन्मते हैं कृष्ण जब चारों ओर अंधेरा होता है, और क्रोध का, ज्ञान का, अज्ञान का, अंधकार का जब भीतर भर जाता है तो अंधेरा होता है, और जब चेतना जन्म लेती है तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही कृष्ण बनता है। और इस समय पुष्प वर्षा की जा रही है, जहां से हम ये विवरण दे रहे हैं, हमारे ठीक थोड़ी दूर पर जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, और ये आगमन है अपनी अपनी खुशियों को। ये जो पुष्प वर्षा हो रही है, ये गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियां हैं, श्रद्धालु इन्हें पकड़ रहे हैं, हाथों में ले रहे हैं और मुट्ठी में बांध रहे हैं, आंचल में बांध रहे हैं, इससे भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके ले जा रहे हैं। वो अपने घर ले जाएंगे, धराधाम ले जाएंगे, जहां पर उन्हें लगेगा बाहर से वो कमल आ गया है, रजत कमल, जिस पर कुछ ही देर में विराजमान होंगे हमारे लड्डू गोपाल। और लड्डू गोपाल बाहर निकलकर आने की तैयारी करते हुए, क्योंकि जो रजत कमल है वो यंत्र चलित है, उसे बैठाया जाता है, बनाया जाता है। इस बीच धूप तेज हो गई है, उत्साह फिर अपनी भावनाओं का उभार आ गया है, अश्रु बहते हैं, रोम पुलकायमान है, आत्मा आनंदित है। लड्डू गोपाल सूप में बैठकर शेषनाग की छत्र छाया में आएंगे, और यहाँ पर उनका अभिषेक होगा, जल के बाद दुग्ध अभिषेक होगा, और उसके बाद पंचगव्य से उनका अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद महाआरती होगी। ये सब कुछ व्यवस्था यहाँ चलती हुई, लेकिन श्रद्धालुओं का जो एक आनंद है, उस आनंद की कोई और छोर, कोई सीमा नहीं। सर उठाकर ऊपर देखते हैं तो उन्हें देखते हैं भागवत भवन की दीवारों पर कहीं वेणु वादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण, तो कहीं नंद बाबा को अजगर से छुड़ाते हुए श्री कृष्ण। अपने कान्हा की लीलाओं को देखकर सब आनंदित हैं। कृष्ण जन्म के प्रतीकों की बात हो रही थी, तो कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, आत्मा रूपी कारागार में जब आ जाती है, शरीर के रूप में आ जाती है, आत्मा तो कारागार होता है जहां उसे अपने प्रारब्ध का हिसाब करना होता है। कृष्ण को जन्मते ही मृत्यु का भय होता है, किसे भय नहीं होता है, ये संदेश बेहद सरल किंतु उतना ही गूढ़ है। हम सबके जन्मते ही मृत्यु का भय होता है, किंतु हम खुद को अमर समझने की भूल कर बैठते हैं, और यही सभी दुखों का मूल है। कृष्ण कहते हैं कि आनंद में रहो, निष्कलंक रहो, निष्कपट रहो, हमें निश्चलता पसंद है, और तभी कृष्ण को आप प्राप्त कर पाओगे। वासुदेव जी की उपंती यमुना में लाला को लेकर जाना भी एक ऐसा
प्रसंग है, एक ऐसा

0: संकेत है जिसे समझना होगा। उफनती लहरें हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं, सुख की लहर दुख का बहाव, किंतु जब सर पर सत्य यानी परमानंद की कृपा हो तो समस्त परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। तालियों की गूंज में श्रद्धालु बढ़ते हुए रुकते हुए पीत वस्त्रों में यहाँ पर पुजारी यहाँ पर हैं और वो पूजन की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। कुछ ही क्षणों में लड्डू गोपाल का आगमन होगा जो कि शिष्य रूप में है, सूप में बैठकर आएंगे और शेषनाग की छत्र छाया में जो कि रजत कमल में विराजित होंगे, यंत्र चलित है और वहां पर जो कुछ भी होगा विशिष्ट पूजन अर्चन आगे का विवरण देंगे साथी श्री कृष्ण।
1: धन्यवाद देशभक्त। इस समय भगवान कृष्ण का जो चल विग्रह है उसको बाहर लाया गया है जहाँ पर एक कामधेन स्थापित की गई है। मुख्य मंदिर के बाहर दो मंच बनाए गए हैं, एक दाहिनी ओर मंच है एक बाईं ओर। दाहिनी ओर मंच पर ये कामधेन विराजित है जो रजत स्वर्ण मंडित और उनके पैदलों से निकली दुग्धधार से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है। और यहाँ पर जो बाईं ओर मंच है वहां पर एक रजत निर्मित विशाल कमल पुष्प, उसके ऊपर जो पंखुड़ियां खुली थी वो पुष्प विराजमान है। अभी यहाँ पर दुग्धाभिषेक के बाद भगवान कृष्ण को इस मंच पर स्थापित किया जाएगा। और जब भगवान यहाँ पर आज प्रकट होते हैं तो भगवान कृष्ण के विविध रूप हमारे सामने आते हैं। कहीं प्रेमी रूप में आते हैं, कहीं भक्त केंद्र रूप में आते हैं, एक महान योगी रूप में, नटखट माखन चोर के रूप में आते हैं और ये बाल लीलाएं करते हैं। ये मन को आनंदित करने वाली तो है ही, साथ ही साथ इनसे महान दार्शनिक संदेश भी प्राप्त होते हैं। अगर वो गोप गोपिकाओं के साथ रास रचाते हैं, गुहे चराने जाते हैं, वो भले ही राजा के बेटे थे कुलीन से, लेकिन आम जनमानस के साथ मिलकर कैसे समाज में संदेश देना है, सहजता, निश्चलता, आत्मीय प्रेम, ये सभी संदेश उनके साथ मिलता है। समरसता की बात होती है। और अगर वो काली नाग का दमन करते हैं तो अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देते हैं। और वहीं साथ ही साथ आजकल किस तरह से नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना है इसका भी कहीं ना कहीं संदेश देता है और ये उतना ही आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे भगवान ने गोवर्धन लीला की थी तो प्रकृति, पशुधन, कृषि, जीवन संरक्षण, सहकारिता, सामूहिक एकजुटता का प्रमाण है कि किस प्रकार से अगर कोई संकट आता है, भले ही देव इंद्र क्यों ना हमारे विपरीत हो, लेकिन हम सबके साथ मिलकर सबके सामूहिक सहयोग से हम इस विपत्ति से पार पा सकते हैं। ये संदेश देना भगवान के कृष्ण का जो उन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया था, जो उन्होंने दर्शन दिया है, वो हम सब के लिए एक तरह से प्रसाद हो सकता है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के पंचाभिषेक की तैयारी हो रही है। इसमें पंचामृत बनेगा, दूध, घृत, शक्रा, शहद और इन सबके साथ गंगा जल। और यह अभिषेक के उपरांत यहाँ पर रात में 12:40 तक ये होगा, उसके बाद 12:50 पर श्रृंगार आरती हो और उसके बाद 1:25 से 1:30 तक शयन आरती होगी और प्रातः यहाँ पर आनंदोत्सव होगा। इस समय कान्हा की नगरी में भक्त की हिलोरें उफान पर हैं और न केवल भागवत भवन में बल्कि पूरी मथुरा नगरी में हर जगह, हर मठ में, मंदिर में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और इस समय जो भी यहाँ पर श्रद्धाल आ रहे हैं, यहाँ पर जो भक्त जन भजन गा रहे थे उनके साथ साथ तालियां बजा बजा कर नृत्य कर रहे हैं, हाथ उठाकर कर रहे हैं और ये अत्यंत भावुक क्षण है जब भगवान का, प्रभु का अभिषेक चल रहा है। और यहाँ पर जो विसर्जन बैठे सुरक्षा कर्मी है वे भी हाथ उठाकर नृत्य कर रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ कुछ यहाँ पर ऐसे भक्तजन है इनकी आंखों में आंसुओं का प्रवाह है, अत्यंत भावुक है। मैं बात कर रहा था अनेक श्रद्धालुओं से बात की जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और अपने परिवारिक जनों के साथ में आते हैं और यही मान्यता रहती है कि पिछले कई वर्षों से कुछ आने वाले श्रद्धालु हैं कि प्रत्येक वर्ष प्रभु उन्हें अपने पास बुला लें। कम से कम आज के दिन जब प्रभु का प्राकट होगा, अजन्मे का जन्म होगा, पालनहार का जन्म होगा, वो यहाँ पर आए और इस भक्ति के सागर में मैं श्री कृष्ण आप सभी को प्रभु के आगमन की, अजन्मे के जन्म की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। और इसी के साथ मैं श्री कृष्ण अपने साथी कमेंटेटर देश दीपक मिश्र, डॉक्टर बीनू खरे और डॉक्टर नित्य गोपाल के साथ आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूँ।

रहे हैं। रात्रि के 12:15 होने को हैं। अब हमारी आज की दूसरी व अंतिम सभा संपन्न होती है।